0: was bumped off the road by this man. She has now released a new video speaking out against the accused, slamming the accused in this video, saying, "Why didn't you stop? Could you have..." you know, she's talking about how she could have lost her life. She's alleging aggressive driving. "He didn't stop even for a second. Women feel unsafe on the roads here in the NCR region." The biker girl has released this fresh video directly questioning the accused Kalyan over the alleged hit and run, asking why he did not stop after ramming into her vehicle, saying that she could have lost her life. Listen in.
1: See other side and... सुबह से ही मेरा रोड एक्सीडेंट वाला वीडियो बहुत न्यूज़ एंड इंस्टाग्राम पे चल रहा है एंड आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू जो अभी रिसेंटली मैंने देखा है. इसमें मेंशन कर रहे हैं कि हम बार बार बाइक तेज़ कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे. वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज़ कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें. और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. आपने ऑब्वियसली मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल हैं, मेरी छोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22 तेज लोग थे और वो दो वीडियो ही क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए. मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए क्या दो वीडियो इनफ नहीं है. एक वीडियो जिसमें दिख रहा है कि आप फ्रंट लेन से सीधा डायरेक्टली थर्ड लेन में आके मार के भाग जाते हैं एंड एक फ्रंट वीडियो जो मेरे कैमरे से आया हुआ है कि आप फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में आप मुझे हिट करके बकायदा मैं पूरी घिसी हूँ आपकी गाड़ी पे और उसके बाद मैं पूरे रोड पे गिरी हूँ. क्या वो दो वीडियो आपके लिए इनफ नहीं है? और अगर आपको मेरे लिए इतना ही दुख हो रहा था तो उस टाइम पे आप रुके क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर आपने मुझे ठोका है तो आप रुको, आप मुझे देखो अगर मेरे को चोट लगी है. वॉट इफ कि अगर वो दो तीन सेकेंड का फर्क हो जाता, मेरे को बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ सकती थी, मेरी हड्डियाँ टूट सकती थी, मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी. तो ये जो सिंपथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सूट हो रहा है. और वो सारी वीडियोस में शो हुआ है कैसे वो भागे हैं, वो एक सेकंड भी नहीं रुके देखने के लिए कि जिन्होंने जिसको ठोका है कि वो इंसान जिंदा है या मर गया है. तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो बोलते हैं मेरी फैमिली पे बात आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान एक बार भी सोचते हैं कि उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी महिलाएं होंगी और कुछ ऐसी महिलाओं को इतना अनसेफ फील होता है गुड़गांव और दिल्ली के रोड पे. तो जैसे ही आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आई होप कि हम ऐसे इंसानों को सिखाएं कि गाड़ी कैसे चलती है सड़कों पे.
0: Joining us in order to get us details, Ishika, we just heard the account of Sia. You know, she's really raising very important questions here as to, you know, you bumped into me, you've not bothered to check if I'm alive, forget, you know, providing with her some assistance, taking her perhaps to the hospital and so on and so forth.
2: Well, Divya, as you rightly mentioned, you know, it was certainly a very unfortunate incident where the biker, in fact, she was hit, and how, you know, in the manner in which she was hit, for that, certainly the two videos that have come out in public domain, they show that how, first of all, she was shaved, she was also taunted, and then, you know, it was the vehicle that rammed into her motorbike. Now, certainly after this new video that has come out, she has also, the biker has now issued a statement saying that if the man who hit her vehicle, if he was, you know, so much caring about her, he would have stopped at the spot when his vehicle hit her motorbike. So that is the statement that has come out so far from her. And she has also gone on to question the, you know, the women's safety, especially for women on the roads of Delhi and Gurugram. You know, remember that the police is currently, in fact, you know, looking at this entire investigation, and they are saying that they are trying to get hold of the rider. certainly that remains to be in question. But till then, certainly the biker community also coming out and saying that this certainly shows that how unsafe it can be for women riders on the roads. And this certainly was captured. There are many such events that go uncaptured. Right. So certainly a big question on the women's safety is what even now Sia has alleged, and has alleged that there was aggressive driving that was done.
0: Jessica, hold on to that thought. Let's just also listen into what the family is saying. Of course, they're demanding action. The father's gone ahead and filed a police complaint. The brother is seeking, a hit and run charge. The father's alleging that this was all deliberate, and, you know, they want to raise that the case. And they, in fact, they want to file a case of attempted to murder. Let's listen in to what the family is saying.
3: ये सिया के ब्रदर इस वक्त मेरे साथ हैं, आज आप भाई हैं सिया के। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हिट एंड रन किया गया सिया को, हालांकि उनको इतनी चोट नहीं लगी, बहुत मेजर इंजरी नहीं हुई, लेकिन इस पूरे मामले में एज अ ब्रदर के तौर पे आप क्या डिमांड करते हैं?
4: देखिए, जब उसको एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले कॉल उसने मुझे ही करा था।
3: ये हाँ
4: जी, उसने
3: क्या बताया? उन्होंने आपको कॉल कर,
4: उन्होंने कहा कि पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरे को लगा कि स्लिप वगैरह हो गई होगी बाइक।
3: हाँ।
4: फिर उसने बोला कि किसी ने हिट एंड रन करा है उनके साथ, और उन्होंने फिर वीडियो भेजी, वो GoPro में वीडियो बना रही थी, और उन्होंने पहले ये दिखाया कि पहले चेज हो रहे थे, और उन्होंने उनको बोला भी था कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। फिर वही है, और फिर कहे थे कि वो चार लोग थे उस गाड़ी में, और वो ड्रंक थे सारे के सारे, और वो थोड़े अब्यूजिव सिग्नल्स भी दे रहे थे उसे। और
3: एक सवाल ये है, जिन्होंने हिट किया है, कल्याण बैसला नाम है उनका, उनका ये कहना है कि गलती मेरी नहीं थी, लड़की की गलती थी। इस तरह का एलिगेशन जो है वो कल्याण बैसला जो है वो आपकी बहन पे लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन जो विजुअल निकल के आया था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से वो लगातार चेज कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
4: उस पर ये कहना चाहूँगा कि उन्हें लग रहा है कि उनकी गलती है, और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनकी वीडियो भी बन रही थी। वो तो उन्हें लगा कि वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हर टाइम वो रिकॉर्ड हो रहे थे। और उनके जो स्टार्टिंग से वो चेजिंग हो रहा था, एक होता है एक्सीडेंट, अगर आपका गलती से टच हो जाए, अगर चलो एक्सीडेंट भी होता और वो रुकते तो हम उनका सुनते बात पूरी। अब वही है, वो रुके भी नहीं, फिर हमारे और भी बाइकर वो फ्रेंड्स थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको भी वो थोड़ा वो डिच करके भाग गए थे।
0: Ishika, back with us. Ishika, we just heard the brother speaking as to what really happened there. And, what is the family of the accused saying? Is anyone from their side coming forward to present their case?
2: Well, Divya, the family is very adamant that this was certainly an intentional case of hit and run, is what they say. And they say that the videos also goes on to prove the same about it. The father here, he had gone on to now file a police complaint against, in fact, over this entire incident, while the brother of Sia has gone on to say that this needs to be registered as an intentional hit and run case. So that is what the family is demanding. Family is demanding that a stringent action needs to be done in this particular case, because the videos that have come out, they clearly show how she was chased, how she was taunted, and then, certainly that vehicle intentionally rammed into her motorbike. And, remember, Divya, as you rightly mentioned, we have seen Sia's statement also coming out as to how she has gone on to say that if, he actually cared about, her at that time, after ramming her motorbike, he would have stayed to make sure that she's all right. But that was certainly not done. And now giving out such statements clearly show that he's trying to evade the action on him. Now, Basia has also gone on to question the women's safety, especially on the roads of Delhi and Gurugram. Remains to be seen how the police will be investigating this case further.
0: Right, thank you so much, Ishika, for getting us those details. And this is day two of that truck driver who remains in hiding. This is a video from the 13th of September when the accused Kalyan rammed his vehicle into a biker, Sia, and that's gone viral with calls for justice across social media. After the accused lawyer, in fact, made a shocking claim that he was provoked to crash his vehicle into the bike. A new video has come to light. The new video from a few meters behind the location of the crash shows the car swerving into the bike, and in seconds, the woman driver

0: Jan Basla, who is not at his home, and at this stage he has fled from his home, and right now those teams who have been formed by the Gurugram police is still searching for Kalyan Basla in this case.
1: Well, you know, we will keep tracking that story. Akhil, keep coming back to you for more on the latest as CS turning up the heat on the accused Kalyan Basla with that fresh video asking one pointed question: why didn't you stop? She alleges aggressive driving, says he tried to forcefully, he was trying to stop her, and claims that she could have lost her life. Meanwhile, Sia's family is seeking justice, with the father filing a complaint that they are demanding a hit and run case and an attempted murder charge. However, Kalyan has been on the run. It's day two. The hunt for the accused continues, and the crash video that's gone completely viral has triggered a social media outcry. Another video has surfaced, and that was shot from behind the crash site. It allegedly shows the car swerving into the bike before Sia is dragged onto the road. Kalyan's lawyers have claimed that he was provoked into the crash. An FIR is now, you know, there is an FIR that is being registered. Sia is going to be recording her statement with the police today. The question now really is, where is Kalyan Basla?
2: रिटर्न जो कंप्लेन आप लोग दर्ज करवाने वाले हैं, क्या शिवानी से आपने रिटर्न कंप्लेन रजिस्टर करवा ली है, लिखवा ली है?
3: लिखवा ली है।
2: क्या आरोप है और क्या मांग करेंगे आप लोग?
3: मैम, इसमें यही है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, जो कि जो पूरी कहानी थी, जो पूरा कल का इंसिडेंट था, वो उसमें पूरा ब्रीफ फैक्ट्स हैं। कंप्लेन इस तरीके से है कि कल सुबह 7:30 बजे लगभग गोल्फ कोर्स के रोड पर ये लोग अपने बाइक राइड कर रहे थे, और जो एक गाड़ी थी सियास, जिसमें चार लोग थे, ड्रंक कंडीशन में थे, जो कि पहले इनको टीज करने की भी कोशिश करी, तो इन्होंने बोला कि पीछे रहो आप। जब जैसी शिवानी ने क्रॉस किया उनको, तो उन्होंने साइड से हिट करके और वहाँ से भागे। उनके जो साथी थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, बट वो वहाँ से भागे। वो वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, आप एक बार देखेंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा।
2: लेकिन जो अक्यूज्ड है, मतलब जो जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि गलती उनकी नहीं थी, शिवानी की गलती थी। ये उनका एक बड़ा क्लेम है इस चीज़ को लेकर।
3: मैम, पहली बात तो क्या वो सामने आ चुके हैं? अगर सामने आ गए हैं तो फिर मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके एक्शन लें, क्योंकि उनका जो क्लेम है वो हो सकता है मे बी अलग हो सकता है, बट जो कि रियल फैक्ट्स हैं वो तो मुझे शिवानी ने बताया है कि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है वो गलत तो नहीं बोलेगी।
2: और जिस से मुलाकात हुई
3: जी,
2: क्या बताया उन्होंने इस पूरे मामले को?
3: यही पूरे फैक्ट्स बताए थे। इस तरीके से कल ये सब इंसिडेंट हुआ था जो मैंने भी आपको डिस्क्राइब किया।
2: कितनी देर पहले आपकी मुलाकात हुई शिवानी?
3: मेरी कल बात हुई थी, मेरी कल दोपहर को बात हुई थी।
2: शिकायत आपने कब लिखी है इस मामले में?
3: ये मैंने अभी लिखवाई है।
2: अभी आपने लिखवाई है, रिटर्न कंप्लेंट लिखवाई है?
3: सोशल मीडिया पे सारा, कल मैंने सोशल मीडिया पे सारा कुछ लिखवा दिया था।
2: हाँ।
3: और मैंने अपने भी सोशल मीडिया पे एक्स पे मैंने ये सब डाला है।
4: आज तक इन खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं थाने के अंदर, बहुत सीधा परिवार है।
5: पर इस केस को आप कैसे देखते हैं? आई एम श्योर कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, किस तरीके से गाड़ी को ओवरटेक करने जाते हैं कल्याण, और उसके बाद लड़की को लग जाती है, वो रुकते भी नहीं है वहाँ पर, ये भी नहीं देखने आते कि लड़की सही है कि नहीं है। उनको जब उनके दोस्त रोकने की भी कोशिश करते हैं, तब भी वो सिर्फ ये बोल के जाते हैं कि मेरी गलती नहीं है, और गाड़ी भगा के चले जाते हैं वहाँ पर। इसको कैसे देखते हैं आप?
4: मैडम, ऐसा है, गांव के लोग जो ज़्यादातर सीधे साधे रहते हैं, और जब आदमी से एक्सीडेंट हो जाता तो ज़्यादातर आदमी भागने की सोचता कि वहाँ पर कितना भीड़ इकट्ठा हो जाए, जान साथ तेरे क्या हो जाए, तो जब साथ मारपीट हो, इसलिए वहाँ पर रुका नहीं, मेरे विचार।
5: पर सर, क्या आप इसको गलत नहीं मानते, क्योंकि आपने किसी लड़की को नुकसान पहुँचा दिया, और आपको फिर अपनी चिंता हो रही है कि लोग आके आपको इस तरीके से मारेंगे?
4: देखो जी, ये मानवता के खिलाफ भी है, ये तो चलो जानकार थी अनजान थी, तो आदमी कोई अगर एक्सीडेंट दूसरे का हो जाता तो उसमें उसकी मदद करनी चाहिए, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ, और उसके माँ बाप से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ, हम इस गलती की माफ़ी दी जाए। हम अपने पूरे समाज को, पूरी बैसला क्षेत्र लगता है, हमारे 26 गाँव हैं हमारे, अगर हमारे बच्चे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और परमात्मा से।
1: Well, we will keep tracking that story and coming back to you for more on that. That was the lawyer of Sia, and they are going to be presenting their case. The demand really is to make a case of hit and run and attempted to murder charges. Moving on, Vijay's UK trip has now, in fact, been in the limelight, including his high-profile Silverstone visit with Ajit has drawn major attention. Vijay has shared glimpses of his visit, including his meeting with Ajit at Silverstone. The video has triggered a major social media buzz with, you know, the opposition party authorities questioning that very trip. Now, while Vijay's UK visit has produced major investment commitments, and that is to the tune of, many crore, 11,000 crore worth of deals that have been signed. We have a 1,000 crore rupee deal with GCC, a Sigma technology agreement with an 11,000

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: तो आप रुको, आप मुझे देखो, अगर मेरे को चोट लगी है, व्हाट इफ कि अगर वो 2-3 सेकंड का फर्क हो जाता, मेरे को बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ सकती थी, मेरी हड्डियाँ टूट सकती थी, मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी। तो ये जो सिंपथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सूट हो रहा है। और वो सारी वीडियोस में शो हुआ है कैसे वो भागे हैं, वो एक सेकंड भी नहीं रुके देखने के लिए कि जिन्होंने जिसको ठोका है कि वो इंसान जिंदा है या मर गया है। तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो बोलते हैं मेरी फैमिली पे बात आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान एक बार भी सोचते हैं कि उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी महिलाएं होंगी, और कुछ ऐसी महिलाओं को इतना अनसेफ फील होता है गुड़गांव और दिल्ली के रोड पे। तो जैसे ही आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आई होप कि हम ऐसे इंसानों को सिखाएं कि गाड़ी कैसे चलती है सड़कों पे।
1: इस गाड़ी वाले ने सिया को हिट किया था, कल्याण बैसला, वो लगातार अब ये बोल रहा है कि मैं तो सिया को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि उस बाइक पे लड़की बैठी हुई है। इस तरह की जो बातें वो लगातार कह रहा है, उसको क्या जवाब देना चाहेंगे आप?
2: उसको एक ही जवाब देना चाहूँगा कि भाई, आप सबको पता रहता है कौन लड़की है, कौन महिला है, कौन जेंट्स है, और आप जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर बैठ के, जबकि वो आपको बोल रही है कि अंकल थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, और आप ज़बरदस्ती वो आगे आने के बाद भी, मैं उसकी एक रील देख रहा था, अपने आप को पता नहीं कुछ दिमाग के अंदर अगर उनके गंद भरा हुआ है तो उसको निकाल लें, उसको महिला ना समझें, ठीक है ना। तो जो उनकी मानसिकता है उसको बदल लें, और जिस प्रकार से बेटी तो आगे गाड़ी लेके बिल्कुल किनारे पे चली गई थी, उसको हिट करके जा रहा है, और वहाँ पे रील के अंदर ये कह रहा जी मैं तो यूँ मुड़ रहा था और यूँ मुड़ रहा था और यू टर्न ले रहा था। यू टर्न लेने की भी कोई प्रक्रिया होती है, और गाड़ी नहीं चलानी आती तो गाड़ी कहाँ से चलाएंगे, खुद ही किसी की गाड़ी मांग कर लेकर आके गाड़ी चला रहे हैं। तो जिसकी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराएंगे।
1: गुड़गांव पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर?
2: देखिए, भाग के कहाँ जाएंगे, कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, भाग के कहाँ जाएंगे। जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि जी मेरे से गलती हो गई, उसको वहाँ थाने में आके पेश होना चाहिए था, चोरों की तरह मुंह काहे को छुपाते डोल रहे हैं। और अपनी रील के अंदर ये कह रहे हैं कि मैं तो आया नगर से आ रहा था, आया नगर से ये बात चल रही थी और आया नगर से आगे पीछे हो रहा था। भाई, आया नगर से आने जाने में 50 रास्ते बीच में आते हैं, आपकी मानसिकता ही थी उसको हिट करने की। अगर रोड के ऊपर चल रहा हूँ, कोई व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता उससे हो सकता है मेरी 1-2 मिनट के लिए कोई बात हो, पर अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं अपनी गाड़ी लेके अपने रास्ते चला जाऊँगा। और वो कह रहा है कि मेरे साथ मेरी कोई रिश्तेदार भी थी। अगर आप फैमिली के साथ ऐसे हिट करके जा रहे हो तो आप तो अकेले में पता नहीं क्या हिट करके जाओगे, और आप ये कह रहे कि वो मुझे नहीं पता था लड़की है। आपको हो सकता है कि आपने ज्यादा नशा कर रखा हो, आपको दिख नहीं रहा हो लड़का है कि लड़की है। और फिर आपने टक्कर मारने के बाद जब वो रोड के ऊपर गिर गई, घसीटरी है, आपको इतनी भी आपके अंदर सभ्यता नहीं है कि आपने वहाँ गाड़ी रोक कर उसको देखना भी चाहा कि भाई इतनी चोट लग गई बच्चे के। पुलिस ने जो वहाँ पर FIR करी है उस पर बड़ी नॉर्मल धाराएं उन्होंने लगाई थी, तो हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमने एप्लीकेशन राइटिंग के अंदर दी है उनको, इसका अटैम्प टू मर्डर और हिट एंड रन वाली धारा इसके ऊपर लगाई जाए, और ये जानबूझ के किया हुआ है ये।
1: चलिए, सिया के ब्रदर इस वक्त मेरे साथ हैं, आप भाई हैं सिया के, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हिट एंड रन किया गया सिया को, हालांकि उनको इतनी चोट नहीं लगी, बहुत मेजर इंजरी नहीं हुई, लेकिन इस पूरे मामले में एज अ ब्रदर के तौर पे आप क्या डिमांड करते हैं?
3: देखिए, जब उसको एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले कॉल उसने मुझे ही करा था।
1: हाँ
3: जी, उसने
1: क्या बताया? उन्होंने आपको कॉल कर,
3: उन्होंने कहा कि पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरे को लगा कि स्लिप वगैरह हो गई होगी बाइक। फिर उसने बोला कि किसी ने हिट एंड रन करा है उनके साथ, और उन्होंने फिर वीडियो भेजी, वो GoPro में वीडियो बना रही थी, और उन्होंने पहले ये दिखाया कि पहले चेज हो रहे थे, और उन्होंने उनको बोला भी था कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। फिर वही है, और फिर कहे थे कि वो 4 लोग थे उस गाड़ी में, और वो ड्रंक थे सारे के सारे, और वो थोड़े अब्यूजिव सिग्नल्स भी दे रहे थे उसे। और
1: एक सवाल ये है, जिन्होंने हिट किया है, कल्याण बैसला नाम है उनका, उनका ये कहना है कि गलती मेरी नहीं थी, लड़की की गलती थी। इस तरह का एलिगेशन जो है वो कल्याण बैसला जो है वो आपकी बहन पे लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन जो विजुअल निकल के आया था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से वो लगातार चेज कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
3: उस पर

0: कहना चाहूँगा कि उन्हें लग रहा है कि उनकी गलती है और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनकी वीडियो भी बन रही थी। वो तो उन्हें लगा कि वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हर टाइम वो रिकॉर्ड हो रहे थे। और उनके जो स्टार्टिंग से वो चेजिंग हो रहा था, एक होता है एक्सीडेंट, अगर आपका गलती से टच हो जाए, अगर चलो एक्सीडेंट भी होता और वो रुकते तो हम उनका सुनते बात पूरी। अब वही है, वो रुके भी नहीं, फिर हमारे और भी बाइकर वो फ्रेंड्स थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको भी वो थोड़ा वो डिच करके भाग गए थे।
1: रिटर्न जो कंप्लेन आप लोग दर्ज करवाने वाले हैं, क्या शिवानी से आपने रिटर्न कंप्लेन रजिस्टर करवा ली है, लिखवा ली है?
2: लिखवा ली
1: है। क्या आरोप है और क्या मांग करेंगे आप लोग?
2: मैम, इसमें यही है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, जो कि जो पूरी कहानी थी, जो पूरा कल का इंसिडेंट था, वो उसमें पूरा ब्रीफ फैक्ट्स हैं। कंप्लेंट इस तरीके से है कि कल सुबह 7:30 बजे लगभग गोल्फ कोर्स के रोड पे ये लोग अपने बाइक राइड कर रहे थे और जो एक गाड़ी थी सियास, जिसमें 4 लोग थे, ड्रंक कंडीशन में थे, जो कि पहले इनको टीज करने की भी कोशिश करी तो इन्होंने बोला कि पीछे रहो आप। जब जैसी शिवानी ने क्रॉस किया उनको, तो उन्होंने साइड से हिट करके और वहाँ से भाग गए। उनके जो साथी थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, बट वो वहाँ से भागे। वो वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, आप एक बार देखेंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा।
1: लेकिन जो अक्यूज्ड है, मतलब जो जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि गलती उनकी नहीं थी, शिवानी की गलती थी, ये उनका एक बड़ा क्लेम है इस चीज़ को लेकर।
2: मैम, पहली बात तो क्या वो सामने आ चुके हैं? अगर सामने आ गए हैं तो फिर मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके एक्शन लें, क्योंकि उनका उनका जो क्लेम है वो हो सकता है मे बी अलग हो सकता है, बट जो कि रियल फैक्ट्स हैं वो तो मुझे शिवानी ने बताया है कि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है वो गलत तो नहीं बोलेगी।
1: और जिस से मुलाकात हुई
2: जी,
1: क्या बताया उन्होंने इस पूरे मामले को?
2: यही पूरे फैक्ट्स बताए थे। इस तरीके से कल ये सब इंसिडेंट हुआ था जो मैंने भी आपको डिस्क्राइब किया।
1: कितनी देर पहले आपकी मुलाकात हुई शिवानी?
2: मेरी कल बात हुई थी, मेरी कल दोपहर को बात हुई थी।
1: शिकायत आपने कब लिखी है इस मामले में?
2: ये मैंने अभी लिखवाई है।
1: अभी आपने लिखवाई है, रिटर्न कंप्लेंट लिखवाई है?
2: सोशल मीडिया पे सारा, कल मैंने सोशल मीडिया पे सारा कुछ लिखवा दिया था। हाँ। और मैंने अपने भी सोशल मीडिया पे एक्स पे मैंने ये सब डाला है।
3: Well, also listen in to this conversation with Sia's fellow rider who was present at the spot when this incident took place on Golf Course Road in Gurugram. Listen in to what we've been told.
4: I was on the road उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर। और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और रोड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना, उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की। और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो, कुछ हो सकता है। और फिर वो गाड़ी वाले के पास, मैं जब उसके विंडो के पास गया तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
1: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, मतलब सिया को?
4: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में। देयर वर 3 गाइस इन द कार, 3 लोग थे वो कार के अंदर और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
1: ओके,
4: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के। और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा 4-वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी। एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे।
3: Ishika is tracking this probe very closely. She continues to be with us to offer further clarity currently. Ishika, there's video footage, there's the vehicle's registration number, there are eyewitnesses who were riding with Sia. There's also the allegation that the driver chased her, later drove away after the collision. Why has Kalyan Besla still not been traced then?
5: Well, Well, Parmeshwar, that is the question that continues to be even in the mind of the family here. And they continue to say that we have filed a complaint. We are waiting for the police to actually arrest Mr. Kalyan. So that is something even the family is concerned about, and they are raising their doubts about. Meanwhile, if you look at Gurugram police, they have said that they have already stepped up their measures, and for that they have formed a five teams also to investigate this matter. So certainly now what they are saying is that they are also looking at all the CCTV footage from that particular area to establish the sequence of events, and more so that today they will be in fact recording the statement, especially of the family today. So that is going to be done today. Meanwhile, if we talk about Mr. Kalyan, he's already on the run, that we have told our viewers. But Palwal CIA is on the hunt for Kalyan Bensla. So that they are saying that it is expected that today might be that he might be arrested. He is still on the run, is what the police say. But all their efforts, all their team deployment has been stepped up so that he gets arrested as soon as possible. Remains to be seen how much more time will it be taking. Over to you.
3: We'll continue to track all the finer developments with you, Ishika. Thanks so much as always. All right. Kalyan Bensla, accused of driving the Maruti Ciaz that allegedly hit the biker, describes himself online as an international kabaddi player and a member of the Indian rugby team. He also claims to have won the Amateur Olympia India bodybuilding tournament. You must note that his Instagram is now deactivated, but before it disappeared, it offered a glimpse into the image that Bensla projected online, one dominated by bodybuilding, by fitness and muscle flexing photographs.
6: Kalyan Bensla, a fitness enthusiast, bodybuilder, and according to his now deactivated Instagram profile, an international kabaddi player and member of the Indian rugby team. His profile also claimed he was a winner of the Amateur Olympia India bodybuilding tournament. His social media presence was clear. Post after post showed Bensla working out, posing and flexing his muscles. He also had a substantial following on Instagram. And then there's the other side, devotional, local music videos. One of them titled Uttarakhand Ka Maharaja. And now, his name is at the center of a road rage case in Gurugram. A woman biker is riding with a group when a confrontation allegedly begins with the occupants of a Maruti Ciaz. Her action camera records what happens next. She appears to be trying to get away, but the car follows. Then suddenly, the car veers right and it hits her motorcycle from the side and speeds away. The impact throws the biker onto the road. Cops identified Kalyan Bensla as a man allegedly involved in the incident. But what makes the case particularly striking is the contrast between the image Bensla projected online and the allegations now being investigated. Bureau Report, NDTV.
3: All right, on that note, let's turn our attention to breaking news coming in this morning. The government says that Meta has agreed to report child safety-related matters to the appropriate law enforcement agencies as New Delhi steps up pressure on social media platforms over harmful content involving children. The government is calling online safety of children non-negotiable and says that platforms operating in India will be expected to take proactive steps to identify and remove such content. Meta has now agreed, according to the government, to report child safety-related matters to the appropriate law enforcement authorities. But the government also, you must note, is making it clear that it doesn't consider this the end of the conversation. In fact, it says discussions are continuing with other platforms and warns that action will be taken against platforms that fail to take proactive measures to protect children online. The larger question is, of course, what proactive will actually mean in practice? For more on that, let's go across to Akhilesh, who joins us with the latest coming in from the government this morning. Akhilesh, what exactly has Meta agreed to? And when the government says child safety related matters, what exactly does that cover? Is this specifically suspected child sexual abuse material? Is it grooming and exploitation or a wider category of online harm?
7: All these materials will be covered, and the government is very clear that it will take very strong action whenever there is a violation of the rules and the guidelines laid down by the government.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: All right, our big focus at 9 a.m. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured after a man allegedly rammed his car into her following a road rage incident. Over 50 hours on, the suspected driver is at large and police have launched a manhunt for him, deputing 5 teams. Sia has now released another video putting the focus on the driver's conduct, which is about accused Kalyan Besla after the collision. And her question is basically, if this was an accident, why did the driver not stop and check on her? She alleges that the driver of a white Maruti Ciaz began chasing her, repeatedly signaled her to stop after driving dangerously close to her. Sia says she could have lost her life and questions why the accused did not stop even for a moment to check on her. She also asks whether the videos that captured the incident are not enough to establish a hit-and-run incident. Her family, meanwhile, has now formally approached the Gurugram police. Her father has alleged that she was deliberately rammed and is seeking tougher charges, including hit-and-run and attempt to murder. Her brother has also made a similar allegation. As the police have identified the suspected driver as Kalyan Besla, who remains absconding 50 hours on, even though 5 teams have been deployed by the Gurugram police to look for him.
1: I'm Sia this side, and subah se mera road accident wala video bahut news and Instagram pe chal raha hai. And I want to share something with you jo abhi recently maine dekha hai. Isme mention kar rahe hain ki हम बार बार बाइक तेज़ कर रहे थे, स्लो कर रहे थे और हम इनको पिंच कर रहे थे. वो तो आई थिंक सो मेरी पूरी वीडियो में शो हो रहा है कौन किसको पिंच कर रहा था. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाइक तेज़ कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है कि पूरे रास्ते आप मुझे चेस करें. और जैसा ये बोल रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो लड़की चला रही है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. आपने ऑब्वियसली मेरे बाल पीछे बहुत लंबे बाल हैं, मेरी चोटी बनी हुई थी, आपने वो देखा, आप आए, आपने एक्शन करा, आपने मुझे बाइक रोकने के लिए बोला. एंड उसके बाद कह रहे हैं कि 22-23 लोग थे और वो दो वीडियो ही क्यों आई, बाकी क्यों नहीं आए. मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका हिट एंड रन वाले केस के लिए क्या दो वीडियो इनफ नहीं है. एक वीडियो जिसमें दिख रहा है कि आप फ्रंट लेन से सीधा डायरेक्टली थर्ड लेन में आके मार के भाग जाते हैं, एंड एक फ्रंट वीडियो जो मेरे कैमरे से आया हुआ है कि आप फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में आप मुझे हिट करके बकायदा मैं पूरी घिसी हूँ आपकी गाड़ी पे और उसके बाद मैं पूरे रोड पे गिरी हूँ. क्या वो दो वीडियो आपके लिए इनफ नहीं है? और अगर आपको मेरे लिए इतना ही दुख हो रहा था तो उस टाइम पे आप रुके क्यों नहीं? आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर आपने मुझे ठोका है तो आप रुको, आप मुझे देखो अगर मेरे को चोट लगी है. वॉट इफ कि अगर वो 2-3 सेकंड का फर्क हो जाता, मेरे को बहुत ज़्यादा गहरी चोट आ सकती थी, मेरी हड्डियाँ टूट सकती थी, मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी. तो ये जो सिंपथी वाला जो ये कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सूट हो रहा है. और वो सारी वीडियोस में शो हुआ है कैसे वो भागे हैं, वो एक सेकंड भी नहीं रुके देखने के लिए कि जिन्होंने जिसको ठोका है कि वो इंसान जिंदा है या मर गया है. तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो बोलते हैं मेरी फैमिली पे बात आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे इंसान एक बार भी सोचते हैं कि उनके घर में भी बहनें हैं, उनके घर में भी महिलाएं होंगी और कुछ ऐसी महिलाओं को इतना अनसेफ फील होता है गुड़गांव और दिल्ली के रोड पर. तो जैसे ही आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आई होप कि हम ऐसे इंसानों को सिखाएं कि गाड़ी कैसे चलती है सड़कों पे.
2: उस गाड़ी वाले ने सिया को हिट किया था, कल्याण बैसला, वो लगातार अब ये बोल रहा है कि मैं तो सिया को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि उस बाइक पे लड़की बैठी हुई है. इस तरह की जो बातें वो लगातार कह रहा है, उसको क्या जवाब देना चाहेंगे आप?
3: उसको एक ही जवाब देना चाहूँगा कि भाई आप सबको पता रहता है कौन लड़की है, कौन महिला है, कौन जेंट्स है, और आप जिस प्रकार से गाड़ी के अंदर बैठ के, जबकि वो आपको बोल रही है कि अंकल थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, और आप ज़बरदस्ती वो आगे आने के बाद भी, मैं उसकी एक रील देख रहा था, अपने आप को पता नहीं कुछ दिमाग के अंदर अगर उनके गंद भरा हुआ है तो उसको निकाल लें, उसको महिला ना समझें, ठीक है ना. तो जो उनकी मानसिकता है उसको बदल लें. और जिस प्रकार से बेटी तो आगे गाड़ी लेके बिल्कुल किनारे पे चली गई थी, उसको हिट करके जा रहा है और वहाँ पे रील के अंदर ये कह रहा जी मैं तो यूँ मुड़ रहा था और यूँ मुड़ रहा था, और यू टर्न ले रहा था। यू टर्न लेने की भी कोई प्रक्रिया होती है और गाड़ी नहीं चलानी आती तो गाड़ी कहाँ से चलाएंगे, खुद ही किसी की गाड़ी मांग कर लेकर आके गाड़ी चला रहे हैं, तो जिसकी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराएंगे।
2: गुड़गांव पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर?
3: देखिए, भाग के कहाँ जाएंगे, कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, भाग के कहाँ जाएंगे। जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि जी मेरे से गलती हो गई, उसको वहाँ थाने में आके पेश होना चाहिए था, चोरों की तरह मुंह काहे को छुपाते डोल रहे हैं। और अपनी रील के अंदर ये कह रहे हैं कि मैं तो आया नगर से आ रहा था, आया नगर से ये बात चल रही थी और आया नगर से आगे पीछे हो रहा था। भाई, आया नगर से आने जाने में 50 रास्ते बीच में आते हैं, आपकी मानसिकता ही थी उसको हिट करने की। अगर रोड के ऊपर चल रहा हूँ, कोई व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता उससे हो सकता है मेरी एक आध मिनट के लिए कोई बात हो, पर अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं अपनी गाड़ी लेके अपने रास्ते चला जाऊँगा। और वो कह रहा है कि मेरे साथ मेरी कोई रिश्तेदार भी थी। अगर आप फैमिली के साथ ऐसे हिट करके जा रहे हो तो आप तो अकेले में पता नहीं क्या हिट करके जाओगे। और आप ये कह रहे कि वो मुझे नहीं पता था लड़की है, आपको हो सकता है कि आपने ज्यादा नशा कर रखा हो, आपको दिख नहीं रहा हो लड़का है कि लड़की है। और फिर आपने टक्कर मारने के बाद जब वो रोड के ऊपर गिर गई, घसीटरी है, आपको इतनी भी आपके अंदर सभ्यता नहीं है कि आपने वहाँ गाड़ी रोक कर उसको देखना भी चाहा कि भाई इतनी चोट लग गई बच्चे के। पुलिस ने जो वहाँ पर एफआईआर करी है उस पर बड़ी नॉर्मल धाराएं उन्होंने लगाई थी, तो हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमने एप्लीकेशन राइटिंग के अंदर दी है उनको, इसका अटैम्प्ट टू मर्डर और हिट एंड रन वाली धारा इसके ऊपर लगाई जाए। और ये जानबूझ के किया हुआ है ये।
2: चलिए, सिया के ब्रदर इस वक्त मेरे साथ हैं, आप भाई हैं सिया के, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हिट एंड रन किया गया सिया को, हालांकि उनको इतनी चोट नहीं लगी, बहुत मेजर इंजरी नहीं हुई, लेकिन इस पूरे मामले में एज अ ब्रदर के तौर पे आप क्या डिमांड करते हैं?
4: देखिए, जब उसको एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले कॉल उसने मुझे ही करा था।
2: हाँ
4: जी, उसने
2: क्या बताया, उन्होंने आपको कॉल कर,
4: उन्होंने कहा कि पहले एक्सीडेंट हुआ, मेरे को लगा कि स्लिप वगैरह हो गई होगी बाइक। फिर उसने बोला कि किसी ने हिट एंड रन करा है उनके साथ, और उन्होंने फिर वीडियो भेजी, वो GoPro में वीडियो बना रही थी, और उन्होंने पहले ये दिखाया कि पहले चेज हो रहे थे, और उन्होंने उनको बोला भी था कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। फिर वही है, और फिर कहे थे कि वो चार लोग थे उस गाड़ी में और वो ड्रंक थे सारे के सारे, और वो थोड़े अब्यूजिव सिग्नल्स भी दे रहे थे उसे। और
2: एक सवाल ये है, जिन्होंने हिट किया है, कल्याण बैसला नाम है उनका, उनका ये कहना है कि गलती मेरी नहीं थी, लड़की की गलती थी, इस तरह का एलिगेशन जो है वो कल्याण बैसला जो है वो आपकी बहन पे लगा रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा एलिगेशन जो है वो उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन जो विजुअल निकल के आया था उसमें हम सब ने देखा कि किस तरह से वो लगातार चेस कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे?
4: उस पर कहना चाहूँगा कि उन्हें लग रहा है कि उनकी

0: गलती है और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि उनकी वीडियो भी बन रही थी। वो तो उन्हें लगा कि वो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हर टाइम वो रिकॉर्ड हो रहे थे। और उनके जो स्टार्टिंग से वो चेजिंग हो रहा था, एक होता है एक्सीडेंट अगर आपका गलती से टच हो जाए, अगर चलो एक्सीडेंट भी होता और वो रुकते तो हम उनको सुनते बात पूरी। अब वही है, वो रुके भी नहीं, फिर हमारे और भी बाइकर वो फ्रेंड्स थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, उनको भी वो थोड़ा वो डिच करके भाग गए थे।
1: रिटर्न जो कंप्लेन आप लोग दर्ज करवाने वाले हैं, क्या शिवानी से आपने रिटर्न कंप्लेन रजिस्टर करवा ली है, लिखवा ली है?
2: लिखवा ली
1: है। क्या आरोप है और क्या मांग करेंगे आप लोग?
2: मैम, इसमें यही है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, जो कि जो पूरी कहानी थी, जो पूरा कल का इंसिडेंट था, वो उसमें पूरा ब्रीफ फैक्ट्स हैं। कंप्लेंट इस तरीके से है कि कल सुबह 7:30 बजे लगभग गोल्फ कोर्स के रोड पे ये लोग अपने बाइक राइड कर रहे थे और जो एक गाड़ी थी सियास, जिसमें 4 लोग थे, ड्रंक कंडीशन में थे, जो कि पहले इनको टीज करने की भी कोशिश करी, तो इन्होंने बोला कि पीछे रहो आप। जब जैसी शिवानी ने क्रॉस किया उनको, तो उन्होंने साइड से हिट करके और वहाँ से भाग गए। उनके जो साथी थे उन्होंने रोकने की कोशिश करी, बट वो वहाँ से भागे। वो वीडियोस सोशल मीडिया पे पड़ी, आप एक बार देखेंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा।
3: Let's also listen into this conversation with Sia's fellow rider who was present at the spot when this incident took place on the 13th of September. Here's what they told NDTV.
4: I was on the road उस टाइम पे और सिया ने जस्ट मेरे को क्रॉस करा और मैंने देखा कि एक कार उसको बहुत बुरी तरह चेस कर रही है रोड के ऊपर, और मेरे को मतलब थोड़ा मतलब वो अजीब लगा और रोड लगा कि वो कार ऐसे मतलब उसको चेस कर रही है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसने वो जो कार वाला था ना, उसने बहुत ज्यादा क्लोजनेस मतलब बहुत ज्यादा क्लोज में था, वो बहुत ज्यादा एकदम टेल गेटिंग कर रहा था बाइक की। और फिर उस गाड़ी वाले ने पहले शीशा खोला, सिया को कुछ इशारा करा, देन सिया ने अपने हाथ से बोला कि थोड़ा दूर रहो, कुछ हो सकता है। और फिर वो गाड़ी वाले के पास, मैं जब उसके विंडो के पास गया, तो उस गाड़ी वाले ने मेरी साइड शीशा खोल के कुछ इशारा करा, मतलब उसने मेरे को शायद ये बोला था कि रोको इसे, क्योंकि वो हाथ से ऐसे कर रहा था रोकने वाला साइन।
1: अच्छा, वो बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, मतलब सिया को?
4: हाँ, मतलब वो चेस कर रहा था और चेस करके उसका ये था कि रुको साइड में। देयर वर 3 गाइस इन द कार, 3 लोग थे वो कार के अंदर, और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और कार के शीशे जेड ब्लैक थे उस टाइम पे।
1: ओके,
4: बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थे कार के। और देन जो सेंट्रल प्लाजा से आगे वाला जो टर्न है, जो हमारा 4-वे है, जो चौक है, वहां से हमने जब टर्न लिया तो उस गाड़ी वाले ने अपनी स्पीड बढ़ाई, मेरे सामने एक कार आ गई, उसकी वजह से सिचुएशन ऐसा हो गया कि मुझे अपनी बाइक स्लो करनी पड़ी। एंड देन उसने राइट से लेफ्ट में जहाँ सिया थी, सिया साइड में हो रही थी ताकि वो गाड़ी निकल जाए उससे आगे, उसने उसको हिट करा और वो भागने लगा। मैंने एकदम से सिचुएशन देखा और मैं थोड़ा मतलब हाइपर हो गया, हड़बड़ा के कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बट मेरे को ये था कि मेरा कैमरा ऑन है, तो मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया गाड़ी वाले का, क्योंकि सिया के पास लोग आ चुके थे।
3: Ishika Verma is tracking how this probe is progressing. She joins us with the clarity we need at this point. Ishika, as we were discussing, there's video footage, there's the vehicle's registration number, there are eyewitnesses who were riding with Sia, there are 5 teams deployed who are raiding hideouts, the allegation that the driver chased her, there were 3 people in the car. Why has Kalyan Besra still not been traced then?
5: Well, Parmeshwar, that continues to remain the big question, that why has Mr. Kalyan not been arrested and when will he be finally arrested? We here at NDTV have already brought in, you know, the voices of the eyewitnesses, the voices of the family, and yet, in fact, you know, we are seeing that the investigation is certainly taking time to progress. Well, we are currently reporting from the Gurugram Police Station of Sector 56, where the FIR has been registered in this particular case. And after that, certainly, the police has formed 5 teams. 5 teams to look into this entire investigation. There are raids that are happening at the different locations of the accused in this particular case. After that, certainly the police is saying that all the CCTV footage near the golf course area are being looked into to establish the sequence of events as to what happened, when happened, and in fact was it intentional or not. Remember that Sia here has alleged that there were in fact, obscene gestures also that were made at her. And in fact, she has gone on to claim that in fact, the man, Kalyan Besla, he came intentionally, he chased her, and then he rammed his car into her motorbike, after which she lost control. She has gone on to say that it is in fact an intentional hit and run case, and the two videos that have come out are the proofs of this. So certainly the police is looking into all of that. Meanwhile, let me tell you that the Palwal CIA is already on a hunt for Kalyan Besla. His counsel so far has gone on to say that, you know, the entire matter, the entire video is not out, and, you know, he has gone on to give some bizarre comments over this, calling it nadani and in fact, you know, choti si galti. So remains to be seen how the case will progress, but the family here is demanding stringent action. They want that, in fact, attempt to murder sections also needs to be put in the FIR so that stringent action is taken on Kalyan Besla. Over to you.
3: We'll of course continue to track all the updates with you. Ishika, thanks so much for joining us with the latest coming in. Kalyan Besla remains on the run as the September 13th Gurugram crash video continues to trigger outrage. The video of this collision is now viral, and now another angle of the incident has surfaced. That video allegedly shows Kalyan's car swerving into the bike before Sia's dragged onto the road. Kalyan's lawyer, meanwhile, now claims that he was provoked before the collision. That claim will, of course, have to be tested against the video evidence, the witness accounts and the investigation largely. An FIR, though, has been registered. Sia is expected to record her statement with the police today. This is the family is seeking more serious charges. But the big question for us at this point remains, where is Kalyan Besla? The police have identified him. They have the registration number of the car as well. They have video footage. They've heard from witnesses. So then what is holding up the arrest? That's the big question. My colleague Shiv spoke to the lawyer, and Kalyan Besla's lawyer, Naveen Besla, rejected allegations that the collision with the woman biker was deliberate. He has argued in a conversation with NDTV that viral video shows only part of the incident and claimed that the case is being portrayed differently from what actually happened. This as there are allegations that there were three people in the car and that they were under the influence.
6: Naveen ji, aapka client kahan hai? Kalyan Besla kahan?
7: Sir. Client nahi, mera dost bhi hai, mera bhai bhi hai sir.
6: Haan, toh kahan chhipa hua hai?
7: Hum ek hi gaon se belong karte hain sir.
6: क्यों इतना भाग रहे हैं
7: ये? सर भाग सर सर सर ये भाग कोई नहीं रहा सर. एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो हम बिलोंग करते हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं. एक्चुअली वो तो समझते नहीं, मैं समझता हूँ उस बात को. वो नादानी कर रहे हैं कछुले, उससे गलती हुई है. ठीक है जी सर, ठीक है. उसकी जो गलती, छोटी गलती है ना, वो बहुत बड़ी करके दिखा दी गई है.
6: नहीं, कोई छोटी गलती नहीं है. वो लड़की जो है
7: सर सर सर सर सर सर सर देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ सर,
6: घटना में मर सकती है आपको भी.
7: नहीं सर सर देखो सर सर सर उसके लिए ये सर बहुत गलत.
6: आपका जो नादान दोस्त है, आपका जो बेकसूर दोस्त है, आपका क्लाइंट जो है, वो एक कायर की तरह भागा हुआ है और वो हाइड.
7: सर सर सर सर सर सर सर
6: कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, एनडीटीवी का फोन उठा नहीं रहा है, पुलिस का
7: सर एक्चुअली सर
6: आंसर नहीं भी कर रहे.
7: सर सर मैं तो ये चीज कह रहा हूँ सर,
6: इतना जो जाते हैं, इतना जो बनाते हैं और एक कैमरे के सामने नहीं आ सकते.
7: नहीं सर बिल्कुल आ जाएंगे सर, सर बिल्कुल आ जाएंगे. जैसे ही संपर्क होता वो आएगा, 100% आएगा सर.
6: और एक एक संपर्क नहीं,
7: एक सीधी सी. नहीं अब नहीं है, कोई संपर्क नहीं है सर. मेरा एक सीधी सी बात और बता दूं सर, कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता. लोगों हमसे जानता नहीं जानता कोई भी सर. हम बता दें कि पुलिस से कोई नहीं छुप सकता, ना कायर ना कोई मर्द हो इसमें.
6: आपकी कल्याण
7: मेरी मेरी बात. मैं सुबह मॉर्निंग में कोर्ट में था. सुनो सुनो सर, सुनो सर सर सुनो तो सही सर. मैं सर सुनो सर, मेरी सुन दो एक सेकंड. मेरा क्या, उसका दस, मेरे पास 10 बजे फोन आया कि हम भाई गुड़गावा कोर्ट चल रहे हैं और क्या नाम है पुलिस थाने में चल रहे हैं, वहां पे हम अपनी बेल करवाएंगे जो भी है. एक्चुअली मेरा आज मंडे था, काम ज्यादा था. मैंने बोला कि हम 2 या 2:30 बजे चलेंगे. 2:30 बजे फिर मैंने उसको फोन किया कि तेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन आया? उसने मेरे से बोला कि मेरे पास किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया. उसके बाद ये गांव में था, मैं इसके गांव में गया हूँ।
6: नहीं अरे ठीक है नहीं नवीन जी, एक बात बताइए आप बोल रहे हैं
7: उसके गांव में गया हूँ, गांव में जाने के बाद आज तक वाले न्यूज वाले आए हैं, न्यूज वालों को उसने पूरी प्रॉपर अपना साइड रखा है, अपना पक्ष रखा है।
6: मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बात जो है वो गलत क्यों है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप सर की एक छोटी बात है, छोटी सी गलती है।

0: कि गाड़ी आ गई है एंड मैं स्लो हुई हूँ एंड वो टक्कर मार के जाता है, मैं गिरती हूँ, मुझे कोई होश नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे साथ। एंड जैसे मेरे एक फेलो राइडर ने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपकी गलती है। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है। एंड वो रुकता नहीं है, वो रेड लाइट भी तोड़ के उसको लेफ्ट का रास्ता मिलता है एंड वो भाग जाता है।
1: राइडर थे आप, कितने बजे कहां से निकली थी और कहां तक आपकी,
2: और गाड़ी में कौन कौन मौजूद था? क्या केवल मर्द थे या औरतें भी थी उस गाड़ी में?
0: उसमें सारे लड़के ही थे, कोई औरत नहीं थी जितना मैंने देखा। और मैंने जो राइड थी कि मैं अपने घर से निकल के गुड़गांव में एक बाइकर वन कैफ़े है जो मेजरली बाइकर्स के लिए काफ़ी फेमस है, मैं वहीं जा रही थी। मेरा कोई आज सच ग्रुप नहीं है जिसके साथ मैं चलती हूँ, मैं कभी अपने ब्रदर के साथ भी राइड करती हूँ। सी मेरे पास जो बाइक है वो और भी लोगों के पास है, तो बाइकर कम्युनिटी में सब एक दूसरे को जानते हैं किसके पास क्या बाइक है, तो वो लोग मुझे जानते हैं। हाँ, मेरी हेलो हाय होती है और उन्होंने देखा कि मैं आगे चल रही हूँ। तभी मेरे एक काइंड ऑफ मेरा फ्रेंड है, हम एक दो बार में हमने ग्रुप राइड करा है अप्रीलिया वालों के साथ, तो उन्होंने देखा कि जब ऐसा हो रहा है, उसने पहचाना कि वो मैं हूँ। तो अच्छा है उसका कैमरा चल रहा था और उसने सब चीज़ें रिकॉर्ड करी।
2: आपके फेलो राइडर ने भी जानकारी एनडीटीवी को दी थी कि किस तरह से वो लगातार आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे। क्या इंटेंशनली आपको लगता है कि आपको हिट करने की कोशिश या परेशान करने की कोशिश की जा रही थी? आपको लग रहा है कि
0: एक्सीडेंट जब हुआ तो जितने भी जिन लोगों ने देखा, मेरी बाइक का पीछे का ब्रेक टूट गया था, आगे का ब्रेक टूट गया था, और वो बाइक मतलब प्रॉपरली चलाने लायक नहीं थी। जो भी दूसरे वहाँ पे राइडर्स ने मुझे देखा, एक किसी ने मुझे पीछे बिठाया और हम पहले बाइकर बन लेके गए। मैंने वहाँ पे हीट पैच वगैरह जो भी चीज़ें थी मैंने वहाँ ऑर्डर करी, वहाँ पे मैंने लगाई। फिर उसके बाद एक घंटे, क्योंकि मैं लिटरली टेरिफाई हो गई थी, आई वॉज लिटरली शेकिंग, मेरे से बिल्कुल भी बाइक नहीं चल रही थी। एंड फिर एक दो राइडर्स ने मतलब मेरी एक ने बाइक चलाई एंड मैंने किसी और की बाइक राइड करके मैं यहाँ तक आई। देन फिर मैंने अपनी बाइक स्विच करी, फिर मैं अपने घर पे उस बाइक को लाके मैं पहुँची। सी जो वो लोग कह रहे हैं कि मैं पिंच कर रही थी, देखो मुझे कोई शौक नहीं है किसी गाड़ी वाले को पिंच करने का, ठीक है। मैं बाइक आज से नहीं, मैं एक साल से चला रही हूँ। आई नो कि मैं राइड कर रही हूँ तो मुझे अपनी सेफ्टी देखनी है, तो मैं किसी से फालतू में रोड पे क्यों पंगे लूँगी। एंड जैसे वो बोल रहे हैं पिंच कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, वो देखिए वीडियो में शो हो रहा है। एंड मुझे नहीं लगता कि अब उनकी कोई भी सफाई काम आएगी कि जैसे उनका लॉयर या वो बयान देने की कोशिश कर रहे कि मेरी गलती नहीं है। आज से सारे देश के पास वो वीडियो है कि किसने क्या इंसिडेंट करा, एंड ऑब्वियसली वो गुनाहगार है, हिट एंड रन का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का, इंटेंशनली वो हिट करके गए हैं जैसे वीडियो में शो हुआ है।
3: गुड़गांव पुलिस ने आपसे संपर्क किया?
0: गुड़गांव पुलिस ने मेरे से अभी इंस्टाग्राम के थ्रू किया था जब मेरा वीडियो ज़्यादा हुआ। एंड मेरा मेन पर्पस वीडियो डालने का यही था कि लोग सोचते हैं कि हम मार के चले जाएंगे किसी लड़की को या किसी बाइकर को, वो क्या एक्शन लेंगे, उनका तो आए दिन गिरने का होगा। और इसलिए मेरा मेन पर्पस था वीडियो डालने का कि लोगों में डर नहीं है कि अगर आप रोड पे किसी को भी मार के चले जाएंगे, कोई मर रहा है, कोई जिंदा है, किसी में वो डर नहीं है। तो वो डर पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है।
1: साइबर सिटी में इस तरह की घटना होना, इससे पहले भी बाइकर्स की कई बार जान गई है, पिछले दो साल में तकरीबन 3-4 इस तरह के हादसे हो चुके हैं, और ये तो गनीमत है कि आप सही सलामत हमारे सामने खड़े हैं। क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, खासतौर पर गुड़गांव जैसे?
0: सी लॉ एंड ऑर्डर को लेके वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। पुलिस का ये काम होता है, ट्रैफिक पुलिस वालों का ये काम होता है बाइकर्स को लेके कि भाई वो बाइक चला रहे हैं, एग्जॉस्ट है, आपने क्या कर रखा है, आप बहुत जल्दी उनका चालान कर देते हैं। पर किसी बाइकर वाले को कोई मार जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, तो उन लोगों का क्या, उनकी क्या जान आपके लिए कीमती

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा
7: सबका।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: ब्राउज करा, उसमें मैंने खुद गाड़ी का नंबर और जो भी उनकी डिटेल्स थी, किसके किसके पास मतलब नाम पे ये गाड़ी है, वो मैंने खुद पोस्ट करा. एंड मैंने वीडियो रात में पोस्ट करी एंड गुरुग्राम पुलिस का आई थिंक सो दोपहर में आफ्टरनून में मुझे मैसेज आया. जब ये वीडियो हर एक न्यूज़ चैनल पे चल चुकी थी एंड व्हेन एवरीवन वाज आस्किंग कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया, तो पुलिस का ध्यान बहुत देर में गया उस इंसिडेंट पे जो संडे सुबह हो चुका था ऑलरेडी. एंड उसके बाद सारी डिटेल्स होने के बावजूद भी वो लड़का अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है. एंड वो इतना फ्रीली दूसरे चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मेरे से छोटी गलती हो गई. उसको इतना सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम मिल रहा है? मतलब पुलिस क्यों नहीं उसको पकड़ पा रही है, क्यों नहीं उसको अरेस्ट कर पा रही है? जो क्लियरली हिट एंड रन का केस है, वो क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है एंड वो आज फ्रीली सड़कों पे अपने घरों में मतलब आराम से बैठे हुए हैं, कोई डर नहीं है उनको. तो पुलिस क्या कर रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा. एंड ऑब्वियसली वो गुस्सा है, वो फ्रस्ट्रेशन है मुझ में कि आज भी इंडिया में लोग किसी को मार के चले जाते हैं एंड जो विक्टिम होता है दे आर सफरिंग, विक्टिम की फैमिली सफर कर रही होती है एंड वो आराम से घूम रहे हैं.
1: You know, see, I again want to commend you because you've come out, you've revealed your identity at a time when the accused and the other men have not been caught till now. You say you're frustrated. What was your reaction when you heard the lawyer of Kalyan Besla also speak to NDTV, where he says that his client is the victim? Do you think this is very convenient? Because given that they were the ones to hit you, Kalyan Besla was driving the car. He hit your bike and then he ran away from the spot. For a moment, just suspension of disbelief in this case where we say that Besla is the victim, just for a moment, I'm playing the devil's advocate, why didn't he stop to help you then? Isn't that the biggest question at this point?
0: See, lawyer ka kaam jitna hota hai ki aapko justice dilana aur jo aapke saath galat hua hai us pe stand lena. Mujhe samajh nahi aata ki unka lawyer publicly wo kaise wo statement de sakte hain ki unse choti si galti ho gayi. Ye koi choti si galti nahi hai. अगर उन्होंने मुझे हिट करा है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था. मैंने तो अपने राइडिंग गेयर्स पहन रखे थे इसलिए मैं बच गई. अगर वो दो सेकंड मेरे पीछे होते, एक दो सेकंड का फर्क होता, मेरी हड्डियां टूट सकती थी, मेरे को मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी.
1: आई थिंक यू हैव गॉट अ सेकंड लाइफ, सिया, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट.
0: दिस इज माय सेकंड लाइफ एंड मैं आपको बता नहीं सकती. मैं सबसे पहले घर आके मैं अपने भगवान जी के सामने मैंने हाथ जोड़े हैं कि लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बच गई हूँ. मैं हमेशा अपनी राइडिंग बैग में आई ऑलवेज कैरी रुद्राक्ष मेरी सेफ्टी के लिए. एंड मुझे समझ नहीं आता वो कैसे जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि मेरे मेरा क्लाइंट की कोई गलती नहीं है. पूरा देश देख रहा है वो वीडियो की उनकी गलती है. फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में आके किसी को हिट करके जाना ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती है. एंड आज भी वो एक जो क्रिमिनल है वो आज खुला घूम रहा है, मतलब उन्हें शर्म आनी चाहिए. कल को उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है ये इंसिडेंट सड़क पे.
1: See, I want to understand, do you feel unsafe as of now till the man is arrested and what are you expecting in terms of justice?
0: Ma'am, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है एंड इससे पहले भी कितने ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब मैं बाइक राइड करती हूँ. मतलब मुझे समझ नहीं आता लोगों के दिमाग, लोगों की क्या मेंटालिटी है ये.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: कि किसी फीमेल बाइकर को देख के वो उसको चेस करने लगते हैं. मतलब मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स कितनी ये चीज़ें फेस करी है एंड ये इंसिडेंट दिन दिहाड़े हुआ है, सुबह हुआ है और मुझे सुबह मतलब मेरे आसपास मेरे फेलो राइडर्स होने के बावजूद भी मुझे उस दिन इतना अनसेफ फील हुआ. मतलब कल को मैं अगर अपनी बाइक लेके भी निकलूं अकेले तो मैं 10 बार सोचूंगी कि मुझे निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए.
1: एंड दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, सिया, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू राइड एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर गिवन व्हाट यू हैव बीन थ्रू?
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जिस तरीके से हमारा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है हमारी दिल्ली में, गुड़गांव में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रीली ऐसे अपनी बाइक लेके निकल पाऊंगी क्योंकि मुझे इतना अनसेफ फील होता है कि कोई भी आपको चेस करेगा, कोई भी आपको मार के चला जाएगा एंड डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है. डिपार्टमेंट सिर्फ अभी भी बैठा हुआ है. संडे सुबह का इंसिडेंट था, अभी भी वो करण बेसला अभी भी वो घूम रहा है एंड उसका अरेस्ट नहीं हुआ है.

0: I just stay with me for a moment, Sia, because I want to just underscore what you've just said for the viewers who are tuning in. This is a woman who was the victim of road rage of a man and some men with him in a car who hit her and left her on the road. She has come out on social media. She has detailed what happened with her. Extremely traumatic situation, extremely traumatic incident. She has revealed her identity. She has revealed the number of the car. My question, Sia, is what else is expected of you if the law cannot stand up and nab the man 50 hours after you have provided every possible detail? His name is known to the system. His photograph is out there. We've spoken to the lawyer who claims he is the victim. Every possible detail is there. Your dash cam footage speaks to the story being true. Despite that, you have the man on the loose, Sia.
1: तभी तो आज कोई भी एक क्राइम करके इंसान भाग जाता है इंडिया में, क्योंकि डिपार्टमेंट का किसी का डर ही नहीं है किसी में. अगर आज हम कोई एग्जांपल सेट नहीं करेंगे किसी के लिए, तो कल को सेम इंसिडेंट होगा, सेम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि हम किसी को चेस करें, मार के चले जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट तो कुछ करता नहीं है, लॉ कुछ करेगा नहीं. आज हर एक व्यक्ति के पास सारी डिटेल है उस पर्सन की. मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी जिसे पुलिस के पास है, हर एक इंसान के पास डिटेल है, उसका गाड़ी नंबर, उसका नाम, उसका फोटोज, इवन उसका एड्रेस तक हर किसी के पास है. पर आप देखो, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा. तो ऑब्वियसली ये एक एग्जांपल हम ही, हमारा डिपार्टमेंट ही सेट कर रहा है कि भाई आप मार के जाओ, आप क्राइम करो और आप फ्रीली घूमो, आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा.
0: You know, viewer, right now what Sia is talking about is not only the trauma she's been through, but the broken system as well that she is trying to reach out to. Sia, I want to ask you, when was the last time the Gurugram police reached out to you over this incident?
1: See, last kal afternoon mein unka mere paas message aaya. Jab
0: message aaya, no one has come and met you till now?
1: No, message, basically unka message aaya ki we are taking this action. एंड आप मतलब हमें कॉन्टैक्ट करो. सी, जब वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं कल इवनिंग में अपने लॉयर के साथ जाने वाली थी, बट जो गुरुग्राम पुलिस का जो एक्शन था इस चीज़ पे, वो बहुत लेट हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो संडे वो इंसिडेंट हो चुका है एंड उनका अभी भी कोई एक्शन नहीं है. आई डोंट नो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं एंड वो इंसान फ्रीली घूम रहा है. तो ये लापरवाही है हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, लापरवाही है हमारे डिपार्टमेंट की. एंड मैं यही डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक गलत एग्जांपल सेट मत करो दूसरे लोगों के लिए. और भी लोग हैं जो सड़क पे चलते हैं और बाइकर्स हैं, एंड ये सिर्फ बाइकर्स को ही लेके नहीं है, कोई भी ले मैन के साथ ये चीज़ हो सकती है. मेरे पास आज प्रूफ था अपने इंसिडेंट का. अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है, उसको तो फिर जस्टिस मिल ही नहीं सकता इस देश में.
0: But I'm failing to understand then, will you be going to the police station today? There has to be some direct communication with the Gurugram police.
1: Already, मेरी फैमिली एंड मेरा लॉयर कल वो गए थे पुलिस स्टेशन, एंड आज पुलिस मेरे स्टेटमेंट के लिए आएगी.
0: ओके.
1: एंड मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हम कोई गलत एग्जांपल सेट ना करें, हम अपने लोगों के लिए एंड स्पेशली फॉर द फीमेल राइडर्स जिनको रोज इस हरासमेंट से गुजरना पड़ता है.
0: एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट, सिया. लेट्स टॉक अबाउट फीमेल बाइक राइडर्स. यू हैव बीन रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम देम. दिस इज अ स्मॉल कम्युनिटी बट अ स्ट्रॉन्ग वन. टेल अस अबाउट द हरासमेंट दैट वुमेन गो थ्रू ऑन द रोड्स व्हेन दे आर सीन राइडिंग बाइक्स.
1: सी, अगर आप एक फीमेल राइडर हो, एंड मुझे ऐसा लगता है हर एक फीमेल राइडर ने हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर फेस करी होगी, क्योंकि वो जब ये देखते हैं कि वो फीमेल राइडर है, वो उसके पास आएंगे, उसको शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, उसको हरास करने की कोशिश करेंगे. लोग तो बोलते हैं कि हम प्रेज करते हैं. सॉरी, वो प्रेज नहीं होता, वो अप्रिसिएशन नहीं होता. आप फीमेल राइडर से पूछो उनको कितना डर लगता है जब अगर कोई आसपास आके आपके साइड से गाड़ी लेके जाता है, या कोई बाइक लगा देगा आपके आगे, या मतलब लोग कितना फीमेल राइडर को सड़क पे चेस करने की कोशिश करते हैं. तो ऑब्वियसली फीमेल राइडर्स के लिए बहुत अनसेफ है ये रोड्स. एंड अगर हम अभी भी यही एग्जांपल सेट करेंगे कि हम उनको नहीं पकड़ रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे डिपार्टमेंट की गलती है कि इन फ्यूचर भी ये सेम इंसिडेंट गुड़गांव दिल्ली के रोड पे होते रहेंगे।
0: सिया, 2-3 मोर क्वेश्चंस एंड थैंक यू अगेन फॉर स्पीकिंग टू अस एंड डिटेलिंग एवरीथिंग आउट। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट योर मैसेज टू मिस्टर बेस्ला विल बी टुडे थ्रू आवर चैनल, गिवन दैट ही इज हाइडिंग, ही इज द मैन हु शुड बी कॉट अरेस्टेड बट ही इज हाइडिंग समवेयर एज अ कावर्ड। व्हाट इज योर मैसेज टू द मैन?
1: जी, मेरा मैसेज यही है कि आप कितने भी अपने इंटरव्यूज दे ले, आपका लॉयर कितनी भी आपकी गलती छुपाने की कोशिश करे, आप कितना भी विक्टिम और सिंपथी कैरेक्टर प्ले कर लो, पर आज पूरे देश ने देखा है कि आपने किस तरीके से अपनी गाड़ी से मुझे ठूका है और आप मुझे मार के वहाँ से भागे हो। ये नहीं कि आप वहाँ से निकल गए हो, आप एक किसी गुंडे की तरह मेरे को ठोक के भागे हो। और आप ये मत सोचना कि आप अपना ये सिंपथी कार्ड प्ले करके आप बच जाओगे। ऑब्वियसली मैं हूँ, मेरे पीछे पूरी बाइकिंग कम्युनिटी है, मेरे पीछे हर एक इंसान का सपोर्ट है और हम आपको सामने लाके खड़ा करेंगे और मैं वो एग्जांपल सेट करूंगी कि कोई भी किसी फीमेल राइडर को देखेगा, चेस करने की कोशिश करेगा तो वो 10 बार सोचेगा।
0: सिया, आई एम सो इंस्पायर्ड सिया बाय लिसनिंग टू यू टुडे, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग इज you've survived a close shave, of course, but you are not giving up. You don't feel defeated despite the system for now letting you down. There are CCTV cameras along all the roads there, hopefully in Gurugram. It shouldn't take so long to track the man. And what you've said right at the end really holds true. It's an inspiration to every woman out there that you will not give up. You will set an example for the system to understand, you know, the lag that we're seeing, for women to understand that they are not alone. Before I let you go, my last question to you is this. Do you feel alone in this fight as of now?
1: No, I don't feel alone. Mere paas har ek person ka support hai and I'm glad ki wo log mujhe support kar rahe hain, apni best wishes bhej rahe hain. All the biking, the members of biking community and everyone, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड उन्हीं से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए।
0: यू नो सिया, बिफोर यू गो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट NDTV, and I don't want to say this for brownie points, but I'm saying this for a reason. NDTV was the first channel to take up the story yesterday early morning, and we will see it through with you.
1: I know NDTV was the first one जिन्होंने मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज करा था and they want to connect with me and
0: yes. No, along with that, we were the first one to take the story forward. We made sure it was on the website, it was on television, because we want to see justice in this case. I'm from Gurugram. I know what it feels like to be on those roads out there, Sia, through the evenings especially. So more power to you and thank you so much for speaking with NDTV, Sia. We are very inspired by you. Thank you.
1: Thank you.
0: Parmeshwar, that was Sia that we were speaking to. It's back to you in the studio.
2: Vedika, thank you so much. The Gurugram hit and run victim Sia has broken her silence over the golf course road incident in her interaction with NDTV, strongly rebutting the accused driver's claims and questioning his sympathy-seeking act following this crash. We've heard directly from Sia. Her dash cam recorded the entire frightening incident. She's questioning why the accused has not been nabbed over 50 hours since this incident took place, why he's openly giving interviews, but the teams deployed by the Gurugram police, 5 teams, by the way, have not been able to locate the accused and the other 2 men who were present in the car at the time of this incident on the 13th of September. Ishika continues to be with us. Ishika, where does this investigation stand at the moment? Where is Kalyan Besla 50 hours on? The 5 teams that have been deployed by the Gurugram police, have they been able to find anything at all?
3: Well, Parmeshwar, that is the question, you know, that is being raised even by Sia herself, that even after, you know, she has given the vehicle registration number and the other details along with the eyewitnesses are already there, then what is taking so much of time to arrest Kalyan Besla? So that is, in fact, one of the questions that she has, in fact, asked in her press briefing. But certainly what the Gurugram police has so far said, that their 5 teams that have been made by them, they are conducting raids at all the possible hideouts of Kalyan Besla. Apart from that, Their teams are also, in fact, now reaching to Sia's residence, because today the statement

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

ये सिर्फ बाइकर्स को ही लेके नहीं है, कोई भी ले मैन के साथ ये चीज हो सकती है। मेरे पास आज प्रूफ था अपने इंसिडेंट का, अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है उसको तो फिर जस्टिस मिल ही नहीं।

0: From them, this is a small community but a strong one. Tell us about the harassment that women go through on the roads when they're seen riding bikes.
1: See, agar aap ek female rider ho, and mujhe aisa lagta hai har ek female rider ne hamesha apni life mein ye cheez zarur face kari hogi, kyunki wo jab ye dekhte hain ki wo female rider hai, wo uske paas aayenge, usko show off karne ki koshish karenge, usko harass karne ki koshish karenge. लोग तो बोलते हैं कि हम प्रेज करते हैं, सॉरी वो प्रेज नहीं होता, वो अप्रिसिएशन नहीं होता. आप फीमेल राइडर से पूछो उनको कितना डर लगता है जब अगर कोई आसपास आके आपके साइड से गाड़ी लेके जाता है या कोई बाइक लगा देगा आपके आगे, या मतलब लोग कितना फीमेल राइडर को सड़क पे चेस करने की कोशिश करते हैं. तो ऑब्वियसली फीमेल राइडर्स के लिए बहुत अनसेफ है ये रोड्स. एंड अगर हम अभी भी यही एग्जांपल सेट करेंगे कि हम उनको नहीं पकड़ रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे डिपार्टमेंट की गलती है कि इन फ्यूचर भी ये सेम इंसिडेंट गुड़गांव दिल्ली के रोड पे होते रहेंगे.
0: सिया, 2-3 मोर क्वेश्चंस एंड थैंक यू अगेन फॉर स्पीकिंग टू अस एंड डिटेलिंग एवरीथिंग आउट. आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू व्हाट योर मैसेज टू मिस्टर बेस्ला विल बी टुडे थ्रू आवर चैनल, गिवन दैट ही इज हाइडिंग, ही इज द मैन हु शुड बी कॉट अरेस्टेड बट ही इज हाइडिंग समवेयर एज अ कावर्ड. व्हाट इज योर मैसेज टू द मैन?
1: जी, मेरा मैसेज यही है कि आप कितने भी अपने इंटरव्यूज दे ले, आपका लॉयर कितनी भी आपकी गलती छुपाने की कोशिश करे, आप कितना भी विक्टिम और सिंपथी कैरेक्टर प्ले कर लो, पर आज पूरे देश ने देखा है कि आपने किस तरीके से अपनी गाड़ी से मुझे ठूका है और आप मुझे मार के वहाँ से भागे हो. ये नहीं कि आप वहाँ से निकल गए हो, आप एक किसी गुंडे की तरह मेरे को ठोक के भागे हो. और आप ये मत सोचना कि आप अपना ये सिंपथी कार्ड प्ले करके आप बच जाओगे. ऑब्वियसली मैं हूँ, मेरे पीछे पूरी बाइकिंग कम्युनिटी है, मेरे पीछे हर एक इंसान का सपोर्ट है, और हम आपको सामने लाके खड़ा करेंगे. और मैं वो एग्जांपल सेट करूँगी कि कोई भी किसी फीमेल राइडर को देखेगा, चेस करने की कोशिश करेगा, तो वो 10 बार सोचेगा.
0: सिया, आई एम सो इंस्पायर्ड सिया बाय लिसनिंग टू यू टुडे, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग इज you've survived a close shave, of course, but you are not giving up. You don't feel defeated despite the system for now letting you down. There are CCTV cameras along all the roads there, hopefully in Gurugram. It shouldn't take so long to track the man. And what you've said right at the end really holds true. It's an inspiration to every woman out there that you will not give up. You will set an example for the system to understand, you know, the lag that we're seeing, for women to understand that they are not alone. Before I let you go, my last question to you is this. Do you feel alone in this fight as of now?
1: No, I don't feel alone. Mere paas har ek person ka support hai, and I'm glad ki wo log mujhe support kar rahe hain, apni best wishes bhej rahe hain. All the biking, the members of biking community and everyone, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड उन्हीं से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे इस चीज के लिए लड़ना चाहिए.
0: यू नो सिया, बिफोर यू गो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट NDTV, and I don't want to say this for brownie points, but I'm saying this for a reason. NDTV was the first channel to take up the story yesterday early morning, and we will see it through with you.
1: I know NDTV was the first one जिन्होंने मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज करा था. And they want to connect with me.
0: No, along with that, we were the first one to take the story forward. We made sure it was on the website, it was on television, because we want to see justice in this case. I'm from Gurugram. I know what it feels like to be on those roads out there, Sia, through the evenings especially. So more power to you, and thank you so much for speaking with NDTV, Sia. We are very inspired by you. Thank you.
1: Thank you.
2: See how they're describing the whole ordeal to NDTV. And breaking news coming in the case, it's the Gurugram police that has reached the residence of Sia in order to record her statement. And this comes about a day after, in fact, that video that went completely viral of a car hitting her bike and leaving her there injured. Now, the Gurugram police is saying that they are committed to taking strict action against the accused, and flouting the law will not be tolerated at any cost. So far, what they've done against the man is Section 109. This is 109 that has been registered against him, and other charges.

0: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured.
1: Please come in. Please. And as we saw in my video, that the car was chasing me. And I usually bike ride karti hu Sunday ko. And I golf course road se ja rahi thi. मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा कि ये गाड़ी उस रोड पे चल रही है, मेरे आगे पीछे चल रही है. पहली चीज़ जो उसने करी कि मैं बाइक चला रही हूँ एंड वो बहुत फास्ट मेरे साइड से निकलता है. देन आई वाज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये गाड़ी इतने पास से क्यों निकली है मेरे. फिर मैंने इग्नोर करा कि चलो छोड़ो. देन उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है. देन उसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट होता है, जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो और ऐसे रुकने के लिए, उस तब मैं डर जाती हूँ. सी उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है. उसके साइड में एक और लड़का था, वो भी कुछ एक्शन कर रहा था और आई थिंक वो पीछे भी दो लड़के थे, पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं. और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे. एंड सी मैं टू व्हीलर पे हूँ एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है, उन लोगों का नहीं है. तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ, आप पास मत आओ, ठीक है, कि आपकी गाड़ी भी तेज़ चल रही है. और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे आ रही है, तो थोड़ा सा मैं तेज़ चली कि मुझे डर लग रहा था कि भाई वो कुछ कर ना दे. एंड जो एक फेलो राइडर था जो पीछे चल रहा था, ही ट्राइड कि वो मेरे पास आए, कवर करे. और उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि वो मेरे पास चल रहा है, उसकी जस्ट साइड में गाड़ी चल रही है. एंड इसी हफड़ा तफड़ी में कि वो लड़का उसको आगे नहीं आने दे रहा, एंड जब एक गाड़ी बीच में आई, मेरी बाइक स्लो हुई एंड वो फर्स्ट लेन से, जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है. एंड इट वाज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है एंड मैं स्लो हुई हूँ, एंड वो टक्कर मार के जाता है, मैं गिरती हूँ, मुझे कोई होश नहीं रहता कि क्या हुआ है मेरे साथ. एंड जैसे मेरे एक फेलो राइडर ने उसको रोकने की कोशिश करी कि भाई रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपकी गलती है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है. एंड वो रुकता नहीं है, वो रेड लाइट भी तोड़ के उसको लेफ्ट का रास्ता मिलता है एंड वो भाग जाता है.
2: राइडर थे आप, कितने बजे कहां से निकली थी और कहां तक आपकी,
3: और गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, क्या केवल मर्द थे या औरतें भी थी उस गाड़ी में?
1: उसमें सारे लड़के ही थे, कोई औरत नहीं थी जितना मैंने देखा. और मैंने जो राइड थी कि मैं अपने घर से निकल के गुड़गांव में एक बाइकर वन कैफ़े है जो मेजरली बाइकर्स के लिए काफ़ी फेमस है, मैं वहीं जा रही थी. मेरा कोई एज सच ग्रुप नहीं है जिसके साथ मैं चलती हूँ, मैं कभी अपने ब्रदर के साथ भी राइड करती हूँ. सी मेरे पास जो बाइक है वो और भी लोगों के पास है, तो बाइकर कम्युनिटी में सब एक दूसरे को जानते हैं किसके पास क्या बाइक.

0: वो एक जो क्रिमिनल है वो आज खुला घूम रहा है, मतलब उन्हें शर्म आनी चाहिए। कल को उनकी बेटी के साथ भी हो सकता है ये इंसिडेंट सड़क पे।
1: See, I want to understand, do you feel unsafe as of now till the man is arrested and what are you expecting in terms of justice?
0: Ma'am, ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है एंड इससे पहले भी कितने ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब मैं बाइक राइड करती हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आता लोगों के दिमाग, लोगों की क्या मेंटालिटी है ये।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: कि किसी फीमेल बाइकर को देख के वो उसको चेस करने लगते हैं। मतलब मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स कितनी ये चीजें फेस करी है एंड ये इंसिडेंट दिन दिहाड़े हुआ है, सुबह हुआ है और मुझे सुबह, मतलब मेरे आसपास मेरे फेलो राइडर्स होने के बावजूद भी मुझे उस दिन इतना अनसेफ फील हुआ। मतलब कल को मैं अगर अपनी बाइक लेके भी निकलूं अकेले तो मैं 10 बार सोचूंगी कि मुझे निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए।
1: एंड दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सिया, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू राइड एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर गिवन व्हाट यू हैव बीन थ्रू?
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से हमारा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है हमारी दिल्ली में, गुड़गांव में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रीली ऐसे अपनी बाइक लेके निकल पाऊंगी क्योंकि मुझे इतना अनसेफ फील होता है कि कोई भी आपको चेस करेगा, कोई भी आपको मार के चला जाएगा एंड डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है। डिपार्टमेंट सिर्फ अभी भी बैठा हुआ है। संडे सुबह का इंसिडेंट था, अभी भी वो करण बैसला अभी भी वो घूम रहा है एंड उसका अरेस्ट नहीं हुआ है।
1: I just stay with me for a moment, Sia, because I want to just underscore what you've just said for the viewers who are tuning in. This is a woman who was the victim of road rage of a man and some men with him in a car who hit her and left her on the road. She has come out on social media. She has detailed what happened with her. Extremely traumatic situation, extremely traumatic incident. She has revealed her identity. She has revealed the number of the car. My question, Sia, is what else is expected of you? If the law cannot stand up and nab the man 50 hours after you have provided every possible detail, his name is known to the system, his photograph is out there, we've spoken to the lawyer who claims he is the victim, every possible detail is there. Your dashcam footage speaks to the story being true. Despite that, you have the man on the loose, Sia.
0: तभी तो आज कोई भी एक क्राइम करके इंसान भाग जाता है इंडिया में, क्योंकि डिपार्टमेंट का किसी का डर ही नहीं है किसी में। अगर आज हम कोई एग्जांपल सेट नहीं करेंगे किसी के लिए तो कल को सेम इंसिडेंट होगा, सेम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि हम किसी को चेस करें, मार के चले जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट तो कुछ करता नहीं है, लॉ कुछ करेगा नहीं। आज हर एक व्यक्ति के पास सारी डिटेल है उस पर्सन की। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी सिर्फ पुलिस के पास है, हर एक इंसान के पास डिटेल है, उसका गाड़ी नंबर, उसका नाम, उसका फोटोज, इवन उसका एड्रेस तक हर किसी के पास है। पर आप देखो कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ऑब्वियसली ये एक एग्जांपल हमारा डिपार्टमेंट ही सेट कर रहा है कि भाई आप मार के जाओ, आप क्राइम करो और आप फ्रीली घूमो, आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जब वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं कल इवनिंग में अपने लॉयर के साथ जाने वाली थी, बट जो गुरुग्राम पुलिस का जो एक्शन था इस चीज पे वो बहुत लेट हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो संडे वो इंसिडेंट हो चुका है एंड मैं यही डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक गलत एग्जाम्पल सेट मत करो दूसरे लोगों के लिए। और भी लोग हैं जो सड़क पे चलते हैं और बाइकर्स हैं, ये सिर्फ बाइकर्स को ही लेके नहीं है, कोई भी ले मैन के साथ ये चीज हो सकती है। मेरे पास आज प्रूफ था अपने इंसिडेंट का। अगर किसी के पास प्रूफ नहीं है उसको तो फिर जस्टिस मिल ही नहीं सकता इस देश में। एंड मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हम कोई गलत एग्जाम्पल सेट ना करें, हम अपने लोगों के लिए एंड स्पेशली फॉर द फीमेल राइडर्स जिनको रोज इस हरासमेंट से गुजरना पड़ता है।
1: एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट, सिया। लेट्स टॉक अबाउट फीमेल बाइक राइडर्स। यू हैव बीन रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम देम। दिस इज अ स्मॉल कम्युनिटी बट अ स्ट्रॉन्ग वन। टेल अस अबाउट द हरासमेंट दैट वुमेन गो थ्रू ऑन द रोड्स व्हेन दे आर सीन राइडिंग बाइक्स।
0: सी, अगर आप एक फीमेल राइडर हो एंड मुझे ऐसा लगता है हर एक फीमेल राइडर ने हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर फेस करी होगी, क्योंकि वो जब ये देखते हैं कि वो फीमेल राइडर है, वो उसके पास आएंगे, उसको शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, उसको हरास करने की कोशिश करेंगे, लोग तो बोलते हैं कि हम प्रेज करते हैं, सॉरी वो प्रेज नहीं होता, वो अप्रिसिएशन नहीं होता. आप फीमेल राइडर से पूछो उनको कितना डर लगता है जब अगर कोई आसपास आके आपके साइड से गाड़ी लेके जाता है या कोई बाइक लगा देगा आपके आगे, या मतलब लोग

0: He is the man who should be caught, arrested, but he's hiding somewhere as a coward. What is your message to the man?
1: See, मेरा मैसेज यही है कि आप कितने भी अपने इंटरव्यूज दे ले, आपका लॉयर कितनी भी आपकी गलती छुपाने की कोशिश करे, आप कितना भी विक्टिम और सिंपथी कैरेक्टर प्ले कर लो, पर आज पूरे देश ने देखा है कि आपने किस तरीके से अपनी गाड़ी से मुझे ठोका है और आप मुझे मार के वहाँ से भागे हो। ये नहीं कि आप वहाँ से निकल गए हो, आप एक किसी गुंडे की तरह मेरे को ठोक के भागे हो। और आप ये मत सोचना कि आप अपना ये सिंपथी कार्ड प्ले करके आप बच जाओगे। ऑब्वियसली मैं हूँ, मेरे पीछे पूरी बाइकिंग कम्युनिटी है, मेरे पीछे हर एक इंसान का सपोर्ट है और हम आपको सामने लाके खड़ा करेंगे और मैं वो एग्जांपल सेट करूंगी कि कोई भी किसी फीमेल राइडर को देखेगा, चेस करने की कोशिश करेगा तो वो 10 बार सोचेगा।
0: सिया, आई एम सो इंस्पायर्ड सिया बाय लिसनिंग टू यू टुडे, बिकॉज़ व्हाट यू आर सेइंग इज यू've सर्वाइव्ड अ क्लोज शेव ऑफ कोर्स, बट यू आर नॉट गिविंग अप, यू डोंट फील डिफीटेड डिस्पाइट द सिस्टम फॉर नाउ लेटिंग यू डाउन। देयर आर सीसीटीवी कैमरास अलोंग ऑल द रोड्स देयर होपफुली इन गुरुग्राम, इट शुडंट टेक सो लॉन्ग टू ट्रैक द मैन, एंड व्हाट यू सेड राइट एट द एंड रियली होल्ड्स ट्रू। It's an inspiration to every woman out there that you will not give up, you will set an example for the system to understand, you know, the lag that we're seeing, for women to understand that they are not alone. Before I let you go, my last question to you is this: do you feel alone in this fight as of now?
1: No, I don't feel alone. Mere paas har ek person ka support hai and I'm glad ki wo log mujhe support kar rahe hain, apni best wishes bhej rahe hain. All the biking, the members of biking community and everyone, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड उन्हीं से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे इस चीज के लिए लड़ना चाहिए।
0: यू नो सिया, बिफोर यू गो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट NDTV, and I don't want to say this for brownie points, but I'm saying this for a reason. NDTV was the first channel to take up the story yesterday early morning, and we will see it through with you.
1: I know NDTV was the first one जिन्होंने मुझे मेरे Insta पे message करा था and they want to connect with me. And
0: yes. No, along with that, we were the first one to take the story forward. We made sure it was on the website, it was on television, because we want to see justice in this case. I'm from Gurugram. I know what it feels like to be on those roads out there, Sia, through the evenings especially. So more power to you, and thank you so much for speaking with NDTV, Sia. We are very inspired by you. Thank you.
1: Thank you.
0: NDTV also spoke to Kalyan Besla's lawyer, who in fact blamed Sia for the hit and run, claiming that Kalyan was the victim. I have the advocate, Mr. Naveen Besla, on the phone line with me. He's representing Kalyan Besla. Naveen ji, aapse puchna hai, your client has been detained. Is this a detention or an arrest? Can you confirm to us?
2: पूरा किसी अपने नॉन से पता लगाया कि उसको दौसा से अरेस्ट कर लिया है, बाकी अभी क्लियर कुछ नहीं है। बाकी मैं गुड़गावा कोर्ट जाके, गुड़गावा थाना जाके अभी क्लियर करता हूँ कि वो अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ, जो भी है वो बताता हूँ आपको।
0: नवीन जी, there's an attempt to murder charge also against your client. What do you have to say about that?
2: हमारे क्लाइंट की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली ये राइडर्स बहुत तेज स्पीड चला रहे थे बाइकों को, उनकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है, हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है।
0: आपके क्लाइंट ने रोका क्यों नहीं गाड़ी फिर उनको हेल्प करने के लिए?
2: मैम, 25 से 30 लड़के थे, आपस में राइडर थे,
0: कोई तो दिख नहीं रहा था वीडियो में। नवीन जी,
2: मैम वीडियो तो लड़के इनके पास है ना, राइडरों के पास है, ये प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं दे रहे? सारी
0: प्रॉपर वीडियो, चार चार वीडियोस है सर।
2: मैम, ये रहा एडिटिंग वीडियो है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये उन्होंने अपने हिसाब से अपने तरह तैयार करके रख दी।
0: नवीन जी, यू नो द लॉ बेटर देन आई डू, होपफुली देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग अ गुड समैरिटन। इफ योर क्लाइंट इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, व्हिच इज सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट गिवन द एविडेंस माउंटिंग अगेंस्ट हिम, मेरा प्रश्न ये है आपके लिए, उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने सिया को गाड़ी में क्यों नहीं लिया और हॉस्पिटल क्यों नहीं गए उनके साथ?
2: एक्चुअली ये मैम, इसको मॉब लिंचिंग का डर था, इसको ये डर था कि ये 28 जने मुझको मारना दे, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये
0: तो आप सिया की कहानी हमें बोल रही है। दिस साउंड्स मोर लाइक योर सिया'स काउंसिल देन द काउंसिल ऑफ

0: Kalyan Besla, sir. That is exactly what she went through, Naveen ji.
1: मैम स्टोरी एक्चुअली क्या होता है मैम, संख्या में ये ज्यादा, राइडर ये ज्यादा, स्पीड इनकी ज्यादा, 160 तक 180 तक स्पीड चला रहे हैं इनकी, मैंने और भी वीडियो देखे।
0: एक औरत, चार लोग हैं गाड़ी में, फोर व्हीलर में, और आप बोल रहे हैं कि आपके क्लाइंट विक्टिम है।
1: मेरे क्लाइंट विक्टिम है, रियल में विक्टिम है मेरे।
0: मुझे समझाइए कैसे है, इज द वीडियो फुटेज लाइंग? नवीन जी, इज द वीडियो फुटेज लाइंग?
1: कौन परमिशन देता है इन राइडरों को, कौन परमिशन देता है कि आप एक रोड को घेर के चलोगे, आप एक रोड को स्टंट के लिए यूज करोगे, एक रोड को स्पीड के लिए यूज करोगे, आप किस किस की जान के खतरे को अपने मोल ले रहे हो? बनवात की
0: सो मिस्टर नवीन, व्हाट यू आर सेइंग इज सीआई इज लाइंग, द पुलिस इज लाइंग, द सुओ मोटो केस फाइल बाय द पुलिस इज अ शैम, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस?
1: पुलिस का नहीं, मैं पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कह रहा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इसमें फेयर इंक्वायरी करेगी और पुलिस इसमें जो भी करेगी अब उसको सामने उसका फेस करेंगे, कोई इशू नहीं है हमें।
0: मिस्टर नवीन, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट यू से दिस, बट बिफोर यू गो आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू कुड एक्सप्लेन द वीडियो फुटेज वी आर सीइंग ऑन आवर स्क्रीन्स, द डैश कैम फुटेज, यू एक्सप्लेन इट टू अस सर।
1: मैंने वो वीडियो चार बार देखी जो सिया की तरफ से है, मैंने उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है ये लड़की बहुत हाई स्पीड में, वो लड़का पीछे से आया, उसको एक यू टर्न दिखा, यू टर्न से वो बचने के लिए उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसकी वजह से ये नेग्लिजेंस पार्ट पे ये एक्सीडेंट हुआ है।
0: तो फिर वो कॉन्वर्सेशन क्या था, जो वार्तालाप हुआ था व्हाइल दे वर इन द कार, वो जब गाड़ी चला रहे थे उन्होंने सिया से क्या बोला था?
1: वो इसे प्रोवोक कर रहे थे, वो उसे बार बार हरास कर रहे थे, बार बार आगे पीछे निकालने के लिए इसको एक कहते मैनिपुलेट कर रहे थे कि ये हमसे कुछ उल्टा बोले। इसने कुछ नहीं बोला, इसने बल्कि ये बोला कि आप अच्छी बाइक चलाते हो, आप सेफ हो, आप आराम से चलाओ।
0: और फिर उन्होंने ठोक दिया सिया को उसके बाद और भाग गए वहाँ से।
1: इन्होंने नहीं ठोका मैम, इन्होंने
0: सर किसने ठोका? वीडियो फुटेज तो है वहाँ पे
1: मैम, देख ली मैम, आप प्रॉपर देखो ना, वो
0: मैं प्रॉपर ही देख रही हूँ नवीन जी,
1: मैं भी देख रहा हूँ मैम, मैंने चार बार देखी मैम वीडियो, वो प्रॉपर उसने अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया फुटपाथ से, एक गाड़ी और थी।
0: अच्छा, तो अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया नवीन जी, तो उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं देख के कि सिया गिर गई है?
1: इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए इसने नहीं रोका, उसने बताया भाई ये 28-30 राइडर थे।
0: तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज तो लगना चाहिए है ना?
1: नहीं, क्यों लगेगा मैम, क्यों अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगेगा?
0: क्योंकि आपने गाड़ी मारी है वहाँ से आप भाग गए हैं।
1: मैं तो ये कहूँगा कि कार्रवाई इन राइडरों पे होनी चाहिए सारी, इनकी गलती।
0: एग्जैक्टली इन ड्राइवरों पे होनी चाहिए, आपके क्लाइंट पे होनी चाहिए।
1: बाइक राइडरों पे ये कोर्ट की और क्या नाम है कोई भी पुलिस की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, ये अपनी मनमानी से स्टंट करते हैं, ये अपने मनमानी से स्पीड चलाते हैं।
0: और फिर आपके क्लाइंट फिर व्हाई इज ही हाइडिंग, वो छुप क्यों गए उसके बाद?
1: वो एक्चुअली डर की वजह से छुपा पड़ा है कि ये एक छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया, बल्कि वो निर्दोष है।
0: Mr. Naveen, it's laughable really that you say this, but thank you for speaking to NDTV. Out here you have the man who has hit Sia and run away from the spot playing the victim card. And the survivor of this hit and run is the one who has come forward, identified herself, made it clear that she is the one who was the survivor of this hit and run and even furnished evidence to the police. The story is quite clear. Thank you for joining us on NDTV. I want to bring in Mr. Arvind Kumar Jain, former DG UP and also a former IPS officer. Mr. Jain, you've just heard that entire interview. The fear here has been for Sia that the police did not act in time despite all the evidence being furnished by her personally 2 days back, more than 2 days back.
2: It's a clear case of a hit and run in my opinion, although I have not seen the video. But once police makes an inquiry, they will come to know what are the facts. And as far as I could make out, the fault is of the boys who were traveling in a car at a high speed. And they should have got down. They should have taken her to a hospital, even if they were at fault. And they should not have run away. Very, very deterrent case should be made out against such people. Because if Gurgaon police wants to check such kind of incidents on roads, highways in Gurgaon, in the Gurgaon limits, then drastic action should be taken against such boys who are chasing and who are unnecessarily harassing the lady riders.
0: Mr. Jain, before I let you go, very quickly, doesn't this lead to a trust deficit which is widening? I mean, kudos to the woman, Sia. Not only has she furnished evidence, Mr. Jain, she's come out, she's revealed her identity, she has spoken out against the accused and the men in the car. She has also questioned the system here, sir, saying, why the delay? I gave you all the evidence on Sunday. Suo Motu was only done after that in terms of the Gurugram police. Her statement is being recorded today, sir, 52 hours later.
2: No, it's wrong. Top priority should be accorded, should be given to such incidents, and immediate attention should be paid. Some lady ACP or some additional DCP should have been assigned. She should have taken the statements. She should have recorded the entire evidence. And I'm happy that person has been detained. I was just listening to the conversation. He has been detained. Very, very severe charges should be brought against that person and against the persons who were sitting in the car with him. And I think what you said is absolutely correct, that attempt to murder case is made out. And I'm happy that NDTV has highlighted the incident and road safety issue on the roads of Gurugram and Haryana police, Gurugram police should pull up the socks and should work on this.
0: But Mr. Jain, this is not only a Gurugram problem, is it? It's a problem pan-India. Is the law not strong enough, sir? Is it just because it's a bailable offence? We're seeing hit and runs happen across Maharashtra, across the National Capital Region and beyond. What's going to rein these people in?
2: It's the psyche of such men which is responsible for this kind of incident.
0: Not just men, women there are as several, well.
2: There are several people who are very respectful to lady riders, but there are some with this kind of psyche. And the only solution is that charges should be brought against such people in a court of law. If possible, the driving license should be impounded. And very heavy penalties should be imposed on such a man.
0: Mr. Jain, thank you for joining us on Breaking Ground on our Top Focus. This, of course, will remain our rolling coverage through the day today. Justice for Sia, a woman who stood up, who has helped the law nab her culprit at this moment. Hats off to her courage is all I can say at the moment. We're sipping a short break. On the other side, we return with a story that concerns us all. Amid the artificial intelligence slowdown call, Google DeepMind AGI researcher has resigned and warns that AI could kill us all, says humanity may be running out of time. More on that in moments from now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
1: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
2: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
3: Hey, Kia, navigate me to the National Archery Club. What time is the medal ceremony?
4: The medal ceremony begins at 6:30 p.m.
5: Live Gen AI in the Kia Sorento. Thoughtful intelligence for the moments that matter.
6: Kia. Movement that inspires.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है?
9: अरे मेरे राजा।
10: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
11: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
12: Launch control, 0 to 100.
13: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
14: This car makes no sense, yet it makes every sense.
15: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
13: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
11: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
16: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured.
17: जैसे कल हम मेरी वीडियो में जो मैंने डाला उसमें देखा कि वो एक गाड़ी वाला जो मुझे चेस कर रहा था और मैं यूजुअली बाइक राइड करती हूँ संडे को एंड मैं गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थी. मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा कि ये गाड़ी उस रोड पे चल रही है, मेरे आगे पीछे चल रही है. पहली चीज़ जो उसने करी कि मैं बाइक चला रही हूँ एंड वो बहुत फास्ट मेरे साइड से निकलता है. देन आई वाज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये गाड़ी इतने पास से क्यों निकली है मेरे. फिर मैंने इग्नोर करा कि चलो छोड़ो. देन उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है. देन उसके बाद जो सेकेंड इंसिडेंट होता है जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है. फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो और ऐसे रुकने के लिए. उस तब मैं डर जाती हूँ. सी उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है. उसके साइड में एक और लड़का था वो भी कुछ एक्शन कर रहा था और आई थिंक वो पीछे भी दो लड़के थे पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं. और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे. एंड सी मैं टू व्हीलर पे हूँ एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है, उन लोगों का नहीं है. तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ, आप पास मत आओ, ठीक है, कि आपकी गाड़ी भी तेज़ चल रही है. और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे आ रही है तो थोड़ा सा मैं तेज़ चली कि मुझे डर लग रहा था कि भाई वो कुछ कर ना दे. एंड जो एक फेलो राइडर था जो पीछे चल रहा था ही ट्राइड कि वो मेरे पास आए कवर करे और उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि वो मेरे पास चल रहा है, उसकी जस्ट साइड में गाड़ी चल रही है. एंड इसी हफड़ा तफड़ी में कि वो लड़का उसको आगे नहीं आने दे रहा. एंड जब एक गाड़ी बीच में आई, मेरी बाइक स्लो हुई एंड वो फर्स्ट लेन से जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है. एंड इट वाज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है एंड मैं स्लो हुई हूँ एंड वो टक्कर मार के जाता है, मैं गिरती हूँ. मुझे
9: watching Breaking Ground on Vedika Sood. The quick check on the headlines at this hour on a day where there's been an NDTV impact with the man who hit Sia's bike being arrested a short while back. Accused driver Kalyan Besla arrested from Rajasthan more than 50 hours after the hit and run incident. Police add attempt to murder charge against him. Biker Sia speaks exclusively to NDTV, recounts the hit and run horror, calls it an attempt to murder, says she will fight to the end, thanks NDTV for standing by her.
18: NDTV was the first one jinhone mujhe mere insta pe message kara tha and they want to connect with me.
9: Two DMK leaders booked by Tamil Nadu police. Sekhar Babu booked for remarks against Chief Minister Vijay. MP A. Raja booked for anti-CTR remarks. DMK lashes out at the Vijay government. Actor Vijay Sethupathi's remarks in Big Boss stokes row. Sethupathi spoke about a leader, saying leadership doesn't mean attacking rivals. Vijay fans target Sethupathi. DMK slams Vijay supporters. Meta agrees to report child abuse cases. Meta to alert law enforcement agencies. Center makes child safety non-negotiable. Government tightens online child safety rules. Amid artificial intelligence slowdown call, Google DeepMind AGI researcher resigns, warns the AI could kill us all, says humanity may be running out of time.

0: a major police hunt across multiple locations. The Gurugram police has also added an attempted murder charge to the case as fresh evidence and Sia's allegations have intensified this investigation. This offence carries a provision for imprisonment of up to 10 years. Police had formed 5 teams to track him down and were also scanning CCTV footage on Golf Course Road in Gurugram and beyond. Meanwhile, Sia has spoken exclusively to NDTV. In her first detailed interaction and conversation, she spoke about the incident. She alleged that Besla was drunk and he deliberately hit her and fled without stopping. She says she was terrified and shaking after the incident, but is grateful that the entire episode was captured on her dash cam, and that's what really has helped in tightening the noose around Kalyan Besla at this point, who I believe is being brought by the Gurugram police back to the National Capital Region from Rajasthan. He was arrested from Dausa, is what we've got to know. But a word also commending Sia at this point. While speaking to her in that exclusive interaction, Sia did say that she will not give up on the fight and will set an example. She's standing up for all the women bikers in her community. She also spoke about the lag when it comes to arresting or taking action against Besla. She said that on Sunday itself, she had shared the number plate of the car. She had provided details of the 4 men inside that car. She had also spoken out after to provide those details to the police as well as share them on social media. But it's taken 52 hours, she said, and beyond. And this was, of course, this interview was done before Besla was arrested, where she did talk about the delay and how disappointed she is with the system. She spoke about how there needs to be justice in such cases and there needs to be quick police action. Listen in. I want to start by thanking you for standing up for justice in this case. I want to understand from you how you are at this moment. You've been through an extremely traumatic phase. Sia.
1: Obviously, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ एंड आई वॉज लिटली ट्रॉमाटाइज कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ एंड पूरे दिन में आई डिडंट पोस्ट एनीथिंग अबाउट दैट इंसिडेंट बिकॉज आई वॉज इन अ शॉक कि एक गाड़ी मुझे हिट करके एंड वो भाग जाती है एंड जो पूरा इंसिडेंट मैंने अपनी वीडियो में शो करा है कि कैसे वो गाड़ी जिसमें ये सारे लड़के थे वो चेस कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू हरास मी एंड वो इतना फ्रीली दूसरे चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मेरे से छोटी गलती हो गई उसको इतना सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम मिल रहा है.
0: You know, see, I again want to commend you because you've come out, you've revealed your identity at a time when the accused and the other men have not been caught till now. You say you're frustrated. What was your reaction when you heard the lawyer of Kalyan Besla also speak to NDTV, where he says that his client is the victim? Do you think this is very convenient? Because given that they were the ones to hit you, Kalyan Besla was driving the car. He hit your bike and then he ran away from the spot. For a moment, just suspension of disbelief in this case where we say that Besla is the victim, just for a moment, I'm playing the devil's advocate. Why didn't he stop to help you then? Isn't that the biggest question at this point?
1: See, lawyer ka kaam jitna hota hai ki aapko justice dilana aur jo aapke saath galat hua hai us pe stand lena. Mujhe samajh nahi aata ki unka lawyer publicly wo kaise wo statement de sakte hain ki unse choti si galti ho gayi.
0: What are you expecting in terms of justice?
1: Ma'am, ye incident mere saath hua hai and isse pehle bhi kitne aise incident hue hain jab main bike ride karti hu. मतलब मुझे समझ नहीं आता लोगों के दिमाग लोगों की क्या मेंटालिटी है ये
0: बिल्कुल, बिल्कुल.
1: कि किसी फीमेल बाइकर को देख के वो उसको चेस करने लगते हैं. मतलब मैंने खुद मल्टीपल टाइम्स कितनी ये चीजें फेस करी है एंड ये इंसिडेंट दिन दिहाड़े हुआ है सुबह हुआ है और मुझे सुबह मतलब मेरे आसपास मेरे फेलो राइडर्स होने के बावजूद भी मुझे उस दिन इतना अनसेफ फील हुआ. मतलब कल को मैं अगर अपनी बाइक लेके भी निकलूं अकेले तो मैं 10 बार सोचूंगी कि मुझे निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए.
0: फॉर अ मोमेंट सिया, लेट्स टॉक अबाउट फीमेल बाइक राइडर्स. यू हैव बीन रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम देम. दिस इज अ स्मॉल कम्युनिटी बट अ स्ट्रॉन्ग वन. टेल अस अबाउट द हरासमेंट दैट वुमेन गो थ्रू ऑन द रोड्स व्हेन दे आर सीन राइडिंग बाइक्स.
1: सी, अगर आप एक फीमेल राइडर हो एंड मुझे ऐसा लगता है हर एक फीमेल राइडर ने हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर फेस करी होगी, क्योंकि वो जब ये देखते हैं कि वो फीमेल राइडर है, वो उसके पास आएंगे, उसको शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, उसको हरास करने की कोशिश करेंगे. लोग तो बोलते हैं कि हम प्रेज करते हैं, सॉरी वो प्रेज नहीं होता, वो अप्रिसिएशन नहीं होता. आप फीमेल राइडर से पूछो उनको कितना डर लगता है जब अगर कोई आसपास आके आपके साइड से गाड़ी लेके जाता है या कोई बाइक लगा देगा आपके आगे. जी, मेरा मैसेज यही है कि आप कितने भी अपने इंटरव्यूज दे ले, आपका लॉयर कितनी भी आपकी गलती छुपाने की कोशिश करे, आप कितना भी विक्टिम और सिंपथी कैरेक्टर प्ले कर लो, पर आज पूरे देश ने देखा है कि आपने किस तरीके से अपनी गाड़ी से मुझे ठूका है और आप मुझे मार के वहाँ से भागे हो. ये नहीं कि आप वहाँ से निकल गए हो, आप एक किसी गुंडे की तरह मेरे को ठोक के भागे हो. और आप ये मत सोचना कि आप अपना ये सिंपति कार्ड प्ले करके आप बच जाओगे.
0: यू नो सिया, बिफोर यू गो, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट NDTV, एंड आई डोंट वांट टू से दिस फॉर ब्राउनी पॉइंट्स, बट आई एम सेइंग दिस फॉर अ रीजन. NDTV वाज द फर्स्ट चैनल टू टेक अप द स्टोरी यस्टरडे अर्ली मॉर्निंग, एंड वी विल सी इट थ्रू विद यू.
1: आई नो NDTV वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज करा था एंड दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी.
0: यस, no, along with that, we were the first one to take the story forward. We made sure it was on the website, it was on television, because we want to see justice in this case. I'm from Gurugram. I know what it feels like to be on those roads out there, Sia, through the evenings especially. So more power to you, and thank you so much for speaking with NDTV, Sia. We are very inspired by you. Thank you. NDTV also spoke to Kalyan Besla's lawyer, who blamed Sia for the hit and run, claiming that Kalyan was provoked by her and that Kalyan was the victim. I have the advocate, Mr. Naveen Besla, on the phone line with me. He's representing Kalyan Besla. Naveen ji, aapse puchna hai, your client has been detained. Is this a detention or an arrest? Can you confirm to us?
2: पूरा किसी अपने नॉन से पता लगाया कि उसको दौसा से अरेस्ट कर लिया है. बाकी अभी क्लियर कुछ नहीं है. बाकी मैं गुड़गावा कोर्ट जाके, गुड़गावा थाने जाके अभी क्लियर करता हूँ कि वो अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ, जो भी है वो बताता हूँ आपको.
0: नवीन जी, देयर इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज आल्सो अगेंस्ट योर क्लाइंट, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट?
2: हमारे क्लाइंट की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. एक्चुअली ये राइडर बहुत तेज स्पीड चला के चला रहे थे बाइकों को, उनकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है. हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है.
0: आपके क्लाइंट ने रोका क्यों नहीं गाड़ी फिर उनको हेल्प करने के लिए?
2: मैम, 25 से 30 लड़के थे, आपस में राइडर थे.
0: कोई तो दिख नहीं रहा था वीडियो में नवीन जी?
2: मैम, वीडियो तो लड़के इनके पास है ना, राइडरों के पास है. प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं दे रहे? सारी
0: प्रॉपर वीडियो, चार चार वीडियोस है सर.
2: मैम, ये एडिटिंग वीडियो है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये उन्होंने अपने हिसाब से अपने तरह तैयार करके रख दी.
0: नवीन जी, यू नो द लॉ बेटर देन आई डू. होपफुली देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग अ गुड समैरिटन. इफ योर क्लाइंट इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, व्हिच इज सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट गिवन द एविडेंस माउंटिंग अगेंस्ट हिम. मेरा प्रश्न ये है आपके लिए, उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात. उन्होंने सिया को गाड़ी में क्यों नहीं लिया और हॉस्पिटल क्यों नहीं गए उनके साथ?
2: एक्चुअली ये मैम, इसको मॉबल इंस्टिंक्ट का डर था. इसको ये डर था कि ये 28-30 जने मुझको मारना दे, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये वहां.
0: ये तो आप सिया की कहानी हमें बोल रही है. दिस साउंड्स मोर लाइक योर सिया'स काउंसिल देन द काउंसिल ऑफ कल्याण बेसला सर. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी वेंट थ्रू. नवीन जी,
2: मैम स्टोरी एक्चुअली क्या होता है मैम, संख्या में ये ज्यादा, राइडर ये ज्यादा, स्पीड इनकी ज्यादा, 160 तक 180 तक स्पीड चला रहे हैं इनकी. मैंने और भी वीडियो देखे.
0: एक औरत, चार लोग हैं गाड़ी में, फोर व्हीलर में, और आप बोल रहे हैं कि आपके क्लाइंट विक्टिम है.
2: मेरे क्लाइंट विक्टिम है, रियल में ही विक्टिम है मेरे.
0: मुझे समझाइए कैसे. इज द वीडियो फुटेज लाइंग? नवीन जी, इज द वीडियो फुटेज लाइंग?
2: कौन परमिशन देता है इन राइडरों को? कौन परमिशन देता है कि आप एक रोड को घेर के चलोगे, आप एक रोड को स्टंट के लिए यूज करोगे, एक रोड को स्पीड के लिए यूज करोगे? आप किस किस की जान के खतरे को अपने मोल ले रहे हो? बनवात की.
0: सो मिस्टर नवीन, व्हाट यू आर सेइंग इज सीआई इज लाइंग, द पुलिस इज लाइंग, द सुओ मोटो केस फाइल्ड बाय द पुलिस इज अ शैम. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस?
2: पुलिस का नहीं, मैं पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कह रहा. पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. पुलिस इसमें फेयर इंक्वायरी करेगी और पुलिस इसमें जो भी करेगी, अब उसको सामने उसका फेस करेंगे. कोई इशू नहीं है हमें.
0: मिस्टर नवीन, इट्स अनफॉर्चुनेट. All right, we're cutting out of that because we have Sia speaking to NDTV once again. Listen in to this exclusive conversation.
3: संडे को गुड़गांव में एक एक्सीडेंट होता है, एक बाइक राइडर लड़की जो है उसका एक्सीडेंट होता है और खुद सिया जो है इस वक्त एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बात कर रही हैं। पुलिस को बयान दर्ज कराने के बाद ये पहला इंटरव्यू जो है वो सिया एनडीटीवी को दे रही हैं। सिया, मुझे पता है कि बहुत बड़ा इंसिडेंट आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, आप पूरा एक बार बता सकती है कि क्या आपको लग रहा है कि इंटेंशनली आपको हिट करने की कोशिश की गई?
4: मैं आपको पूरा इंसिडेंट बताती हूँ। सुबह के लगभग सुबह के टाइम पे संडे को मैं बाइकर्स बन जा रही थी अपने कुछ दोस्तों के साथ और ये जो गाड़ी वाले हैं तो वो साइड में आते हैं, वो इशारे करते हैं, रुकने के लिए बोलते हैं, धीरे धीरे अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पास लाते हैं। मैं इशारा करती हूँ आप दूर कर दीजिए अपनी बाइक को, मुझे डर लगता है कि कहीं ठोक ना दे, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। पर वो मतलब मुझे पूरी तरीके से मेरा पीछा कर रहे थे, चेस करने की कोशिश कर रहे थे और जब मैं आगे जाके जब थोड़ा स्लो होती हूँ तो वो इंटेंशनली कि मैंने बाइक नहीं रोकी या उनका ईगो हर्ट हो गया, इंटेंशनली आके मुझे मारने की कोशिश करके, मतलब पूरी कोशिश से मुझे मतलब ठोकर मारते हैं और मैं गिर जाती हूँ और वो वहाँ से भाग जाते हैं, वो रुकते भी नहीं हैं। तो ये क्लियरली मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन पे होना चाहिए एंड मतलब किसी को मतलब जान से मारने की कोशिश करना वो पूरा वीडियो में आ रहा है।
3: आपको लग रहा है कि आपको जान से मारने की कोशिश जो है वो उस दौरान की गई थी?
4: यस, मुझे मतलब मैंने भी अपना वीडियो देखा कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि कोई गलती हो, पर वो इंटेंशनली फर्स्ट लेन से थर्ड लेन पे आके अपनी गाड़ी को कट करके मुझे मारने की कोशिश करता है।
3: लेकिन जो आरोपी है वो लगातार एक ही चीज़ बोल रहा है कि मुझे नहीं पता था कि लड़की जो है बाइक पे ट्रैवल कर रही है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए इशारे कर रहा था। आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी है क्योंकि हम लगातार उसका बयान जो है वो सुन रहे हैं?
4: नहीं, ये देखिए ये पूरी तरीके से झूठी बात है। जैसा वीडियो चल रहा है और वीडियो में लोग देख भी रहे हैं कि कैसे वो पूरी तरीके से मेरा पीछा कर रहे थे। देखो, किसी से बीच में किसी को छेड़ के फिर कंटिन्यूसली पीछा करना और पूरी वीडियो में दिख रहा है कि वो कितना करीब थोड़ी सी दूरी पे वो मेरे ही क्लोज चल रहा था, तो मुझे नहीं लगता ये कोई गलती वाली चीज़ है। देखो, कोई लड़की राइडर जा रही है, सब पहचान लेते हैं, पीछे बाल होते हैं, उनकी छोटी बनी होती है जैसे मेरी थी और आए, मैंने नहीं रोकी, ज़बरदस्ती आके मुझे मारने की कोशिश करी गई।
3: लेकिन अभी फ़िलहाल जानकारी मिली है कि आरोपी जो है वो राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार भी हो गया है, लेकिन 50 घंटे लग गए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। आपको लगता है कि दिल्ली गुड़गांव पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए था उस तरह से एक्शन नहीं लिया, कुछ देरी हुई, कुछ कमी हुई?
4: देखिए, मेरे को अभी ऐसे आज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि वो अरेस्ट हो गया है।
3: हमारे पास ही जानकारी है कि वो गिरफ्तार हो गए,
4: पर फिर भी हुआ है कि ये देखो बहुत लेट है कि हम जब एक्शन लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे मतलब सेंसिटिव केस होते हैं जिसपे मतलब स्ट्रिक्टली और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। 50 घंटे बहुत देर होते हैं, बट मैंने अपना बयान दे दिया है पुलिस को और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। आई होप कि जो जस्टिस हम लोग मांग रहे हैं फीमेल राइडर्स के लिए, सभी के लिए, वो हमें मिले।
3: एक अंतिम सवाल ये भी पूछूंगी क्योंकि अमूमन जब इस तरह के वाक्य होते हैं तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं और बीइंग अ वूमेन मैं इस बात को समझ भी सकती हूँ। आपको लग रहा है परिवार के लिए, आपके लिए थोड़ा ये जो हुआ इंसिडेंट वो कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब है, आपको इसका इम्पैक्ट है मेंटली तौर पर, आप थोड़ा सा घबराई हुई हैं क्या?
4: हाँ, मतलब जब वो इंसिडेंट हुआ वो पूरा दिन, पूरी रात, आज भी वो चीज़ कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में चलती है। मेरे परिवार वालों को बहुत दुख हुआ कि उस इंसिडेंट में मेरी मौत भी हो सकती थी। वो तो मैंने सारे गियर्स पहन रखे थे तो इसलिए मैं बच गई और मतलब भगवान का शुक्र है कि ज़्यादा मुझे नहीं लगी, नहीं तो ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी। देखिए, हर एक इंसान के लिए मेंटली डिस्टर्बिंग है ये चीज़ और मतलब मुझे अब थोड़ा सा अनसेफ फील रहेगा हमेशा।
3: ऐसे से कई वाक्य जो है हरासमेंट के हमने कई बार देखे हैं, आप क्योंकि महिला बहुत ब्रेव हैं, आप निकल के आई, आपने प्रवक्ता से अपनी बात को उठाया, ऐसी कई महिलाएं हैं जो इस तरह के मामलों को दर्ज भी नहीं करवा पाती, बोल भी नहीं पाती। उन तमाम महिलाओं के लिए, उन तमाम जो ब्रेव वूमेन हैं जो इस चीज़ के पीछे शायद छुप जाती हैं, डर जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा आपका?
4: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है या रोड पे होती है या कहीं भी भी किसी जगह होती है तो आपको उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। आपके साथ गलत हुआ है, आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि शायद से आपके जैसा कोई और दूसरा भी हो सकता है, उसको बचाने के लिए आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा।
3: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सिया ने एक्सक्लूसिव जो है NDTV से बात की है अपना बयान दर्ज करवाने के बाद। कनिका कटियार, NDTV दिल्ली।
0: Sia there speaking with NDTV in that exclusive conversation, once again underlining the delay in nabbing Kalyan Besla, the man who should have been caught much earlier. Akhil joins me live from Palwal in Haryana. Akhil, we know that Besla has been arrested. There will be, of course, a medical examination. He will be brought before the court. Just take us through the process. Important to even underscore here that an attempt to murder clause has now been added to that FIR. What could this mean for the man in terms of an offence? Is this bailable, not bailable? Just take us through what you can share with us at this point.
5: Well, Vedika, if you see after a marathon run for the Gurugram police, what we have seen that after more than 52 hours, the Gurugram police was able to apprehend this very individual from Rajasthan's Dausa, and now right now they are bringing that very individual to Gurugram. I would like to request my Vijay to just move and show you the visual of this very road. Right now we are just driving in the overtaking lane, and next to it is the normal driving lane, and next to it is the heavy vehicle lane. Right, so there are three different lanes, and I would like to request my Vijay to just zoom in and show that if you want to move from the overtaking lane towards the side of the heavy vehicle lane, it's very difficult, and within a short span of time, within just fraction of seconds, what we have seen that this very individual, Mr. Besla, what he did basically, he moved from overtaking lane towards the heavy vehicle lane, and after that what we have seen that in that very video, the entire moment was captured. So right now the Gurugram police is investigating it from all the angles, and there are several unanswered questions that are basically going to be examined by the Gurugram police with that very individual. Because if you see, initially what we have seen, that the CIA has said that that very individual was following her. So who basically followed whom when the entire episode basically started, and how long basically the vehicles have been followed by that very individual, and when the argument basically broke out, were there any repeated kind of argument that has taken place, and who basically initiated that threatening messages? Because what we have seen that if you just go by the CCTV footage, what we have seen that there are several unanswered questions that is going to be asked by the Gurugram police during the interrogation of Mr. Besla. So in the next 2 hours, we are expecting that Mr. Besla is going to be taken from Dausa, because it's approximately 210 kilometers away from Gurugram. So it will take another 2 to 3 hours to bring Mr. Besla from Dausa to Gurugram.
0: All right, Kalyan Besla is on his way back to Gurugram is the latest. It could take a couple of hours, after which there will be a medical examination and he will also be presented before the court. NDTV will keep you updated on the latest. There is some news coming in. The Vande Mataram debate has now reached the Karnataka High Court. A public interest litigation, a PIL, has been filed challenging the Karnataka government's recent order that mandates only the first two stanzas of Vande Mataram be sung at state government functions. The petition has been moved by advocate and activist Girish Bharadwaj, who argues that the state cannot alter the prescribed form of a national symbol or a national song here through an executive order. My colleague Deepak joins us live. Deepak, the face-off continues and now intensifies, reaching the Karnataka High Court.
6: Well, yes, we'll really have to see how the High Court really looks into this matter, because first it was the Karnataka Pradesh Congress under the leadership of Mr. P.K. Hari Prasad who said that, you know, as far as the Congress events are concerned, there will be only two stanzas that will be sung. And then came the Karnataka government order, which officially stated that for all state government events, except where the president, vice president or the governor or the prime minister is attending the, you know, Vande Mataram, only two stanzas will be sung in the government events in the state of Karnataka. This has, of course, now been officially judiciary challenged through a public interest litigation. Activist and advocate Girish Bharadwaj challenging this, saying that the purview of really making these sort of alterations falls strictly with the center, not with the state. How the High Court really views this, and you know, whether there will be any sort of setback to the state government here, that is something that remains to be seen. For now, it has been moved. The matter, of course, needs to be heard out in court.
0: Deepak, do stay with me. There is more news coming in from Karnataka. The controversy over the screening of a documentary on Umar Khalid in the state of Karnataka has now taken a political turn, with the Congress coming out strongly in his defense. Karnataka Congress Chief B.K. Hariprasad

0: ऑन योर बाइक, आपका बाइकिंग बाइकिंग जर्नी कब कंटिन्यू होगा?
1: मुझे ऐसा लगता है काफी टाइम लगता है वापस उस स्टेट पे आने के लिए, क्योंकि कोई इंसिडेंट जब सड़क पे होता है, कोई हिट करके जाता है, तो वो बैक टू बैक आपके माइंड में चलता है. तो मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी.
0: सिया, मुझे पता है कि उस दिन से लेकर अब तक बहुत लोगों ने आपसे पूछा है कि क्या हुआ, लेकिन NDTV पर लोग जानना चाहते हैं सिया से कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, कैसे शुरू हुआ था. आप बाइक पर चल रहे थे, ये गाड़ी आ गई थी आपके सामने, क्या बातचीत हुई, डिटेल में बताइए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे हुआ था ये?
1: तो जैसे मेरा वीडियो में था एज इट इज सेम हुआ था, कोई उसमें कोई भी ऐसे कुछ अलग नहीं हुआ. वो गाड़ी मेरे साइड में आई, वो मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे. उसमें गाड़ी में 4 लोग थे और दिख रहा था उन लोगों ने दारू वारू पी रखी है कुछ, तो उस चीज से मैं और ज्यादा डर जाती हूँ. और वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी मेरी बाइक के पास लाते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप दूर हो जाइए. तो इसी रीजन से मैं थोड़ा अपना बाइक आगे बढ़ाती हूँ कि भाई वो मुझे हिट ना करे. पर जहाँ मेरी बाइक स्लो होती है, वो पीछे से इतनी तेज अपनी गाड़ी लेके आते हैं और इंटेंशनली मुझे हिट करते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं, और फिर वो वहां से मार के भी भाग जाते हैं.
0: जब जब वो कोलिजन हुआ था सिया, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग ये कर सकते हैं? आपके पीछे था ये गाड़ी, आपने कुछ शब्द बोले थे, उन्होंने भी धमकी दिया आपको, उसके बाद क्या आपने एक्सपेक्ट किया कि ऐसे हो सकता है कि आपको आके डैश करेंगे ऐसे?
1: नहीं, देखिए जब हेलमेट होता है, हेलमेट में हम कुछ बोलते हैं तो आवाज वो सुनाई नहीं दे पाएगी उनको. पर मैं उनके एक्शन समझ रही थी, तब भी मैंने अपने हाथ से एक्शन करा, और जिस तरीके से उनका बिहेवियर लग रहा था, तो इसी वजह से मैं डर रही थी. एंड वही चीज हुआ कि जिस चीज का मुझे डर था, उन्होंने पीछे से आके मुझे ठोका और मुझे सड़क पे गिरा के वो भाग गए.
0: वो 1-2 सेकंड में वो आके आपको डैश किया सिया, वो पूरा वीडियो आपके मोटरसाइकिल के कैमरा पे बिल्कुल क्लियरली कैप्चर हुआ है. उस मोमेंट को डिस्क्राइब करिए, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड बाइकर हैं, आप लगातार बाइकिंग जर्नी पर हैं. जब वो कोलिजन हुआ था, जब उन्होंने आपको आके डैश किया, आपके मन में क्या हुआ, कैसे आपने महसूस किया?
1: बस जब उन्होंने मुझे मारा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया एंड मैं एकदम ब्लैंक हो गई. आई वाज शॉक्ड एंड ट्रॉमाटाइज्ड एंड उसके बाद मैं कुछ नहीं सोच पाई. अच्छा,
0: व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट सिया जी? व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट, आफ्टर यू फेल फ्रॉम द बाइक? गिरने के बाद इमीडिएटली क्या हुआ था?
1: बेसिकली उसके बाद कुछ नहीं, कुछ लोग आए, उन्होंने वो मुझे उठा के लेके गए एंड मेडिकल केयर मैंने थोड़ा करा, उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस गई.
0: और ये कल्याण बैसला जो है सिया, 2 दिन के बाद डिटेन हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? 2 दिन के बाद, 2 दिन
1: काफी लेट एक्शन हुआ है, एक्शन काफी जल्दी होना चाहिए था, डिटेल सबके पास थी, तो हाँ ये एक्शन काफी लेट हुआ है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था.
0: सिया, आपने बताया कि आप मेंटली भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे कि आप किस लिए ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्यों ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ये जानना चाहेंगे हम?
1: देखो ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लेडी बाइकर, कोई भी महिला ट्रॉमेटाइज हो सकती है, या कोई भी मेल बाइकर, कोई भी हो सकता है. तो ऑब्वियसली ये चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरे चलेगी.
0: और ये क्या एक जेंडर इशू है मैडम? गाड़ी में जब लोग जा रहे हैं, वो अल्कोहल पी रखी है, जब वो देखते हैं कि एक लड़की बाइक चला रही है स्पीड से, ये एक जेंडर इशू भी है, मेल ईगो भी है इसमें?
1: ये मेल ईगो भी है एंड ये जेंडर इशू भी है. लोग लेडी बाइकर को देख के बहुत चेस करते हैं और उनको छेड़ने की भी कोशिश करते हैं. सो ये एक इंसिडेंट था जो मेरा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, आई होप आप सबने भी देखा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर.
0: आप वन फाइनल क्वेश्चन सिया जी, आप लेडी बाइकर्स को क्या बोलेंगे, लास्ट क्वेश्चन, आप लेडी बाइकर्स को क्या बोलेंगे जो दिल्ली NCR में चलाते हैं बाइक्स, आप उनको क्या बोलेंगे आप? ओके, आई थिंक वी हैव लॉस्ट दैट लिंक विद सिया, बट यू हैव हर्ड what she has said. She said it's going to take a while for her to get back on her bike and continue her biking journey. She's a passionate biker. She has injuries, and very important to hear what she said, that she's got physical injuries.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
5: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
6: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
7: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
8: Launch control, 0 to 100.
9: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
10: This car makes no sense, yet it makes every sense.
11: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
9: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
7: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
12: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured.
13: Please come in. जैसे कल हम मेरी वीडियो में जो मैंने डाला उसमें देखा कि वो एक गाड़ी वाला जो मुझे चेस कर रहा था, और मैं यूजुअली बाइक राइड करती हूँ संडे को, एंड मैं गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थी। मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा कि ये गाड़ी उस रोड पे चल रही है, मेरे आगे पीछे चल रही है। पहली चीज़ जो उसने करी कि मैं बाइक चला रही हूँ एंड वो बहुत फास्ट मेरे साइड से निकलता है। देन आई वाज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये गाड़ी इतने पास से क्यों निकली है मेरे। फिर मैंने इग्नोर करा कि चलो छोड़ो। देन उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है। देन उसके बाद जो सेकेंड इंसिडेंट होता है, जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो, और ऐसे रुकने के लिए उस तब मैं डर जाती हूँ। सी उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है। उसके साइड में एक और लड़का था, वो भी कुछ एक्शन कर रहा था, और आई थिंक वो पीछे भी दो लड़के थे, पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे। एंड सी मैं टू व्हीलर पे हूँ, एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है, उन लोगों का नहीं है। तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ, आप पास मत आओ, ठीक है, कि आपकी गाड़ी भी तो तेज़ चल रही है। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे

0: NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
3: Meetha ya namkeen. Chahe jaise khao. 100% suji se bani. Our pure vermicelli. Swadisht. Sehatmand. Har roz.
4: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured.
5: Please, please. And as yesterday, we saw in my video that I saw that the car was chasing me. And I usually ride bike on Sunday. And I was on the golf course road. I never noticed that time that the car was running on that road, running in front and behind. The first thing that he did was that I'm riding a bike and it was very fast from my side. Then I was like, I'm going to say, why is this car so fast? Then I ignored it, let's leave it. Then after that, the car धीरे होके फिर वो पीछे जाती है देन उसके बाद जो सेकंड इंसिडेंट होता है जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो और ऐसे रुकने के लिए उस तब मैं डर जाती हूँ सी उनके फेस से साफ झलक रहा था कि उन लोगों ने पी रखी है उसके साइड में एक और लड़का था वो भी कुछ एक्शन कर रहा था और आई थिंक वो पीछे भी दो लड़के थे पर गाड़ी के काले शीशे थे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं दिख रहा था कि पीछे कौन लोग बैठे हैं कितने लोग बैठे हैं और वो एक्शन करते हुए मेरे एकदम पास में आ रहे थे एंड सी मैं टू व्हीलर पे हूँ एंड गाड़ी कोई भी टक्कर मारेगी तो नुकसान मेरा है उन लोगों का नहीं है तो मेरा वही दूसरा एक्शन था कि भाई आप थोड़ा साइड चलाओ आप पास मत आओ ठीक है कि आपकी गाड़ी भी तेज चल रही है और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि उसकी गाड़ी शायद से मेरी बाइक के पास आ रही है या आगे आ रही है तो थोड़ा सा मैं तेज़ चली कि मुझे डर लग रहा था कि भाई वो कुछ कर ना दे एंड जो एक फेलो राइडर था जो पीछे चल रहा था ही ट्राइड कि वो मेरे पास आए कवर करे और उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि वो मेरे पास चल रहा है उसकी जस्ट साइड में गाड़ी चल रही है एंड इसी हफड़ा तफड़ी में कि वो लड़का उसको आगे नहीं आने दे रहा एंड जब एक गाड़ी बीच में आई मेरी बाइक स्लो हुई एंड वो फर्स्ट लेन से जो मेरे फ्रंट कैमरा व्यू से आया है कि वो फ्रंट लेन से आके कट मार के सीधा थर्ड लेन में आके मुझे टक्कर मार के जाता है एंड इट वाज लिटरली वेरी शॉकिंग कि मैं एकदम अपने थर्ड लेन में आराम से चल रही हूँ क्योंकि गाड़ी आ गई है एंड मैं
6: If a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
7: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग हजारों सपने टॉप मेंटर्स कई शीर्ष नेतृत्व बदलने देश के स्टार्टअप का सीन करने करोड़ों का निवेश आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ तो मंच है शानदार करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान

स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: Welcome to India's biggest grassroots innovation movement, Vande Bharat. हमारे इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के मेंटर्स को. प्लीज वेलकम आशुतोष बलानी, मिस्टर राजीव कालमली, आरती गिल, मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति, द सेकेंड जनरेशन विजनरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी पोर्ट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मिस्टर करण अदानी. तो वेलकम टू वंदे भारत. शुरू करते हैं. घर बनाना हम सबका सपना होता है. कुछ लोग ये सपना बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं, कुछ लोग काफी देर के बाद, काफी समय बीतने के बाद पूरा करते हैं. टेक्नोलॉजी हर जगह पे, हर क्षेत्र में आजकल, घर के कंस्ट्रक्शन की दुनिया में क्यों नहीं है, ये सवाल हमारे इनोवेटर के दिमाग में आया. तो जोरदार तालियां माइकॉप की इनोवेटर अंकिता सिन्हा, शशांक शेखर और ऋषभ माथुर के लिए. वेलकम वंदे भारतम के मंच पर. पिच का टाइम आपके पास में जो है वो 3 मिनट का है और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब.
1: हेलो एवरीवन, हमारे और आपके लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है घर, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड व्हाट नॉट. 20,000 फीट की हाइट पर सीमा पर तैनात एक सैनिक के लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है देश की प्रोटेक्शन एंड नेशनल सिक्योरिटी. इमेजिन दिस, हाई ऑल्टीट्यूड, सब जीरो टेम्परेचर, वेरी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ पर आपको करना है कंस्ट्रक्शन. ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन सिर्फ स्लो नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है. हमने इस प्रॉब्लम को काफ़ी बारीकी से समझा, सॉल्व किया और देश को दिया उसका पहला 3D प्रिंटेड इम्पैक्ट एंड ब्लास्ट रेजिस्टेंट बंकर. यह बंकर सुपीरियर क्वालिटी के हैं, प्लस कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस को 45 डेज से कम करके 7 डेज पर लेकर आ गए हैं. आज हमारी सीमा पर 500 से ज़्यादा की संख्या में ऐसे बंकर्स डिप्लॉयड हैं जो देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं. हमारे लिए टेक्नोलॉजी का ट्रू पर्पस यही है. नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सिन्हा.
2: मेरा नाम है शशांक शेखर. मेरा नाम है ऋषभ माथुर एंड वी आर द टीम माइकॉप. माइकॉप इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. 3D प्रिंटिंग कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इज बेसिकली रोबोटिक सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी भी डिजिटल डिजाइन को लेयर बाय लेयर, स्पेशल मिक्स जो कि हमारे केस के अंदर कॉन्क्रीट है, उसको डिपॉजिट करके कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं. दिस इज बेसिकली 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. हमने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है हियर इन अहमदाबाद, विच हैज 3 की कॉम्पोनेंट्स. 1 इज अ रोबोटिक सिस्टम, 2nd इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड 3rd इज 3D प्रिंटेबल मिक्स. सो दीज 3 ऑल टूगेदर अचीव ऑलमोस्ट 100% ऑटोमेशन. एंड विद दिस टेक्नोलॉजी वी हैव डिलीवर्ड क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट टाइमलाइंस 60% तक भी रिड्यूस किया है एंड मटेरियल वेस्टेज अराउंड 30% तक भी हमने रिड्यूस किया है.
3: एंड नाउ वी आर ऑन अ मिशन टू डेमोक्रेटाइज दिस टेक्नोलॉजी फॉर द लार्जर गुड फॉर द पब्लिक, वेर इन दिस कैन बी यूज फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आंगनवाड़ी, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो फॉर इंडस्ट्रियल यूज केसेज एज वेल. लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, 3 बेसिक चीज़ें हैं. तो मकान इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर द मासेज. अगर कोई घर बनाना चाहता है या कोई इंडस्ट्री अपनी बिल्डिंग बनाना चाहती है, तो उसको हमेशा एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, एक डिजिटल डिज़ाइन को एक फिजिकल मॉडल में ट्रांसफॉर्म करना होता है, जो काफ़ी कम्बरसम होता है. तो हमारा पर्पस यही है कि इसको हमें एकदम हैसल फ्री बनाना है. द मोमेंट यू नो कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट एंड वी एंश्योर द सेम थिंग कैन बी प्रिंटेड राइट अवे. सो दैट्स वॉट वी आर ऑन अ मिशन टू. एंड इस सपने को सच करने के लिए आज हमारी आस्क है 30 करोड़ रुपए फॉर 20% स्टेक इन अवर कंपनी. एंड विद दिस लेट्स प्रिंट द फ्यूचर. वंदे भारतम.
4: हाउ बिग आर यू गाइस इन रेवेन्यूज?
3: सो लास्ट ईयर वी डिड 11.65 करोड़. इन द पास्ट 3 इयर्स वी हैव नेट रेवेन्यू डन ऑफ अराउंड 35 करोड़. एंड द ओवरऑल प्रोजेक्ट वैल्यू दैट वी हैव डिलीवर्ड वॉज अराउंड 115 करोड़. So we did like 30% of the overall project work.
4: So the 650 structures, if in 2 years time this has to be 3x of this, are you able to do that? Do you have the capacities?
3: In the last year we actually expanded ourselves from a 20,000 square foot facility to a 70,000 square foot facility. We have one more plant in Sonipat. So now we are in a position wherein if the overall project value is, let's say, is in the tune of 300 to 500 crore, we can deliver that, and this fundraise definitely would help us to have that growth in the next 2 years.
5: amazing concept, and trust me, from a personal experience, anybody who can solve construction, they would be real angels for any home buyer. Two, three things from my side. Once you construct it in your factory, how do you move them?
3: So it's like a prefabricated 3D printed structure. So what we do is we break the entire building into Legul type panels, right from the foundation element, in some cases the roofing also. And then they are like transported using trucks. So what our vision is to have like decentralized facilities across India, like the ready-mix concrete business, so that we can cater very easily within 50 to 100 kilometer radius, and the logistics costs are also low, and that does not impact environmentally also. And then at site we can erect using the available machineries like tower cranes, like hydra cranes and other available resources.
5: Per machine, what is the minimum throughput required?
3: You can say like if you want to build a 1000 square foot house, so using one robot in one shift, we can do that printing in like 4.5 days typically. And right now we have like 6 robots, so actually we can do one house in less than a day as on today.
5: I can offer support in the sense sports business. We are developing almost 20 million square feet of warehousing. So, you know, we would be happy to support and work on your technology and
1: Thank
5: to see
1: so
5: how much.
1: Much
5: we can work together.
1: Thank you so much.
5: Because we also have the same problem of we need to deliver for clients like Flipkart ahead of time. So we would be happy to work on
1: Thank
5: support
1: you so much.
5: On.
1: Thank you so much.
0: That's fantastic. Congratulations, guys.
6: देखो आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट है करण जी के नाम पे और आपको मैं दे सकता हूँ थोड़े से पैसे एज टर्म ऑफ कैपिटल सो आई वुड एक्चुअली लाइक टू ऑफर यू सम मनी हियर ऑन दिस स्टेज पर्सनली मी एंड माय ग्रुप कैन ऑफर यू 30 करोड़ फॉर 33% ऑफ द कंपनी गिवन दैट योर रेवेन्यू इज 24 करोड़ आई वुड लाइक टू वैल्यू एट 90 करोड़ एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक आई कैन पर्सनली रेज फॉर यू अलॉन्ग विद माई पर्सनल इन्वेस्टमेंट And given that we have support from my favorite panelists, I would definitely like to make this offer to you.
1: If you could just, क्योंकि हमारा last round जो हुआ था 100 CR पे हुआ था around 2 years back.
6: Okay.
1: So if you could just उससे थोड़ा ज़्यादा, maybe if you could go up to 110, that's it.
6: ठीक है, at 110 deal done.
1: Thank you so much. Oh my God.
0: What is happening here?
6: Yeah. Thank you so much.
4: Yeah, I just wanted
6: Sorry,
4: to share
6: Kalyan
4: something.
6: Has something to add.
4: What I'm going to do is, Ashutosh is a friend. I'm not going to compete with him, but I'm going to request that I join him in some small way. It's good for you to have a diversified cap table rather than one person owning 30%+. Maybe we partner together and split. I'll let Ashutosh have this discussion with you, and I'll just partner with him.
6: No, Kalyan, why don't you join me? Let's do it together. I think more the merrier, right? Amazing job. Amazing
1: Thank you
6: job.
1: So much. Thank you
6: Super.
1: So much. Thank you so much.
4: Congratulations to you.
0: आप तीनों जानते हो मैं यहाँ खड़े होकर क्या करता हूँ मैं सपनों को पूरा होते हुए देखता हूँ Which is such a nice feeling. How are you feeling? कैसा लग रहा है आप लोगों को
1: सर जी अरे बिल्कुल लाइक हमारा जो फर्स्ट प्लान था वो यहाँ से अगर मैं लोकेशन की बात करूँ शांतिग्राम के जस्ट पीछे है तो वो डिस्टेंस कवर करना इफ आई से मे बी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दे तो 600 मीटर की दूरी होगी बट फॉर अस वो डिस्टेंस कवर करना बहुत बड़ी बात थी वो दूरी हम इस तरीके से पूरी कर पाएंगे और यहाँ पे खड़े होकर कुछ लेके जाएंगे इतना बड़ा कंपनी के लिए आई थिंक व्हेन आई अप्लाइड आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट शायद सपने ऐसे सच होते हैं
0: बिल्कुल ऐसे सच होते हैं और इस मंच पर तो बहुत ही खूबसूरती सच होते हैं अगर आइडिया में है दम कहो
3: वंदे भारत
0: वंदे भारतम थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स दैट आई वेट फॉर प्लीज आप लोग स्कोर दे दीजिए दिस इज वेरी नाइस नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द ऑपर्चुनिटी टू विजिट नॉर्थ ईस्ट यू बीन देयर
6: Yes,
0: yeah, it's such a beautiful part and हमारे जो अगले innovators आ रहे हैं वो northeastern खूबसूरत northeastern belt से आ रहे हैं Please welcome Imphal East से Kumshunk Private Limited के innovators Dr. Wankhe Rakpam Sujata and Wankhe Rakpam Krishna Nanda

0: drive in the Kia Sorento.
1: Kia, movement that inspires.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर प्योर मसाला।
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
6: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स, फास्टर, बोल्डर, मोर रेस्टलेस, इट डजंट स्टॉप। Neither do we. NDTV, when it really matters.
11: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
12: All right, let's revert to the Gurugram crash that we are tracking. A woman riding a motorcycle on Gurugram's golf course road was injured. Just,
13: please. और जैसे कल हम मेरी वीडियो में जो मैंने डाला उसमें देखा कि वो एक गाड़ी वाला जो मुझे चेस कर रहा था, और मैं यूजुअली बाइक राइड करती हूँ संडे को, एंड मैं गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थी। मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं करा कि ये गाड़ी उस रोड पे चल रही है, मेरे आगे पीछे चल रही है। पहली चीज़ जो उसने करी कि मैं बाइक चला रही हूँ एंड वो बहुत फास्ट मेरे साइड से निकलता है। देन आई वाज लाइक कि मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई ये गाड़ी इतने पास से क्यों निकली है मेरे। फिर मैंने इग्नोर करा कि चलो छोड़ो। देन उसके बाद वो गाड़ी धीरे होके फिर वो पीछे जाती है। देन उसके बाद जो सेकेंड इंसिडेंट होता है, जो मेरी वीडियो में शो हो रहा है कि वो मेरे साइड में आके कुछ एक्शन करता है, फिर उसके बाद वो बोलता है कुछ कि मैं ये वो, और ऐसे रुकने के लिए उस तब मैं डर जाती हूँ। सी, उनके फेस से साफ झलक रहा था कि
14: watching NDTV. I'm Gargi Rawat. The man accused of the hit and run in Gurugram, Kalyan Besla, who knocked down a woman motorcycle driver, has finally been arrested. He was arrested from Rajasthan. And now the Haryana State Commission for Women has also intervened in this matter. We'll bring you all those details. First, a look at the headlines we're tracking. 2 days after he rammed a vehicle into a woman biker, Thug Kalyan Besla, arrested from Rajasthan, faces attempt to murder charge. Biker Sia speaks to NDTV, recounts the hit and run horror, calls it an attempt to murder, says she was hit deliberately, thanks NDTV for standing by her. Two DMK leaders booked by Tamil Nadu cops, Sekar Babu booked for remarks against Chief Minister Vijay. A Raja booked for anti-CTR remarks, the DMK lashes out. Actor Vijay Sethupathi's remarks in a Big Boss stokes a row. Sethupathi spoke about a leader, saying leadership doesn't mean attacking rivals. Vijay fans target Sethupathi, DMK slams Vijay supporters. And amid the AI slowdown call, Google DeepMind AGI researcher resigns. He warns that artificial intelligence could kill us all, says humanity may be running out of time.

0: ट्रॉमाटाइज हूँ उस इंसिडेंट के बाद।
1: मेंटली क्या आपके मेंटल इंजरीज के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना समय लगेगा बिफोर यू गेट बैक ऑन योर बाइक? आपका बाइकिंग बाइकिंग जर्नी कब कंटिन्यू होगा?
0: मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम लगता है वापस उस स्टेट पे आने के लिए, क्योंकि कोई इंसिडेंट जब सड़क पे होता है, कोई हिट करके जाता है, तो वो बैक टू बैक आपके माइंड में चलता है, तो मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी।
1: सिया, मुझे पता है कि उस दिन से लेकर अब तक बहुत लोगों ने आपसे पूछा है कि क्या हुआ, लेकिन NDTV पर लोग जानना चाहते हैं सिया से कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, कैसे शुरू हुआ था? आप बाइक पर चल रहे थे, ये गाड़ी आ गई थी आपके सामने, क्या बातचीत हुई? डिटेल में बताइए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे हुआ था ये?
0: तो जैसे मेरा वीडियो में था एज इट इज सेम हुआ था, कोई उसमें कोई भी ऐसे कुछ अलग नहीं हुआ। वो गाड़ी मेरे साइड में आई, वो मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसमें गाड़ी में 4 लोग थे और दिख रहा था उन लोगों ने दारू वारू पी रखी है कुछ, तो उस चीज से मैं और ज्यादा डर जाती हूँ। और वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी मेरे बाइक के पास लाते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप दूर हो जाइए। तो इसी रीजन से मैं थोड़ा अपना बाइक आगे बढ़ाती हूँ कि भाई वो मुझे हिट ना करे, पर जहाँ मेरी बाइक स्लो होती है वो पीछे से इतनी तेज अपनी गाड़ी लेके आते हैं और इंटेंशनली मुझे हिट करते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं, और फिर वो वहां से मार के भी भाग जाते हैं।
1: जब जब आ, आ, वो कोलिजन हुआ था आसिया, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग ये कर सकते हैं? आपके पीछे था ये गाड़ी, आपने कुछ शब्द बोले थे, उन्होंने भी धमकी दिया आपको, उसके बाद क्या आपने एक्सपेक्ट किया कि ऐसे हो सकता है कि आपको आके डैश करेंगे ऐसे?
0: नहीं नहीं देखिए, जब हेलमेट होता है, हेलमेट में हम कुछ बोलते हैं तो आवाज वो सुनाई नहीं दे पाएगी उनको, पर मैं उनके एक्शन समझ रही थी, तब भी मैंने अपने हाथ से एक्शन करा, और जिस तरीके से उनका बिहेवियर लग रहा था तो इसी वजह से मैं डर रही थी। एंड वही चीज हुआ कि जिस चीज का मुझे डर था उन्होंने पीछे से आके मुझे ठोका और मुझे सड़क पे गिरा के वो भाग गए।
1: वो 1-2 सेकंड में वो आके आपको डैश किया सिया, वो पूरा वीडियो आपके मोटरसाइकिल के कैमरा पे बिल्कुल क्लियरली कैप्चर हुआ है। उस मोमेंट को डिस्क्राइब करिए, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड बाइकर हैं, आप लगातार बाइकिंग जर्नी पर हैं। जब वो कोलिजन हुआ था, जब उन्होंने आपको आके डैश किया, आपके मन में क्या हुआ, कैसे आपने महसूस किया?
0: बस जब उन्होंने मुझे मारा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया एंड मैं एकदम ब्लैंक हो गई। आई वाज शॉक्ड एंड ट्रॉमाटाइज्ड एंड उसके बाद मैं कुछ नहीं सोच पाई। अच्छा,
1: व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट सिया जी? व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट, आफ्टर यू फेल फ्रॉम द बाइक? गिरने के बाद इमीडिएटली क्या हुआ था?
0: बेसिकली उसके बाद कुछ नहीं, कुछ लोग आए, उन्होंने वो मुझे उठा के लेके गए एंड मेडिकल केयर मैंने थोड़ा करा, उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस गई।
1: और ये कल्याण बैसला जो है सिया, 2 दिन के बाद डिटेन हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? 2 दिन के बाद, 2 दिन
0: काफी लेट एक्शन हुआ है, एक्शन काफी जल्दी होना चाहिए था, डिटेल सबके पास थी, तो हाँ ये एक्शन काफी लेट हुआ है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था।
1: सिया, आपने बताया कि आप मेंटली भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे कि आप किस लिए ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्यों ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ये जानना चाहेंगे हम?
0: देखो ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लेडी बाइकर, कोई भी महिला ट्रॉमेटाइज हो सकती है, या कोई भी मेल बाइकर, कोई भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली ये चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरे चलेगी।
1: और ये क्या एक जेंडर इशू है मैडम? गाड़ी में जब लोग जा रहे हैं, वो अल्कोहल पी रखी है, जब वो देखते हैं कि एक लड़की बाइक चला रही है स्पीड से, ये एक जेंडर इशू भी है, मेल ईगो भी है इसमें?
0: ये मेल ईगो भी है एंड ये जेंडर इशू भी है, लोग लेडी बाइकर को देख के बहुत चेस करते हैं और उनको छेड़ने की भी कोशिश करते हैं। सो ये एक इंसिडेंट था जो मेरा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, आई होप आप सबने भी देखा।
1: यू हैव हर्ड what she has said. She said it's going to take a while for her to get back on her bike and continue her biking journey. She's a passionate biker. She has injuries, and very important to hear what she said, that she's got physical injuries. She's not so worried about them. It is the trauma of what happened that is going to stay with her, and it may take some time for her.

0: to get back on her bike. That is the impact of what has happened.
1: 90TV also spoke with Kalyan Besla's lawyer, and he outrageously outright blamed Sia for the hit and run, claiming that Kalyan was provoked by her. Listen into what he said.
2: I have the advocate, Mr. Naveen Besla, on the phone line with me. He's representing Kalyan Besla. Naveen ji, aap se puchna hai, your client has been detained. Is this a detention or an arrest? Can you confirm to us?
3: पूरा किसी अपने नॉन से पता लगाया कि उसको दोसा से अरेस्ट कर लिया है. बाकी अभी क्लियर कुछ नहीं है. बाकी मैं गुड़गावा कोर्ट जाके या गुड़गावा थाना जाके अभी क्लियर करता हूं कि वो अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ, जो भी है वो बताता हूं आपको.
2: नवीन जी, देयर इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज आल्सो अगेंस्ट योर क्लाइंट. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट?
3: हमारे क्लाइंट की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. एक्चुअली ये राइडर्स बहुत तेज स्पीड चला रहे थे बाइकों को, उनकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है. हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है.
2: आपके क्लाइंट ने रोका क्यों नहीं गाड़ी फिर उनको हेल्प करने के लिए?
3: मैम, 25 से 30 लड़के थे आपस में, राइडर थे.
2: कोई तो दिख नहीं रहा था वीडियो में नवीन जी?
3: मैम, वीडियो तो लड़के इनके पास है ना, राइडरों के पास है. ये प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं दे रहे? सारी
2: प्रॉपर वीडियो, चार वीडियोज है सर.
3: मैम, ये एडिटिंग वीडियो है, ये प्लांटेड वीडियो है. ये उन्होंने अपने हिसाब से अपने तरह तैयार करके रख दी.
2: नवीन जी, यू नो द लॉ बेटर देन आई डू. होपफुली देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग अ गुड समैरिटन. इफ योर क्लाइंट इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, व्हिच इज सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट गिवन द एविडेंस माउंटिंग अगेंस्ट हिम. मेरा प्रश्न ये है आपके लिए, उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात. उन्होंने सिया को गाड़ी में क्यों नहीं लिया और हॉस्पिटल क्यों नहीं गए उनके साथ?
3: एक्चुअली ये मैम, इसको मॉब लिंचिंग का डर था. इसको ये डर था कि ये 28-30 जने मुझको मारना दे, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये.
2: ये तो आप सिया की कहानी हमें बोल रही है. दिस साउंड्स मोर लाइक योर सिया'स काउंसिल देन द काउंसिल ऑफ कल्याण बेसला सर. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी वेंट थ्रू. नवीन जी,
3: मैम स्टोरी एक्चुअली क्या होता है मैम, संख्या में ये ज्यादा, राइडर ये ज्यादा, स्पीड इनकी ज्यादा, 160 तक 180 तक स्पीड चला रहे हैं इनकी. मैंने और भी वीडियो देखे.
2: एक औरत, चार लोग हैं गाड़ी में, फोर व्हीलर में, और आप बोल रहे हैं कि आपके क्लाइंट विक्टिम है.
3: मेरे क्लाइंट विक्टिम है, रियल में ही विक्टिम है मेरे.
2: मुझे समझाइए कैसे. इज द वीडियो फुटेज लाइंग? नवीन जी, इज द वीडियो फुटेज लाइंग?
3: कौन परमिशन देता है इन राइडरों को? कौन परमिशन देता है कि आप एक रोड को घेर के चलोगे, आप एक रोड को स्टंट के लिए यूज करोगे, एक रोड को स्पीड के लिए यूज करोगे? आप किस किस की जान के खतरे को अपने मोल ले रहे हो मैडम आपकी?
2: सो मिस्टर नवीन, व्हाट यू आर सेइंग इज सीआई इज लाइंग, द पुलिस इज लाइंग, द सुओ मोटो केस फाइल्ड बाय द पुलिस इज अ शैम. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस?
3: पुलिस का नहीं, मैं पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कह रहा. पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. पुलिस इसमें फेयर इंक्वायरी करेगी और पुलिस इसमें जो भी करेगी हम उसको सामने उसका फेस करेंगे. कोई इशू नहीं है हमें.
2: मिस्टर नवीन, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट यू से दिस, बट बिफोर यू गो आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू कुड एक्सप्लेन द वीडियो फुटेज वी आर सीइंग ऑन आवर स्क्रीन्स, द डैश कैम फुटेज. यू एक्सप्लेन इट टू अस सर.
3: मैंने वो वीडियो चार बार देखी जो सिया की तरफ से है. मैंने उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है ये लड़की बहुत हाई स्पीड में, वो लड़का पीछे से आया, उसको एक यू टर्न दिखा, यू टर्न से वो बचने के लिए उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसकी वजह से ये नेगलिजेंस पार्ट पे ये एक्सीडेंट हुआ है.
2: तो फिर वो कॉन्वर्सेशन क्या था, जो वार्तालाप हुआ था व्हाइल दे वर इन द कार, वो जब गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने सिया से क्या बोला था?
3: वो इसे प्रोवोक कर रहे थे, वो इसे बार बार हरास कर रहे थे, बार बार आगे पीछे निकालने के लिए इसको एक कहते मैनिपुलेट कर रहे थे कि ये हमसे कुछ उल्टा बोले. इसने कुछ नहीं बोला, इसने बल्कि ये बोला कि आप अच्छी बाइक चलाते हो, आप सेफ हो, आप आराम से चलाओ.
2: और फिर उन्होंने ठोक दिया सिया को उसके बाद और भाग गए वहाँ से.
3: इन्होंने नहीं ठोका मैम, इन्होंने
2: सर किसने ठोका? वीडियो फुटेज तो है वहाँ पे
3: मैम, देख ली मैम. आप प्रॉपर देखो ना, वो
2: मैं प्रॉपर ही देख रही हूँ नवीन जी.
3: मैं भी देख रहा हूँ मैम, मैंने चार बार देखी मैम वीडियो. प्रॉपर उसने अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया फुटपाथ से, एक गाड़ी और थी.
2: अच्छा, तो अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया नवीन जी, तो उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं देख के कि सिया गिर गई है?
3: इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए इसने नहीं रोका. उसने बताया भाई ये 28-30 राइडर थे.
2: तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज तो लगना चाहिए है ना?
3: नहीं क्यों लगेगा मैम, क्यों अटेंड टू मैं
2: क्योंकि आपने गाड़ी मारी है वहाँ से आप भाग गए हैं।
3: मैं तो ये कहूँगा कि कार्रवाई इन ड्राइवरों पे होनी चाहिए सारी, इनकी गलती
2: एग्जैक्टली इन ड्राइवरों पे होनी चाहिए, आपके क्लाइंट पे होनी चाहिए।
3: बाइक राइडरों पे ये कोर्ट की और क्या नाम है कोई भी पुलिस की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, ये अपनी मनमानी से स्टंट करते हैं, ये अपने मनमानी से स्पीड चलाते हैं।
2: आपके क्लाइंट फिर व्हाई इज ही हाइडिंग, वो छुप क्यों गए उसके बाद?
3: वो एक्चुअली डर की वजह से छुपा पड़ा है कि ये छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया, बल्कि वो निर्दोष है।
2: Mr. Naveen, it's laughable really that you say this, but thank you for speaking to NDTV. Out here you have the man who has hit Sia and run away from the spot playing the victim card. And the survivor of this hit and run is the one who has come forward, identified herself, made it clear that she is the one who was the survivor of this hit and run and even furnished evidence to the police. The story is quite clear. Thank you for joining us on NDTV.
1: All right, and moving on to another hit and run case, which is in Faridabad, also in the National Capital Region. An update in the Faridabad SUV Thar incident in which a man died on Friday. The accused fled from the spot and he was arrested 3 days later and subsequently granted bail. Khushi and Kritika have issued a video statement. It was their father who was killed.

0: We demand answers.
1: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
2: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
3: Marne se bada kya hoga?
2: As a journalist, I can say you're not alone.
1: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
4: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
5: So many attacks.
4: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
5: It's incredible.
4: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
5: Welcome to Left, Right, and Center.
4: Hard facts.
5: War struck country.
4: Hard
5: country.
4: Questions.
5: In the Ukraine.
4: 30 years of trust.
6: Welcome back. Well, let's go across to where the Haryana police are addressing a press conference. Police officer Sandeep Kumar is speaking. Let's listen in. This is on the hit and run case that took place in Gurugram.
7: Photo आई हुई थी, उसके आधार पे उसकी सर्च की गई और सर्च करके पता लगा कि वो पलवल का एक व्यक्ति है, जिसको कि फिर पुलिस की अलग-अलग टीमें, तीन टीमें गठित की गई इसमें और तीनों टीमों ने इस पे रात भर कार्य किया और उसको आज दोसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो घटना के दौरान उसके साथ ही मौजूद था।
8: उसकी क्या कुछ भूमिका निकल के आई है लविश के नाम की?
7: अभी उसकी भूमिका की जांच चल रही है, लेकिन ये है कि वो उसके साथ था घटना के दौरान और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो आपको इसके बारे में फिर से बताया जाएगा।
9: सर, अभी तक की पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया है कि किस तरीके से उसके आर्गुमेंट्स हुई थी, क्या पूरा इंसिडेंट हुआ था?
7: अभी इतनी डिटेल पूछताछ नहीं हुई है अभी तो, क्योंकि वीडियो में वो दिख ही रहा है, उसका कृत्य जो है वो सबके सामने है, तो उसके आधार पे ही उसको पकड़ा गया है और उसके अभी आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसको अदालत में पेश करके उसका रिमांड लिया जाएगा और उसके दौरान उससे पूरी पूछताछ की जाएगी।
8: कल शाम
7: तक हाँ, ये डिस्टेंट कजन्स हैं।
10: विक्टिम ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला है, इनिशिएशन किनके तरफ से हुआ था, क्या जो अक्यूज्ड है उनके तरफ से कुछ कन्वर्सेशन स्ट्राइक करने की कोशिश की गई थी या फिर कोई इनडिसेंट जेस्चर हुआ था इनके तरफ से?
7: जी हाँ, विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे, तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNSB ईजाद की है इसमें, और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है।
8: सर, अटैम्प्ट मर्डर लगाया गया विक्टिम को, अटैम्प्ट मर्डर लगाया गया,
10: अब्यूज भी किया था, विक्टिम को
7: देखिए उसने कुछ कमेंट पास किया है तो वो अब अदर कमेंट है, उसमें आप अब अब्यूजिव कह सकते हैं उसे,
10: ऑब्सीन कमेंट लिख सकते हैं।
7: जी
9: सर, एक गाड़ी कैसी रिमांड ले रहे हैं? सर, एक गाड़ी किसकी थी, आरोपी उस दिन कहाँ जा रहा था और उसके बाद कहाँ फरार हुआ था?
7: ये गाड़ी उसके एक मित्र की है जो कि उसने यूज करने के लिए ली थी और उसके बाद ये अलग अलग जगह होता हुआ राजस्थान के दोसा के पास से इसको गिरफ्तार किया गया है।
8: कल शाम को ये पलवल में था, गुड़गांव पुलिस की लग टीम लगातार रेड कर रही थी, कैसे ये राजस्थान पहुंचा, किसके साथ ये पहुंचा और राजस्थान में किसके पास है
9: और क्या उसी गाड़ी इंटरव्यूज भी चल रही थी सर,
7: कैसे क्या गया? जैसे ही ये मीडिया में वायरल हुआ तो इसने तुरंत अपने बचाव में मीडिया में एक इंटरव्यू दिया, इसने उसको नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की और उसके बाद ये अपने फ़ोन वोन बंद करके वहाँ से खिसक गया था।
8: प्रोफाइल क्या है सर इसका, आरोपी का प्रोफाइल क्या कुछ है?
7: ये एक जिम संचालक भी है और साथ में कुछ प्रॉपर्टी के वगैरह का काम भी करता है।
10: लविश क्या करते हैं जो इसके कजन हैं?
11: कहाँ से हैं सर?
7: उसके बारे में अभी तफ्तीश की जा रही
11: है।
10: ये जो एक्यूज अभी अरेस्ट हुए हैं, स्पेशली मिस्टर कल्याण बैंसला, 48 आवर्स इंसिडेंट का उससे ज़्यादा हो चुका है, इनका मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल टेस्ट वगैरह या ब्लड सैंपल वगैरह कुछ किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और क्या उसमें कुछ अल्कोहल, ब्लड अल्कोहल की आने की पॉसिबिलिटी है?
7: देखिएगा, जो पुलिस के संज्ञान में है ये कल ही आया है और आते ही पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वीडियो के माध्यम से तुरंत इसमें कार्रवाई की है और उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, इसका मेडिकल वगैरह सब कुछ करवाया जाएगा, तो आगे जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव से तो ज़्यादा संज्ञान है इस अपराध में, जो ये धाराएं हैं वो ज़्यादा संगीन हैं, जो 307 हैं वो।
0: सर मैंने बंद लगाई हुई है, इसके बारे में बताइए सर, ये प्रथम दृष्टि आपको देखने में लग रहा है अटेम्प्ट टू मर्डर है, या एक मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है?
7: नहीं, ये क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की है।
0: क्योंकि सर उनकी कंप्लेंट जो है वो तो बुकार फ्लैट थी, उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी।
7: नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई गई।
10: पुलिस इसको कोर्ट में एस्टैब्लिश कर पाएगी कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, बिकॉज विक्टिम को कोई ऐसी फैटल इंजरी अभी तक उस तरह की?
7: देखिए, हम सिर्फ इंजरी, उसने सेफ्टी गियर वगैरह पहना हुआ था, वो उनकी किस्मत है, बाकी जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है अपनी तरफ से, मतलब उनकी नियत जो थी, इंटेंट जो उसके पीछे था वो उनसे उनको मारने का ही था।
0: इंटेंशन थी मतलब?
7: जी,
0: अभी
7: 2 दिन का हम मांग रहे हैं, बाकी जैसे अदालत के आदेश होंगे तो उसको पालन।
0: तो क्या एज क्या है इन दोनों की?
7: अप्रोक्सीमेटली 35 के अराउंड है। देखिए, वो आपको डिटेल दे दी जाएगी, पूरा एक प्रेस नोट अलग से जारी कर देंगे हम, उसमें पूरी डिटेल है।
0: सर आज ही पेश करेंगे?
7: हाँ, आज ही पेश करेंगे।
0: सर ये जॉइंट ऑपरेशन था राजस्थान पुलिस का था, हम लोग
7: नहीं, ये हरियाणा पुलिस का था, लेकिन क्योंकि जो मानक हैं और जो अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसीजर हमने राजस्थान से गिरफ्तार किया, तो राजस्थान पुलिस को हमने इंटीमेट किया है इस बारे में, और वहाँ पे जो कंसर्न थाना है वहाँ पे सूचित किया गया।
10: संदीप जी, लास्ट 2 क्वेश्चन, जिस वक्त इंसिडेंट हुआ उस वक्त गाड़ी में टोटल कितने लोग थे, एंड ये गुड़गांव क्या पार्टी करने के लिए आए हुए थे या क्या?
7: देखिए, ये अभी तफ्तीश का विषय है तो इसके बारे में अभी कोई कमेंट करना उचित नहीं रहेगा, तो एक बार तफ्तीश थोड़ी आगे बढ़ेगी तो आपको अभी आपको अवगत करवा दिया जाएगा, अभी पूछताछ, क्योंकि बिल्कुल
0: क्लेम किया कि कजन सिस्टर भी थी, कजन भी थे,
7: जो अभी देखिएगा, ये तफ्तीश का विषय है, तो जैसे भी आगे बढ़ेगी तफ्तीश आपको अवगत करा दिया जाएगा।
0: ठीक है
6: सर। ऑल राइट, सो दैट वाज द पुलिस ब्रीफिंग ऑन द अरेस्ट ऑफ कल्याण बैसला। अ सेकंड पर्सन हैज आल्सो बीन अरेस्टेड, द पुलिस आल्सो यू नो रिवीलिंग that indeed it was an attempt to murder a case. They say that Besla deliberately swerved his car, that this is something they found after looking at the video, and it was an attempt to deliberately hit the bike. A second arrest has been made. We don't know the identity of the second person arrested. However, the police also revealing that Besla had made an obscene remark against Sia, who was riding the motorcycle. So that was a briefing by the police after the arrest of Kalyan Besla. Well, with that, we'll slip into a short break. More news on the other side. Stay with us.

0: And a top focus on the show today in a big NDTV impact. Kalyan Besla has now been arrested. That's after more than 50 hours on the run. Besla had allegedly fled the scene immediately after the road rage crash involving biker Sia, which triggered a major police hunt across multiple locations. Kalyan Besla, accused in an attempt to murder case, was brought to Gurugram. Visuals show Besla with a car, his hand bandaged as he kneels before the vehicle. Gurugram police has added an attempted murder charge as well, with the offence carrying up to 10 years in prison. Five teams were formed to track Besla while police scan CCTV footage from Golf Course Road. Meanwhile, speaking exclusively to NDTV, he alleged that Besla's arrest was delayed and accused him of being drunk, deliberately hitting her and fleeing the spot without stopping. Well, she says that she was terrified and shaking after the incident, but is grateful that the entire episode was captured on camera.
1: क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की है।
2: सर उनकी कंप्लेंट जो है वो तो भोपाल फ्लैट थी उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी।
1: नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई। विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNSB इजाद की है इसमें और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है। दिनांक 14/9/26 को कल एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल किया था साइड से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें उस महिला के को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है और वो जो बाइक पे लगा हुआ कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस संबंध में जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद उसकी आरोपी की जो थोड़ी सी एक फ़ोटो आई हुई थी उसके आधार पे उसकी सर्च की गई और सर्च करके पता लगा कि वो पलवल का एक व्यक्ति है जिसको कि फिर पुलिस की अलग अलग टीमें तीन टीमें गठित की गई इसमें और तीनों टीमों ने इस पर रात भर कार्य किया और उसको आज दोसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो घटना के दौरान उसके साथ ही मौजूद था।
0: And Sia has spoken exclusively to NDTV for the first time since the incident. Let's listen in to what she had to say about the whole ordeal and the arrest of Kalyan Besla.
3: In her first television interview since that terrible incident where Sia was thrown off her bike, she joins me live today on NDTV. Sia, NDTV par aapka swagat hai. सब कुछ रहने देते हैं, पहले हम जानना चाहते हैं सिया, आप कैसे हैं, आपका हालत, आपका हेल्थ कैसा है, अभी आपके इंजरीज कैसे हैं, वो जानना चाहते हैं हम। अभी पहले बताइए।
4: मेरे पास उस टाइम पे मेरे राइडिंग शूज ग्लास थे तो उससे मुझे बहुत बचाव हुआ है पर स्टिल काफी जगह गुम चोट आई है, नीज पे, एल्बोज पे एंड फिजिकली से ज्यादा मैं मेंटली बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज हूँ उस इंसिडेंट के बाद।
3: मेंटली आपके मेंटल इंजरीज के बारे में मैं बात करूंगा लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना समय लगेगा बिफोर यू गेट बैक ऑन योर बाइक, आपका बाइकिंग जर्नी कब कंटिन्यू होगा?
4: मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम लगता है वापस उस स्टेट पे आने के लिए क्योंकि कोई इंसिडेंट जब सड़क पे होता है, कोई हिट करके जाता है तो वो बैक टू बैक आपके माइंड में चलता है तो मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगेगा अभी।
3: सिया, मुझे पता है कि उस दिन से लेकर अब तक बहुत लोगों ने आपसे पूछा है कि क्या हुआ लेकिन NDTV पर लोग जानना चाहते हैं सिया से कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, कैसे शुरू हुआ था, आप बाइक पर चल रहे थे, ये गाड़ी आ गई थी आपके सामने, क्या बातचीत हुई, डिटेल में बताइए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हुआ था ये।
4: तो जैसे मेरा वीडियो में था एज इट इज सेम हुआ था, कोई उसमें कोई भी ऐसे कुछ अलग नहीं हुआ। वो गाड़ी मेरे साइड में आई, वो मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे. उसमें गाड़ी में 4 लोग थे और दिख रहा था उन लोगों ने दारू वारू पी रखी है कुछ. तो उस चीज से मैं और ज्यादा डर जाती हूँ और वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी मेरे बाइक के पास लाते हैं. मैं उनको बोलती हूँ आप दूर हो जाइए. तो इसी रीजन से मैं थोड़ा अपना बाइक आगे बढ़ाती हूँ कि भाई वो मुझे हिट ना करे. पर जहां मेरी बाइक स्लो होती है वो पीछे से इतनी तेज अपनी गाड़ी लेके आते हैं और इंटेंशनली मुझे हिट करते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं और फिर वो वहां से मार के भी भाग जाते हैं.
3: जब जब वो कोलिजन हुआ था सिया, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग ये कर सकते हैं? आपके पीछे था ये गाड़ी, आपने कुछ शब्द बोले थे, उन्होंने भी धमकी दिया आपको, उसके बाद क्या आपने एक्सपेक्ट किया कि ऐसे हो सकता है कि आपको आके डैश करेंगे ऐसे?
4: नहीं नहीं, देखिए जब हेलमेट होता है, हेलमेट में हम कुछ बोलते हैं तो आवाज वो सुनाई नहीं दे पाएगी उनको. पर मैं उनके एक्शन समझ रही थी तब भी मैंने अपने हाथ से एक्शन करा और जिस तरीके से उनका बिहेवियर लग रहा था तो इसी वजह से मैं डर रही थी. एंड वही चीज हुआ कि जिस चीज का मुझे डर था उन्होंने पीछे से आके मुझे ठोका और मुझे सड़क पे गिरा के वो भाग गए.
3: वो 1-2 सेकंड में वो आके आपको डैश किया सिया, वो पूरा वीडियो आपके मोटरसाइकिल की कैमरा पे बिल्कुल क्लियरली कैप्चर हुआ है. उस मोमेंट को डिस्क्राइब करिए क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड बाइकर हैं, आप लगातार बाइकिंग जर्नी पर हैं. जब वो कोलिजन हुआ था, जब उन्होंने आपको आके डैश किया, आपके मन में क्या हुआ, कैसे आपने महसूस किया?
4: बस जब उन्होंने मुझे मारा मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया एंड मैं एकदम ब्लैंक हो गई. आई वाज शॉक्ड एंड ट्रॉमाटाइज्ड एंड उसके बाद मैं कुछ नहीं सोच पाई. अच्छा,
3: व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट सिया जी? व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर दैट, आफ्टर यू फेल फ्रॉम द बाइक? गिरने के बाद इमीडिएटली क्या हुआ था?
4: बेसिकली उसके बाद कुछ नहीं, कुछ लोग आए, उन्होंने वो मुझे उठा के लेके गए एंड मेडिकल केयर मैंने थोड़ा करा. उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस आई.
3: और ये कल्याण बैसला जो है सिया, 2 दिन के बाद डिटेन हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? 2 दिन के बाद, 2 दिन
4: काफी लेट एक्शन हुआ है, एक्शन काफी जल्दी होना चाहिए था, डिटेल सबके पास थी. तो हाँ, ये एक्शन काफी लेट हुआ है, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था.
3: सिया, आपने बताया कि आपकी आप मेंटली भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे कि आप किस लिए ट्रॉमेटाइज्ड हैं, क्यों ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ये जानना चाहेंगे हम.
4: देखो, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सिर्फ मैं नहीं, कोई भी लेडी बाइकर, कोई भी महिला ट्रॉमेटाइज हो सकती है या कोई भी मेल बाइकर, कोई भी हो सकता है. तो ऑब्वियसली ये चीज बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरे चलेगी.
3: और ये क्या एक जेंडर इशू है मैडम? गाड़ी में जब लोग जा रहे हैं, वो अल्कोहल पी रखी है, जब वो देखते हैं कि एक लड़की बाइक चला रही है स्पीड से, ये एक जेंडर इशू भी है, मेल ईगो भी है इसमें?
4: ये मेल ईगो भी है एंड ये जेंडर इशू भी है. लोग लेडी बाइकर को देख के बहुत चेस करते हैं और उनको छेड़ने की भी कोशिश करते हैं. So, ये एक इंसिडेंट था जो मेरा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, आई होप आप सबने भी देखा.
3: You've heard what she has said. She said it's going to take a while for her to get back on her bike and continue her biking journey. She's a passionate biker. She has injuries and very important to hear what she said, that she's got physical injuries, she's not so worried about them. It is the trauma of what happened that is going to stay with her and it may take some time for her to get back on her bike. That is the impact of what has happened.
0: Meanwhile, NDTV also spoke to Kalyan Besla's lawyer, who outright blamed Sia for the hit and run, claiming that Kalyan was provoked by her. Take a look.
5: I have the advocate, Mr. Naveen Besla, on the phone line with me. He's representing Kalyan Besla. Naveen ji, aap se puchna hai, your client has been detained. Is this a detention or an arrest? Can you confirm to us?
6: पूरा किसी अपने नॉन से पता लगाया कि उसको 2 साल से अरेस्ट कर लिया है. बाकी अभी क्लियर कुछ नहीं है. बाकी मैं गुड़गांव कोर्ट जाके, गुड़गांव थाना जाके अभी क्लियर करता हूँ कि वो अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ, जो भी है वो बताता हूँ आपको.
5: नवीन जी, there is an attempt to murder charge also against your client. What do you have to say about that?
6: हमारे क्लाइंट की इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. एक्चुअली ये राइडर बहुत तेज स्पीड चला रहे थे बाइकों को, उनकी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है. हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है.
5: आपके क्लाइंट ने रोका क्यों नहीं? अपनी गाड़ी फिर उनको हेल्प करने के लिए?
6: मैम मोबिलिटी के 25 से 30 लड़के थे, आपस में राइडर थे,
5: कोई तो दिख नहीं रहा था वीडियो में नवीन जी।
6: मैम वीडियो तो लड़के इनके पास है ना, राइडरों के पास है, ये प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं दे रहे सारी
5: प्रॉपर वीडियो? चार चार वीडियोज है सर।
6: मैम ये ना एडिटिंग वीडियो है, ये प्लांटेड वीडियो है, ये उन्होंने अपने हिसाब से अपने तरह तैयार करके रख दी।
5: नवीन जी यू नो द लॉ बेटर देन आई डू होपफुली। देयर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग अ गुड समैरिटन। इफ योर क्लाइंट इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड व्हिच इज सरप्राइजिंग एट दिस पॉइंट गिवन द एविडेंस माउंटिंग अगेंस्ट हिम, मेरा प्रश्न ये है आपके लिए, उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं? नहीं नहीं आप सुनिए मेरी बात, उन्होंने सिया को गाड़ी में क्यों नहीं लिया और हॉस्पिटल क्यों नहीं गए उनके साथ?
6: एक्चुअली ये मैम इसको मोबाइल इंसिंग का डर था, इसको ये डर था कि ये 38 जने मुझको मारना दे, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ये
5: तो आप सिया की कहानी हमें बोल रही है। दिस साउंड्स मोर लाइक योर सिया'स काउंसिल देन द काउंसिल ऑफ कल्याण बैसला सर। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी वेंट थ्रू नवीन जी।
6: मैम स्टोरी एक्चुअली क्या होता है मैम, संख्या में ये ज्यादा, राइडर ये ज्यादा, स्पीड इनकी ज्यादा, 160 तक 180 तक स्पीड चला रहे हैं इनकी, मैंने और भी वीडियो देखे।
5: एक औरत चार लोग हैं गाड़ी में, फोर व्हीलर में, और आप बोल रहे हैं कि आपके क्लाइंट विक्टिम है?
6: मेरे क्लाइंट विक्टिम है, रियल में विक्टिम है मेरे।
5: मुझे समझाइए कैसे है, इज द वीडियो फुटेज लाइंग? नवीन जी इज द वीडियो फुटेज लाइंग?
6: परमिशन देता है इन राइडरों को कौन परमिशन देता है कि आप एक रोड को घेर के चलोगे, आप एक रोड को स्टंट के लिए यूज करोगे, एक रोड को स्पीड के लिए यूज करोगे, आप किस किस की जान के खतरे को अपने मोल ले रहे हो? बनवा की
5: सो मिस्टर नवीन व्हाट यू आर सेइंग इज सीआई इज लाइंग, द पुलिस इज लाइंग, द सुओ मोटो केस फाइल बाय द पुलिस इज अ शैम, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल अस?
6: पुलिस का नहीं, मैं पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कह रहा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इसमें फेयर इंक्वायरी करेगी और पुलिस इसमें जो भी करेगी हम उसको सामने उसका फेस करेंगे, कोई इशू नहीं हमें।
5: मिस्टर नवीन इट्स अनफॉर्चुनेट दैट यू से दिस बट बिफोर यू गो आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ यू कुड एक्सप्लेन द वीडियो फुटेज वी आर सीइंग ऑन आवर स्क्रीन्स, द डैश कैम फुटेज, यू एक्सप्लेन इट टू अस सर।
6: मैंने वो वीडियो चार बार देखी जो सिया की तरफ से है, मैंने उसमें वीडियो में साफ दिख रहा है ये लड़की बहुत हाई स्पीड में, वो लड़का पीछे से आया, उसको एक यू टर्न दिखा, यू टर्न से वो बचने के लिए उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसकी वजह से ये नेगलिजेंस पार्ट पे ये एक्सीडेंट हुआ है।
5: तो फिर वो कॉन्वर्सेशन क्या था, जो वार्तालाप हुआ था व्हाइल दे वर इन द कार, वो जब गाड़ी चला रहे थे उन्होंने सिया से क्या बोला था?
6: वो इसे प्रोवोक कर रहे थे, वो इसे बार बार हरास कर रहे थे, बार बार आगे पीछे निकालने के लिए इसको एक कहते मैनिपुलेट कर रहे थे कि ये हमसे कुछ उल्टा बोले। इसने कुछ नहीं बोला, इसने बल्कि ये बोला कि आप अच्छी बाइक चलाते हो, आप सेफ हो, आप आराम से चलाओ।
5: और फिर उन्होंने ठोक दिया सिया को उसके बाद और भाग गए वहाँ से।
6: इन्होंने नहीं ठोका मैम, इन्होंने
5: सर किसने ठोका? वीडियो फुटेज तो है वहाँ पे
6: मैम, देख ली मैम, आप प्रॉपर देखो ना, वो
5: मैं प्रॉपर ही देख रही हूँ नवीन जी,
6: मैं भी देख रहा हूँ मैम, मैंने चार बार देखी मैम वीडियो, वो प्रॉपर उसने अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया फुटपाथ से, एक गाड़ी और थी।
5: अच्छा तो अपने आप को बचाने के लिए लेफ्ट लिया नवीन जी, तो उन्होंने गाड़ी रोका क्यों नहीं देख के कि सिया गिर गई है?
6: इसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए इसने नहीं रोका, उसने बताया भाई ये 28-30 राइडर थे।
5: तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज तो लगना चाहिए है ना?
6: नहीं क्यों लगेगा मैम, क्यों अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज लगेगा?
5: क्योंकि आपने गाड़ी मारी है वहाँ से आप भाग गए।
6: मैं तो ये कहूंगा कि कार्रवाई इन राइडरों पे होनी चाहिए सारी, इनकी गलती
5: एग्जैक्टली इन ड्राइवरों पे होनी चाहिए, आपके क्लाइंट पे होनी चाहिए,
6: बाइक राइडरों पे ये कोर्ट की और क्या नाम है कोई भी पुलिस की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, ये अपने मनमानी से स्टंट करते हैं, ये अपने मनमानी से स्पीड चलाते हैं।
5: और फिर आपके क्लाइंट फिर व्हाई इज ही हाइडिंग, वो छुप क्यों गए उसके बाद?
6: वो एक्चुअली डर की वजह से छुपा पड़ा है कि ये छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया, बल्कि वो निर्दोष है।
5: Mr. Naveen, it's laughable really that you say this, but thank you for speaking to NDTV. Out here, you have the man who has hit Sia and run away from the spot playing the victim card. And the survivor of this hit and run is the one who has come forward, identified herself, made it clear that she is the one who was the survivor of this hit and run and even furnished evidence to the police. The story is quite clear. Thank you for joining us on NDTV.
0: All right, and joining us live now is Ishika Verma. She joined me live from Gurugram outside the court. Ishika, Kalyan Baisla has of course been arrested. It's the big NDTV impact right now. And there's also been an attempt to murder section in the FIR. Tell us more about the investigation, where it is headed to.
7: Well, Raisha, as you rightly mentioned, it is certainly a big NDTV impact. We have seen that today itself. It was the Gurugram police that in fact added the attempt to murder charges in the FIR, and that was certainly a primary demand of CR's family. So that was done, and after that certainly we saw how the Gurugram police arrested Kalyan Baisla from Rajasthan, and not just him, but there is a second arrest that was made in this particular case, and that was of Lavneesh Baisla, who the police have now gone on to say that he is a distant cousin of Kalyan Baisla, and he was present at that moment when this entire incident took place. What was his role in this particular case? All of that is currently under investigation. Now, we are currently, in fact, reporting outside the Gurugram court, where inside, certainly, the police is going to, produce him and then demand his custody. What we are getting to know from the police sources is that they are seeking a two-day custody, first of all, of Kalyan Baisla. Remains to be seen how many days they will be given. But apart from that, what is very, very important here, Raisha, is that police themselves have gone on to say that obscene comments were made. And that is something important, because we have since morning been telling our viewers that how Sia also in her statement had said that, indecent remarks were made at her. So police now have confirmed that, and apart from that, they have also gone on to say that there was an intent to potentially kill. So certainly a deliberate attempt of hit and run is what the police have also gone on to say in their press briefing. So these were certainly big statements that have now come in the case. Certainly big impact. Kalyan Baisla and Lavneesh Baisla both in fact have been arrested. We are waiting for them to be produced. Over to you.
0: Right, thanks Ishika for sharing those crucial insights here with us. Kalyan Baisla along with his friend have now been taken into custody. Let's now stay on with the story and telling you more about all that has happened. Now, Kalyan Baisla, who is accused of driving the Maruti CRS that allegedly hit the biker, describes himself online as an international kabaddi player. Not just that, also a member of the Indian rugby team. He also claimed to have won the Amateur Olympia India Bodybuilding Tournament. His Instagram is now deactivated, but before it disappeared, it offered a glimpse into the image of Baisla, which he has perhaps given it online. One dominated by bodybuilding fitness and muscle flexing photographs. The next report telling you more about the Haryana goon Kalyan Baisla.
8: Kalyan Baisla, a fitness enthusiast, bodybuilder, and according to his now deactivated Instagram profile, an international kabaddi player and member of the Indian rugby team. His profile also claimed he was a winner of the Amateur Olympia India Bodybuilding Tournament. His social media presence was clear. Post after post showed Baisla working out, posing and flexing his muscles. He also had a substantial following on Instagram. And then there's the other side, devotional, local music videos. One of them titled Uttarakhand Ka Maharaja. And now, his name is at the center of a road rage case in Gurugram. A woman biker is riding with a group when a confrontation allegedly begins with the occupants of a Maruti CRS. Her action camera records what happens next. She appears to be trying to get away, but the car follows. Then suddenly, the car veers right and it hits her motorcycle from the side and speeds away. The impact throws the biker onto the road. Cops identified Kalyan Baisla as a man allegedly involved in the incident. But what makes the case particularly striking is the contrast between the image Baisla projected online and the allegations now being investigated. Bureau Report, NDTV.
0: Shifting our focus to other news, two DMK leaders have now been booked by Tamil Nadu police as the political war with Chief Minister Vijay's government intensifies. Sekhar Babu has been booked over alleged objectionable remarks against Chief Minister Vijay. including his comment mocking Vijay as a chief minister who ran away. Meanwhile, DMK MP A. Raja, meanwhile, has been booked under 7 sections over alleged defamatory remarks against Minister CTR Nirmal Kumar. Raja had questioned the minister's comments on MK Stalin's MISA arrest and also made personal remarks about his parentage. The cases, they come amid escalating political attacks, with the DMK hitting back at the Vijay government. The party has defended its right to criticize the ruling party, accused the government of targeting the opposition, and slammed it over law and order as well. Take a listen to all the reactions coming in on this story.
9: ஐந்தாண்டுகள் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து சண்டை செய்த ஒரு மாவீரன் எங்கள் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் என்றால் அது மிகையாகாது. அன்று ஆளுநரை ஓடவிட்டார், இன்று ஓடு ஓடு என்று மேடையிலே ஓடி ஓடி காட்டிக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜயை அவரின் அருந்தவ புதல்வன் எங்கள் ஆருயிர் அண்ணன் வருங்கால தமிழகம் உதயநிதி அவர்கள் ஓடவிட்டார்.
10: ராகுல் காந்தி இருக்காரு, பிரியங்கா காந்தி அவையில் இருக்கு, பிஜேபி தலைவர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க, அடிமட்ட ராஜ்நாத் உட்கார்ந்துருக்காரு. இவங்களுக்கெல்லாம் எமர்ஜென்சி தெரியாதான், விசா பத்தி தெரியாதா? இப்ப ஒருத்த இவர் அதற்காக போகவில்லை, இதற்காக போகவில்லை, எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு. நீ யாருக்கு பிறந்த? When you are doubting the integrity of my leader, who is having lot of records, it is widely accepted by all leaders in India. Am I not entitled to say I am doubting your paternity? Fight against! Fight against! Nonsense. இந்த தருவல கூட்டத்துக்கு ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு தலைவர் தாரை எப்படிங்கிறது கைகால் ஆட்டத்துக்கு நீ வந்த கைகால் ஆட்டம் இறந்த முதல் கொடுத்த அப்புறம் எங்க வந்த நீ?
11: There are two things. One is, people are watching. I really don't have to respond to what he said because you have played the whole thing, what he said. Who is unruly? Who is a mob? Who talks like this? People are watching it. And that's the only answer. I think I don't have to be the judge for this. People are clearly saying, seeing what he has said. For those people who are not, who do not understand Tamil, he said, the several national leaders, including BJP and Congress, they have not questioned about MISA. There's a lot of record. And these people who are unlettered people in TVK are questioning this. Now I'm questioning their birth, is what I think, and you need to confirm this to your audience. I think that's what I understand H. Raja has said.
12: This government is to file cases against DMK, not against any criminal. 10 people were killed. 10 people were killed in the prison. Many crimes are happening. They will not take any action against the criminals. They will choose only DMK people and file petitions.
13: But don't you think those are all defamatory remarks targeted?
12: It is not defamatory. Then if somebody is affected, they should go to court, not the government. This government is doing things only not for the people of Tamil Nadu. They are doing only for the against the DMK. The government is there only to oppose DMK, not for the people of Tamil Nadu.
0: And we have some breaking news coming in. Congress has attacked the government over the new UPI framework, arguing that allowing charges on transactions above rupees 2000 could weaken India's homegrown digital payment ecosystem and also burden ordinary people. Pawan Khera has also alleged, the Congress leader, that the move is being pursued under US pressure. BJP, meanwhile, has rejected the Congress charges as misleading, stressing that UPI payments up to rupees 2000 remain completely free, while P2P transactions continue to be free. The government has also said that consumers will not be directly charged with discussions around possible MDR focused on higher value merchant transactions. So the controversy stems after Congress says that that the Modi government, he's accused the Modi government of accusing it of quietly laying the groundwork of introducing transaction fees on UPI. But the BJP says that the Congress is now spreading fake news and that there is no transaction fee of rupees 2000 up to UPI. Take a listen to what BJP's Pradeep Bhandari has to say on this.
14: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो ये कह रही थी कि इस देश का

0: ट्रांजैक्शन का नंबर वन डेस्टिनेशन और मींस बना है। कांग्रेस हमेशा विकास का विरोध करती है।
1: ये एक साजिश है जो होम ग्रोन हमारे डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की नारा इन्होंने दिया डिजिटल इंडिया का, और खुद ही इंडिया का जो डिजिटल नेटवर्क है उसको तबाह कर रहे हैं अमेरिका के दबाव में आकर। मिडिल क्लास को, ना केवल मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2000 से ऊपर की पेमेंट्स पे टैक्स लगेगा, चार्ज लगेगा। तो ये क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्यों अमेरिका के दबाव में इस तरह की ये साजिशें रचते हैं?
2: And we're slipping into a very short break, but come right back. Coming up next is NDTV World exclusive interview. Bill Gates speaks to Vishnu Som, and this is of course on the AI and how aware can people be on this. Come right back. We will be playing that interview in just 37 minutes from now.
3: रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग रंग

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: It has taken place. This very individual was a drunk or not. So it's
1: right.
0: yet to be confirmed by the Gurugram police. But right now, behind me, you can see the visual of this Tower of Justice. This is a district court of Gurugram where he will be presented before a judge. And it's very likely that Gurugram police is going to seek at least 2 days of police custody to interrogate this very individual, because not only him, apart from him, his cousin was also part of this nefarious plot, in which what we have seen, he has recorded the video as well. And post that, he switched off his phone. So it's very likely that Gurugram police is going to seek 2 days of police custody, and then we will have to wait that
1: right.
0: how many police custody being granted by the judge in connection with this matter.
1: All right, Akhil, thank you so much. Akhil tracking, in fact, the developments there from outside the court where Kalyan Besla and his cousin brother, because it is said there were four people inside that vehicle, and the police has apprehended two of them. But remember, ladies and gentlemen, since yesterday, NDTV has been relentless in its coverage as far as this shocker from Gurugram is concerned. And a big impact now. Kalyan Besla has been arrested after more than 50 hours of being on the run and being brazen, blaming the victim in this case, the one who he tried to run over. Besla had allegedly fled the scene immediately after the road rage crash involving the biker Sia, triggering a major police hunt across multiple locations. Besla, accused in an attempt to murder case now, was brought to Gurugram. Remember, he has been apprehended from Dausa in Rajasthan. The Gurugram police went there and in fact took him in their custody. Now, visuals show that Besla with a car, with his hand bandaged, as he kneeled before the vehicle. This is the same vehicle that he used at that point of time. His entire, you know, if I may use the word hero-giri, at this moment has vanished. At that point of time, he thought that whatever he does, there will be no consequences. At this moment, he is kneeling with that bandage, around his hand. This is what the police says, that he fell and got injured when he was trying to make a run from the custody of the police, and now he's sitting there looking absolutely in remorse. But like I said, ladies and gentlemen, there is strictest punishment that needs to be meted out. The Gurugram police has added an attempt to murder charge, with the offence carrying up to 10 years in prison. Five teams were formed to track Besla while the police scanned the CCTV footage from the golf course road in Gurugram. Meanwhile, speaking exclusively to NDTV, Sia alleged her name, of course, Sia, a.k.a. Sakshi Chauhan, that Besla's arrest was delayed and accused him of being drunk, deliberately hitting her and fleeing the spot without stopping to help.
0: हमारे साथ सिया के जो वकील हैं वो मौजूद हैं. आप जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे, क्या कुछ जो है वो बयान दर्ज किया गया?
2: सर, मैंने बता दिया
0: जी.
2: 164 की स्टेटमेंट होती है, उसमें सब बता दिया गया है. और जो वीडियो में दिख रहा है, जिस तरीके से मारा है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे चार्जेस हैं, और चार्जेस लगा दिए हैं. 307 IPC लगाए गए, और 354, 509 और 34, और हिट एंड रन का जो बता रहे हैं वो भी उसके रैश एंड नेग्लिजेंस के चार्जेस हैं.
0: और इसमें सिया की तरफ से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसमें सिया ने क्या कुछ कहा कोर्ट के सामने?
2: सिया ने यही बताया कि जैसे जिस तरीके से मुझे मारा, हिट किया गया है, वो कोई एक एक्सीडेंट कहीं से नहीं लग रहा, जैसे कि सब लोग पूरे हिंदुस्तान वीडियो में देख रहे हैं. कोई ऐसा हिट एंड रन वाला नहीं है, वो इंटेंशनली मारा गया है, और उसमें उसको कुछ भी हो सकता था. तो शुक्र है भगवान का कि वो बच गई, बट कुछ भी हो सकता था.
3: क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था. और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की.
4: उनकी कंप्लेंट जो है वो तो फ्लैट थी, उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी.
3: नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई. विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे, तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNS भी इजाद किए इसमें. और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है. दिनांक 14/9/26 को कल एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल किया था, साइड से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उस महिला के को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, और वो जो बाइक पे लगा हुआ कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग हुई है. तो उस संबंध में जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया, और उसके बाद

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: मैं हूं राजीव खंडेलवाल और स्वागत है आपका वंदे भारतम में, एन इनिशिएटिव बाय गौतम अदानी। नब बुलाते हैं मार्केट के सुपर हीरोज और वंदे भारतम के मेंटोर्स को। एक छोटे से बाइक टैक्सी स्टार्टअप से शुरुआत करके $3 बिलियन का मोबिलिटी पावर हाउस बना दिया। आज 400 से ज्यादा शहरों में हर रोज करोड़ों राइड्स के साथ इन्होंने मोबिलिटी की परिभाषा बदल दी और 90 लाख कैप्टन्स को रोजगार का नया रास्ता दिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रैपिडो के को फाउंडर ऋषिकेश एसआर। हाय ऋषिकेश।
1: हेलो,
0: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू वंदे भारत। इट्स अ प्लेजर टू हैव।
1: थैंक यू सो मच।
0: प्लीज हैव।

0: All the best. Course, please. तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले इनोवेटर से. प्लीज वेलकम नोएडा उत्तर प्रदेश से वी जीनोमिक्स इंडिया के इनोवेटर्स डॉक्टर रहीदा सरदार और मिस्टर समीर मलिक. हाय वंदे भारत में आपका स्वागत है.
1: थैंक यू.
0: मेरा बस एक ही क्वेश्चन रहता है कि ये इस इनोवेशन पे कितने सालों से काम कर रहे हैं.
1: चार साल से.
0: चार साल से. सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी? ओके लेट्स पुट दिस.
1: हां सो स्ट्रगल ये थी कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो मेरा बच्चा 4 महीने का था. कोविड के टाइम पे मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी. डॉक्टर ने बोला जेनेटिक टेस्ट करना है. आई वॉज इन उत्तराखंड तो मुझे दिल्ली आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे तो जेनेटिक टेस्ट नहीं होता. मैं PhD भी कर रही थी. अनफॉर्चुनेटली मैं PhD ही जीनोमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कर रही थी. ठीक है तो जब मैं आई फिर मैंने डिसाइड किया. जब मेरा टेस्ट हुआ तो 30-40 दिन वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी. एक तो कोविड था, सेकंड वेव थी, डेथ्स हो रही थी बहुत ज़्यादा. तो मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरी रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव आ गई तो क्या होगा. तो उस टाइम PhD का काम तो हो ही गया था क्योंकि मैंने 3.5 साल में अपना PhD का काम कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद उस 40 दिन के अंदर मैंने इतना जेनेटिक्स रेयर डिजीजेस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. लेकिन उस जब होता है ना कि आप जब बताओ फैमिली को, उनको होता है कि इतना छोटा बच्चा है, 4 महीने का है, ब्रेस्ट फीड पे है, तुम क्या राहिला, यू आर ओवर एम्बिशियस. सो ये सारी चीज़ें रही. बट मेरे हस्बैंड सपोर्टिंग थे. उन्होंने कहा देखो आप एक बच्चे के लिए सोल्यूशन नहीं बना रहे हो, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है. आई विल सपोर्ट यू. जबकि PhD के बाद मुझे पोस्ट डॉक स्टैनफोर्ड से आया, एक जॉब भी दी काफ़ी अच्छी US में. बट आई डिसाइडेड आई विल बी देयर. मेरा मानना है ये देखिए ऐसी चीज़ बनाई है कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड वाले आपको खुद बनाए ना कि मुझे जाना पड़े. सो मेरा मिशन है कि मैं इसको सॉल्व करूं.
0: इतना कुछ सहन किया आपने उसके लिए आप इस मंच पर खड़ी हैं. ओके सो फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट एंड विद अ स्माइल. आपकी पिच रेडी है?
1: या बिफोर शी स्टार्ट्स कैन आई गिव हर अ हग? या आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर पैशन.
2: थैंक यू.
1: गुड लक.
2: डू वेल.
0: आपके चमकने का समय शुरू होता है अब.
1: नमस्ते. क्या आप ये बच्ची देख रहे हैं? ये बचपन से स्माइल नहीं करती थी, चलते चलते गिर जाती थी, पैरों में दर्द की कंप्लेंट करती थी. आज 4 से 5 साल बाद मल्टीपल मिस डायग्नोसिस होने के बाद इसके पेरेंट्स को पता लगता है कि इसको एक डेडली जेनेटिक डिजीज है. बात यहाँ नहीं रुकती. डॉक्टर से आंसर मिलता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और इसकी लाइफ सिर्फ 3 से 4 साल और बची है. वर्ल्ड में ऐसे 35 करोड़ लोग हैं जो ऐसी बीमारियों के साथ अफेक्टेड हैं और इंडिया में आप गेस करिए कितना है? 10 करोड़ लोग हैं जो कि अफेक्टेड है. और ज्यादा दुख की बात तो यह है कि 7 करोड़ सिर्फ बच्चे हैं. मेरी PhD खत्म होने के बाद स्टैनफोर्ड में ना जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे इन पेशेंट्स और फैमिलीज को आंसर्स प्रोवाइड करना है थ्रू आवर सॉल्यूशन दैट कैन एक्सेलरेट द डायग्नोसिस एंड ड्रग डिस्कवरी एज वेल. ऐसे स्टार्ट हुई वी जीनोमिक्स की. अप्रैल 2022 में मैंने वी जीनोमिक्स स्टार्ट किया. इसमें मेरे साथ पार्टनर किया डॉक्टर प्रीति गुप्ता लाल जो कि US से है एंड शी वर्क इन फार्मा इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 35 years. And co owned 150 US patent. So we both joined together and started this company V Genomics. हमारा मिशन है इस बच्चों और फैमिलीज को आंसर्स प्रोवाइड करना ताकि इनको फास्टर डायग्नोसिस और इवेंचुअली फास्टर ड्रग्स डेवलप हो सके.
3: मेरा नाम है समीर, co-founder of V Genomics. मैं आता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड. तो जब मैं डॉक्टर राहिला और डॉक्टर प्रीति से मिला तब आई रियलाइज दैट दिस इज द टीम वेयर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट एंड वी कैन मेक इट अ ग्लोबल स्टेज कंपनी. आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जेनेटिक टेस्टिंग बढ़ रही है, राइट? हम उसको कैंसर में देखते हैं, रेयर जेनेटिक डिजीजेज में देखते हैं, IVF में देखते हैं. आज लैब्स और हॉस्पिटल बहुत सारी करोड़ों स्पेंड करके मशीन्स खरीद रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि एक जेनेटिक टेस्ट में 8 से 80 GB डेटा जनरेट होता है और उससे अगर आपको एक रिपोर्ट बनानी है उसका मतलब है कि जैसे ये यहाँ भूसा रखा है उससे आपको ये निडल ढूंढ के निकालनी, राइट? इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये सारा प्रोसेस स्लो है, मैनुअल है और फॉरेन सॉफ्टवेयर्स पर डिपेंडेंट है. और इसी के सॉल्यूशन के लिए हमने बनाया देश का अपना विजन 23। विजन 23 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी मशीन से डीएनए डेटा एक्सेप्ट करता है, उसको कोरिलेट करता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बिल्ड करके ये सारा काम केवल आधे घंटे में कर देता है। हमने 3 साल पहले 3.15 करोड़ रेस किए, 13 लोगों की टीम बिल्ड की और पूरी R&D करके ये सॉल्यूशन इसी साल लॉन्च किया। केवल 4 महीनों में आज हमारे पास 80 से ज़्यादा B2B यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, लगभग 1 करोड़ के POs क्लोज कर दिए हैं और 2.5 करोड़ के POs पाइपलाइन में हैं।
1: हमारी आस्क है 5 करोड़ रुपए आपसे और आपके 1-1 घंटे की मेंटरशिप, ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को एक देश का ऐसा स्केलेबल प्लेटफॉर्म बनाएं जिससे ना कि सिर्फ डायग्नोसिस बट ड्रग डिस्कवरी

0: आप जानते हैं कि अगर आप टॉप 5 विनर्स में आए तो हम आपसे फिनाले एपिसोड में वापस मिलेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग एंड यू कैन गो एंड सेलिब्रेट.
1: थैंक यू.
0: स्कोर्स प्लीज. तो हमारे जो अगले इनोवेटर आ रहे हैं ना, उनका जो इनोवेशन है वो काफी भारी भरकम है. तो प्लीज वेलकम केरला से ऑटोजेन बॉट के इनोवेटर विपिन केवी.

0: Cosby.
1: आज वंदे भारतम के मंच पर आए कुछ यंग माइंड्स और बोल्ड आइडियाज जो रखते हैं भारत के फ्यूचर को बदलने का जज्बा। जयपुर से मैफकिन रोबोटिक्स,
2: आज भी इंडिया में चिप इंस्पेक्शन और क्लीनिंग का काम डाइवर असिस्टेड टूल्स द्वारा किया जाता है। हम इस पूरे प्रोसेस को चेंज करना है। हम बना रहे हैं नोहा और अंगद, हमारी ऑटोनोमस रोबोटिक फ्लीट।
1: संभाजी नगर से माई पेरो,
3: आपके सबसे प्यारा दोस्त, आपका वफादार डॉग अगर बीमार हो तो चुपचाप कोने में बैठ जाता है। माई पेरो एक स्मार्ट कॉलर जो टेम्परेचर, हार्ट रेट कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही ओनर को अलर्ट करता है।
1: जयपुर से रीग्रिप इंडिया,
4: टायर एक कचरा नहीं है, इट्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स। कलेक्शन से लेके एक टायर का रिसाइक्लिंग तक पूरी जर्नी हमने एक 360 डिग्री प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट करी है।
1: इरोड से हैथोर रॉकेट्स,
5: टुडे कंपनी स्पेंड मोर देन 7 प्लस इयर्स बर्निंग हंड्रेड्स ऑफ क्रोस टू अटेम्प्ट देयर फर्स्ट ऑर्बिटल लॉन्च अटेम्प्ट। वी आर सॉल्विंग दिस एट हैथोर रॉकेट्स। We are building high-performance liquid rocket engines for launch vehicles, in-space mobility applications, and strategic defense applications.
1: जिनके high-performance liquid rocket engine ने किया Mentos को impress और उन्हें मिले Srishti Adani से Vande Wings.
6: अब आप हमारे innovators के full pitches हमारे unplugged episodes में देख सकते हैं.
7: आज ये सिर्फ startup innovator हैं, लेकिन कल इनमें से कुछ business tycoons होंगे, कुछ industry leaders और कुछ ऐसे change makers जो लाखों जिंदगियों की दिशा बदल देंगे। आज वंदे भारतम के इस कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे भारत के नए कल में।
8: And we bring in our product that's called Baidu. Everybody taught me that you are okay to fall. It's not disability that should put you out. It is the ability and the confidence inside you should bring you out.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला। डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.
2: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ,

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: case. This is a case relating to sexual abuse of a child in a daycare center in Bengaluru. The summons have been issued, and we learned that the NCPCR has summoned the vice president of the specific daycare center, and the vice president of this daycare will have to appear in front of the NCPCR tomorrow, that is September of 16th at 4 p.m. It has been 2 days since this video from Gurugram that we are just going to show you in some moments from now had shocked the nation. Remember, on the wide sprawling stretch of the city's golf course road in Gurugram, a white sedan had deliberately, sharply turned to a biker, ramming straight into Sia Chauhan, a young woman on an Aprilia RS457 sports bike for over 50 hours. That man behind the wheel, his name was Kalyan Besla, was on the run. And 50 hours of evading the law and hiding out until police finally tracked him down over 200 kilometers away in Dausa in Rajasthan. His cousin has also been detained alongside, and the entitlement did not just stop the arrest. Even in police custody on Tuesday, Besla reportedly asked permission to step out to urinate, we learn, and then tried to flee again. He showed no remorse, just a desperate continuous scramble to dodge accountability. And before the man could even be put in handcuffs a day earlier, his lawyer went on record claiming that it was Sia, the victim, the biker, who had provoked the accused. This was all just a stunt for Instagram views and social media followers, is what the accused lawyer had to say. And today, Sia Chauhan spoke to NDTV. Her words were, and I will quote her here, "I'll make sure nobody harasses a woman biker ever again."
1: क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की।
2: सर, उनकी कंप्लेंट जो है वो तो भोपाल फ्लैट थी, उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी।
1: नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई। विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे, तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNS भी इजाद की है इसमें, और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है। दिनांक 14/9/26 को कल एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल किया था, साइड से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उस महिला के को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, और वो जो बाइक पे लगा हुआ कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस संबंध में जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया, और उसके बाद उसकी आरोपी की जो थोड़ी सी एक फ़ोटो आई हुई थी उसके आधार पे उसकी सर्च की गई, और सर्च करके पता लगा कि वो पलवल का एक व्यक्ति है, जिसको कि फिर पुलिस की अलग अलग टीमें, तीन टीमें गठित की गई इसमें, और तीनों टीमों ने इस पर रात भर कार्य किया, और उसको आज दौसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो घटना के दौरान उसके साथ ही मौजूद था।
0: Shifting our focus to stories that are making headlines in the down south, two DMK leaders have been booked by the Tamil Nadu police as the political war with Chief Minister Vijay's government intensifies. Sekhar Babu has been booked over alleged objectionable remarks against Chief Minister Vijay, including his comment mocking Vijay as a chief minister who ran away. DMK MP A. Raja, meanwhile, has been booked under 7 sections over alleged defamatory remarks against Minister CTR Nirmal Kumar. Raja had questioned the minister's comments on MK Stalin's MISA arrest and made personal remarks about his parentage. Now, the cases come amid escalating political attacks, with the DMK hitting back at the Vijay government. The party defended its right to criticize the ruling party, accused the government of targeting the opposition, and slammed it over law and order. Here are some political reactions that we're talking on the story.
3: ஐந்தாண்டுகள் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து சண்டை செய்த ஒரு மாவீரன் எங்கள் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் என்றால் அது மிகையாகாது. அன்று ஆளுநரை ஓடவிட்டார், இன்று ஓடு ஓடு என்று மேடையிலே ஓடி ஓடி காட்டிக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜயை அவரின் அருந்த

0: examine the matter to determine the culpability of the case. This is a case relating to sexual abuse of a child in a daycare center in Bengaluru. The summons have been issued, and we learned that the NCPCR has summoned the vice president of the specific daycare center, and the vice president of this daycare will have to appear in front of the NCPCR tomorrow, that is September of 16th at 4 p.m. It has been 2 days since this video from Gurugram that we are just going to show you in some moments from now had shocked the nation. Remember, on the wide sprawling stretch of the city's golf course road in Gurugram, a white sedan had deliberately, sharply turned to a biker, ramming straight into Sia Chauhan, a young woman on an Aprilia RS457 sports bike for over 50 hours. That man behind the wheel, his name was Kalyan Besla, was on the run. And 50 hours of evading the law and hiding out until police finally tracked him down over 200 kilometers away in Dausa in Rajasthan. His cousin has also been detained alongside, and the entitlement did not just stop the arrest. Even in police custody on Tuesday, Besla reportedly asked permission to step out to urinate, we learn, and then tried to flee again. He showed no remorse, just a desperate continuous scramble to dodge accountability. And before the man could even be put in handcuffs a day earlier, his lawyer went on record claiming that it was Sia, the victim, the biker, who had provoked the accused. This was all just a stunt for Instagram views and social media followers, is what the accused lawyer had to say. And today, Sia Chauhan spoke to NDTV. Her words were, and I will quote her here, "I'll make sure nobody harasses a woman biker ever again."
1: क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की
2: है। सर, उनकी कंप्लेंट जो है वो तो बुकार फ्लैट थी, उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी।
1: नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई। विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे, तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNS भी इजाद की है इसमें, और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है। दिनांक 14/9/26 को कल एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल किया था, साइड से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उस महिला के को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, और वो जो बाइक पे लगा हुआ कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस संबंध में जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया, और उसके बाद उसकी आरोपी की जो थोड़ी सी एक फ़ोटो आई हुई थी उसके आधार पे उसकी सर्च की गई, और सर्च करके पता लगा कि वो पलवल का एक व्यक्ति है, जिसको कि फिर पुलिस की अलग अलग टीमें, तीन टीमें गठित की गई इसमें, और तीनों टीमों ने इस पर रात भर कार्य किया और उसको आज दौसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो घटना के दौरान उसके साथ ही मौजूद था।
0: Shifting our focus to stories that are making headlines in the down south, two DMK leaders have been booked by the Tamil Nadu police as the political war with Chief Minister Vijay's government intensifies. Sekhar Babu has been booked over alleged objectionable remarks against Chief Minister Vijay, including his comment mocking Vijay as a chief minister who ran away. DMK MP A. Raja, meanwhile, has been booked under 7 sections over alleged defamatory remarks against Minister CTR Nirmal Kumar. Raja had questioned the minister's comments on MK Stalin's MISA arrest and made personal remarks about his parentage. Now, the cases come amid escalating political attacks, with the DMK hitting back at the Vijay government. The party defended its right to criticize the ruling party, accused the government of targeting the opposition, and slammed it over law and order. Here are some political reactions that we're talking on the story.
3: ஐந்தாண்டுகள் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து சண்டை செய்த ஒரு மாவீரன் எங்கள் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் என்றால் அது மிகையாகாது. அன்று ஆளுநரை ஓடவிட்டார், இன்று ஓடு ஓடு என்று மேடையிலே ஓடி ஓடி காட்டிக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜயை

0: His name was Kalyan Besla, was on the run. And 50 hours of evading the law and hiding out until police finally tracked him down over 200 kilometers away in Dausa in Rajasthan. His cousin has also been detained alongside, and the entitlement did not just stop the arrest. Even in police custody on Tuesday, Besla reportedly asked permission to step out to urinate, we learn, and then tried to flee again. He showed no remorse, just a desperate continuous scramble to dodge accountability. And before the man could even be put in handcuffs a day earlier, his lawyer went on record claiming that it was Sia, the victim, the biker, who had provoked the accused. This was all just a stunt for Instagram views and social media followers, is what the accused lawyer had to say. And today, Sia Chauhan spoke to NDTV. Her words were, and I will quote her here, "I'll make sure nobody harasses a woman biker ever again."
1: क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की है।
2: उनकी कंप्लेंट जो है वो तो भोपाल फ्लैट की, उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी।
1: नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई। विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे, तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNSB इजाद की है इसमें, और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है। दिनांक 14/9/26 को कल एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल किया था, साइड से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उस महिला के को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है और वो जो बाइक पे लगा हुआ कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस संबंध में जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया, और उसके बाद उसकी आरोपी की जो थोड़ी सी एक फ़ोटो आई हुई थी उसके आधार पे उसकी सर्च की गई, और सर्च करके पता लगा कि वो पलवल का एक व्यक्ति है, जिसको कि फिर पुलिस की अलग अलग टीमें, तीन टीमें गठित की गई इसमें, और तीनों टीमों ने इस पर रात भर कार्य किया और उसको आज दौसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो घटना के दौरान उसके साथ ही मौजूद था।
0: Shifting our focus to stories that are making headlines in the down south, two DMK leaders have been booked by the Tamil Nadu police as the political war with Chief Minister Vijay's government intensifies. Sekhar Babu has been booked over alleged objectionable remarks against Chief Minister Vijay, including his comment mocking Vijay as a chief minister who ran away. DMK MP A. Raja, meanwhile, has been booked under 7 sections over alleged defamatory remarks against Minister CTR Nirmal Kumar. Raja had questioned the minister's comments on MK Stalin's Mesa arrest and made personal remarks about his parentage. Now, the cases come amid escalating political attacks, with the DMK hitting back at the Vijay government. The party defended its right to criticize the ruling party, accused the government of targeting the opposition, and slammed it over law and order. Here are some political reactions that we're talking on the story.
3: ஐந்தாண்டுகள் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து சண்டை செய்த ஒரு மாவீரன் எங்கள் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் என்றால் அது மிகையாகாது. அன்று ஆளுநரை ஓடவிட்டார், இன்று ஓடு ஓடு என்று மேடையிலே ஓடி ஓடி காட்டிக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜயை அவரின் அருந்தவ புதல்வன் எங்கள் ஆருயிர் அண்ணன் வருங்கால தமிழகம் உதயநிதி அவர்கள் ஓடவிட்டார்.
4: ராகுல் காந்தி இருக்காரு, பிரியங்கா காந்தி அவையில் இருக்கு, பிஜேபி தலைவர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க, அடிமட்ட ராஜ்நாத் சிங் உட்கார்ந்துருக்காரு. இவங்களுக்கெல்லாம் எமர்ஜென்சி தெரியாதான், மிசா பத்தி தெரியாதா? இப்ப ஒருத்த இவர் அதற்காக போகவில்லை, இதற்காக போகவில்லை, எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு. நீ யாருக்கு பிறந்த? When you are doubting the integrity of my leader, who is serving lot of records, it is widely accepted by all leaders in India, am I not entitled to say I am doubting your paternity? Nonsense. இந்த தருவல கூட்டத்துக்கு ஒரு முதலமைச்சர், ஒரு தலைவர், தாரை எப்படிங்கிறதோ கைகால் ஆடுறதுக்கு நீ வந்த

0: Continue scramble to dodge accountability. And before the man could even be put in handcuffs a day earlier, his lawyer went on record claiming that it was Sia, the victim, the biker, who had provoked the accused. This was all just a stunt for Instagram views and social media followers, is what the accused lawyer had to say. And today, Sia Chauhan spoke to NDTV. Her words were, and I will quote her here, "I'll make sure nobody harasses a woman biker ever again."
1: क्योंकि जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की है।
2: उनकी कंप्लेंट जो है वो तो बुकार फ्लैट थी, उसमें इस तरीके की बात नहीं लिखी गई थी।
1: नहीं, पुलिस ने ये जो वीडियो का विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये धारा लगाई। विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे, तो उसके आधार पर जो हमने इसमें 78 और 79 BNSB इजाद की है इसमें, और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है। दिनांक 14/9/26 को कल एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल किया था, साइड से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उस महिला के को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है और वो जो बाइक पे लगा हुआ कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस संबंध में जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया और उसके बाद उसकी आरोपी की जो थोड़ी सी एक फ़ोटो आई हुई थी उसके आधार पे उसकी सर्च की गई और सर्च करके पता लगा कि वो पलवल का एक व्यक्ति है, जिसको कि फिर पुलिस की अलग अलग टीमें, तीन टीमें गठित की गई इसमें, और तीनों टीमों ने इस पर रात भर कार्य किया और उसको आज दोसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो घटना के दौरान उसके साथ ही मौजूद था।
0: Shifting our focus to stories that are making headlines in the down south, two DMK leaders have been booked by the Tamil Nadu police as the political war with Chief Minister Vijay's government intensifies. Sekhar Babu has been booked over alleged objectionable remarks against Chief Minister Vijay, including his comment mocking Vijay as a chief minister who ran away. DMK MP A. Raja, meanwhile, has been booked under 7 sections over alleged defamatory remarks against Minister CTR Nirmal Kumar. Raja had questioned the minister's comments on MK Stalin's MISA arrest and made personal remarks about his parentage. Now, the cases come amid escalating political attacks, with the DMK hitting back at the Vijay government. The party defended its right to criticize the ruling party, accused the government of targeting the opposition, and slammed it over law and order. Here are some political reactions that we're talking on the story.
3: ஐந்து ஆண்டுகள் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து சண்டை செய்த ஒரு மாவீரன் எங்கள் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் என்றால் அது மிகையாகாது. அன்று ஆளுநரை ஓடவிட்டார், இன்று ஓடு ஓடு என்று மேடையிலே ஓடி ஓடி காட்டிக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜயை அவரின் அருந்தவ புதல்வன் எங்கள் ஆருயிர் அண்ணன் வருங்கால தமிழகம் உதயநிதி அவர்கள் ஓடவிட்டார்.
4: ராகுல் காந்தி இருக்காரு, பிரியங்கா காந்தி அவையில் இருக்கு, பிஜேபி தலைவர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க, அடிமட்ட ராஜ்நாத் சிங் உட்கார்ந்துருக்காரு. இவங்களுக்கெல்லாம் எமர்ஜென்சி பத்தி தெரியாதான், மிசா பத்தி தெரியாதா? இப்ப ஒருத்த இவர் அதற்காக போகவில்லை, இதற்காக போகவில்லை, எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு. நீ யாருக்கு பிறந்த? When you are doubting the integrity of my leader, who is having lot of records, it is widely accepted by all leaders in India. Am I not entitled to say I am doubting your paternity? Fight against. Fight against. Nonsense. இந்த தருவல கூட்டத்துக்கு ஒரு முதலமைச்சர், ஒரு தலைவர், தாரை எப்படி ஏறுவோம்? கைகால் ஆடுறதுக்கு வந்த கைகால் இறந்தபோது அப்புறம் எங்க வந்த நீ?
5: This government is to file cases against DMK, not against any criminal. 10 people were killed. 10 people were killed in the prison. Many crimes are happening. They will not take any action against the criminals. They will choose only DMK people and file petitions.
6: But don't you think those are all defamatory remarks targeted?
5: It is not.

0: एस भी ईजाद की है इसमें, और अभी विक्टिम के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और जो 164 की स्टेटमेंट के लिए माननीय अदालत के सामने उनको पेश किया जा रहा है। दिनांक 14/9/26 को कल एक महिला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल किया था, साइड से टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें उस महिला के को गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, और वो जो बाइक पे लगा हुआ कैमरा है उससे रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस संबंध में जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया, और उसके बाद उसकी आरोपी की जो थोड़ी सी एक फ़ोटो आई हुई थी उसके आधार पे उसकी सर्च की गई, और सर्च करके पता लगा कि वो पलवल का एक व्यक्ति है, जिसको कि फिर पुलिस की अलग अलग टीमें, तीन टीमें गठित की गई इसमें, और तीनों टीमों ने इस पर रात भर कार्य किया, और उसको आज दौसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था जो घटना के दौरान उसके साथ ही मौजूद था।
1: Shifting our focus to stories that are making headlines in the down south, two DMK leaders have been booked by the Tamil Nadu police as the political war with Chief Minister Vijay's government intensifies. Sekhar Babu has been booked over alleged objectionable remarks against Chief Minister Vijay, including his comment mocking Vijay as a chief minister who ran away. DMK MP A. Raja, meanwhile, has been booked under 7 sections over alleged defamatory remarks against Minister CTR Nirmal Kumar. Raja had questioned the minister's comments on MK Stalin's MISA arrest and made personal remarks about his parentage. Now, the cases come amid escalating political attacks, with the DMK hitting back at the Vijay government. The party defended its right to criticize the ruling party, accused the government of targeting the opposition, and slammed it over law and order. Here are some political reactions that we're talking on the story.
2: ஐந்து ஆண்டுகள் ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து சண்டை செய்த ஒரு மாவீரன் எங்கள் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் என்றால் அது மிகையாகாது. அன்று ஆளுநரை ஓடவிட்டார், இன்று ஓடு ஓடு என்று மேடையிலே ஓடி ஓடி காட்டிக் கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜயை அவரின் அருந்தவ புதல்வன் எங்கள் ஆருயிரண்ணன் வருங்கால தமிழகம் உதயநிதி அவர்கள் ஓடவிட்டார்.
3: ராகுல் காந்தி இருக்காரு, பிரியங்கா காந்தி அவையில் இருக்கு, பிஜேபி தலைவர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க, அடிமட்ட ராஜ்நாத் சிங் உட்கார்ந்துருக்காரு. இவங்களுக்கெல்லாம் எமர்ஜென்சி தெரியாதான், மிசா பத்தி தெரியாதான். இப்ப ஒருத்த இவர் அதற்காக போகவில்லை, இதற்காக போகவில்லை, எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு. நீ யாருக்கு பிறந்த When you are doubting the integrity of my leader, who is having lot of records, which is mainly accepted by all leaders in India, am I not entitled to say I am doubting your paternity? Fight against! Nonsense. இந்த தருவல கூட்டத்துக்கு ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு தலைவர் தாரை எப்படிங்கிறது கைகால் ஆடுறதுக்கு வந்த கைகால் இறந்தபோது இப்ப இறந்த முதல் கொடுத்தா அப்புறம் எங்க வந்து
4: This government is to file cases against DMK, not against any criminal. 10 people were killed. 10 people were killed in the prison. Many crimes are happening. They will not take any action against the criminals. They will choose only DMK people and file petitions.
5: But don't you think those are all defamatory remarks targeted?
4: It is not defamatory. Then if somebody is affected, they should go to court, not the government. This government is doing things only not for the people of Tamil Nadu. They are doing only for the against the DMK. The government is there only to oppose DMK, not for the people of Tamil Nadu.
1: Shifting our focus to another controversy that's brewing in the state of Tamil Nadu, actor Vijay Sethupathi's comments on leadership inside the Big Boss Tamil House have triggered a massive political buzz on social media. While speaking to contestant there, Vijay said that making promises without thinking and running away when problems arise and blaming the opposition cannot be called true leadership. And this he was referring to the Chief Minister of Tamil Nadu, C. Joseph Vijay. Though the actor did not name Tamil Nadu Chief Minister Vijay or any political party, some viewers have linked these remarks to the Chief Minister and the recent political developments that took place in the state. Now, the debate has spilled onto social media with fans arguing over whether the comments had any political undertone. Meanwhile, Big Boss Tamil has issued a clarification.